आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। आज दिन बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की

दसवीं तिथि तदनुसार 1 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा प्रारंभ होती है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें

0: भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मैक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं संवेद स्वर में ये देशगान।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सुरेश वाडकर के स्वरों में ये भक्ति रचना।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे वाणी जयराम, हरिओम शरण, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज़ों में कुछ भक्ति रचनाएं। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ एवं न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:25 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार।
1: अधिकार हजम करने के लिए जब तक पूरी कीमत ना चुकाई जाए, तब तक यदि अधिकार मिल भी जाए तो आप उसे गवां बैठेंगे। ये शब्द हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के। सचमुच अनायास मिला हुआ कोई भी अधिकार स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पाने के लिए व्यक्ति ने वो साधना नहीं की जो अधिकार को अनुशासन में रखती है। मनुष्य जब भी बिना प्रयत्नों के अधिकार प्राप्त कर लेता है, वो या तो उसे स्वेच्छाचारी बना देता है अथवा फिर स्थायी नहीं रह पाता। आज प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसे अधिकार सुख भोगने का अवसर मिले, और उसके लिए वो उचित अनुचित हर प्रकार के साधन अपनाने के लिए तत्पर रहता है, पर अपने मन में झांक कर ये देखना नहीं चाहता कि अपने अधिकार के लिए क्या उसने अपनी पात्रता सिद्ध की है। वल्लभ जी जब अधिकार हजम करने की बात कहते हैं, तब उनका आशय उसकी कीमत चुकाना उस अधिकार को प्राप्त करने की साधना द्वारा उसके लिए अपनी पात्रता सिद्ध करने से होता है। ये साधना बातों से अर्जित नहीं होती, उसके लिए हर क्षण काम में लगे रहना आवश्यक है। भविष्य की चिंता किए बिना हम वर्तमान में काम में लगे रहें तो कोई कारण नहीं कि हमारा आने वाला कल उज्जवल न हो। वल्लभ जी कहा करते थे, जो काम कल करने का है उसकी बातों में ही आज का काम बिगड़ जाएगा, और आज के बिना कल का काम नहीं होगा। हम अपने फर्ज से चूक जाएंगे। आज का काम कीजिए तो कल का काम अपने आप हो जाएगा। ये प्रेरक शब्द यदि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं

0: तो इसलिए क्योंकि इनमें सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। हमारी विडंबना यह है कि हम भविष्य के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाने में अपने समय का अपव्यय करते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि आज हमारे कार्य करने की जो गति होनी चाहिए थी वो शिथिल होकर हमारे लक्ष्य को हमसे और दूर कर देती है। यदि हमें अपने आप को या अपने राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाना है तो एक एक क्षण का रचनात्मक ढंग से उपयोग करना होगा और इसके लिए आवश्यक है कठोर परिश्रम। पटेल जी का मानना था, जाति भेद के विष को जब तक हम सद्भाव के अमृत के साथ बदल नहीं देंगे तब तक हमारे देश का आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हमारे सामाजिक जीवन में भेदभाव बने रहें और हम राष्ट्रीय रूप में आगे बढ़ सकें। राष्ट्र की उन्नति तो व्यक्ति के विकास से ही आरंभ हो जाती है। ये हमारा कर्तव्य है, जो दुर्बल हैं उनको आपसी सहयोग के बल पर इतना सक्षम बना दें कि वे भी समाज और राष्ट्र के विकास में भरपूर योगदान दे सकें। पटेल जी का मानना था, व्यक्तियों के अच्छे जीवन से ही सामाजिक जीवन ऊंचा होता है। जिनके पास कम शक्ति हो, शक्ति वालों को उसे ऊंचा उठाना चाहिए। समाज में से ऊंच नीच के भेदभाव को मिटा देना चाहिए। पटेल जी का ये उद्बोधन हमारे जीवन के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक है। भौतिकवाद ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इसके अनेक अच्छे और बुरे परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ने जहां मनुष्य मनुष्य के बीच की भौतिक दूरियों को पाटा है, वहां जीवन की आपाधापी एवं परिस्थितियों के दबाव ने उसे आत्म केंद्रित और स्वार्थी भी बनाया है। ऐसे में वो केवल अपने बारे में सोचता है, किंतु सामाजिक विकास केवल कुछ व्यक्तियों की उन्नति का पर्याय तो नहीं। सामाजिक विकास तो तभी संभव होगा जब सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे, और ये कार्य लंबे चौड़े व्याख्यानों से संभव नहीं हो सकता। इसके लिए कर्म की कठोर साधना की जरूरत है।
1: अभी आप सुन रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार। इसी के साथ ही कार्यक्रम चिंतन अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर।

श्रोताओ, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आपसे थोड़ी देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार होंगे सुरेश वाडकर, संगीत होगा सतीश भाटिया का। खेती की बातें कार्यक्रम में 6:45 पर आप सुनेंगे ग्रामीण तालाबों का जीर्णोद्धार विषय पर देवेंद्र मोहन तिवारी की वार्ता।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस विषय पर डॉक्टर संजीव सिंह की वार्ता। स्थानीय गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास सुना जा सकेगा सुबह 7:31 पर। 8:45 पर सुनेगा सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा सुना जा सकेगा सुबह 9:25 पर। 9:45 पर कार्यक्रम लोक संगीत में सुनेगा संवेद स्वर में कुछ लोकगीत। कार्यक्रम सुरसरिता का प्रसारण समय रहेगा सुबह 10:00। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत

गीत के कार्यक्रम में सुनेगा पंडित यशपाल का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत करेंगे राग नट भैरव। सुबह 11 बजे कार्यक्रम आज के कलाकार में आज आप सुनेंगे पार्श्व गायक सुदेश भोसले की बारे में।

सुबह 11 बजे समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुना जा सकेगा। कार्यक्रम में आज का विषय होगा वन महोत्सव जीवन उत्सव। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनेगा दोपहर 12 बजे। 12:30 पर आप सुनेंगे नई फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। घर संसार कार्यक्रम में 1:15 पर बहनें सुनेंगी जीवन के प्रहरी हमारे डॉक्टर पर चर्चा, मेरी माटी मेरा देश, मुझे कुछ कहना है बात पते की, और साथ ही सुनवाई जाएगी किरण शर्मा की कहानी बिखरता रिश्ता। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर आप सुनेंगे डॉक्टर मेधा सचदेवा के गाए कुछ गीत व भजन। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 2:30 पर आप सुन सकेंगे डॉक्टर अनिता सेन का ठुमरी गायन। पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन सकेंगे दिन में 2:45 पर, और लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन सुना जा सकेगा दिन में 3 बजे।

संध्याकालीन सभा में शाम 5:10 पर सुनेगा भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। युवाणी कार्यक्रम में 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे वन है तो हम है पर चर्चा आज का सवाल। आइए जाने के अंतर्गत सुनेंगे आप ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जीने की कला, आज के हम सफर और साथ ही सुनवाई जाएगी विभूति तुली की वार्ता, विषय होगा जीएसटी के प्रति जागरूकता और महत्व। ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 6:35 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडकर, संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क ऋषि बोले, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तो धूल भी उसके लिए पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता काल स्वरूप और मामूली रस्सी सांप के समान काटने वाली बन जाती है। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और मंत्री धर्मरुचि ने अपने ज्ञान, विवेक तथा आस्था के कारण विभीषण का शरीर पाया। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने कठिन तपस्या की। अपने उग्र तप के कारण रावण ने ब्रह्मा और शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर कोई उसका वध न कर सके। कुंभकर्ण का आहार देख ब्रह्मा भी आतंकित हो गए, अतः सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने उसकी मति फेर दी और उसने 6 महीने

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे सुरेश फाटकर, संगीत था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम खेती की बातें का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ग्रामीण तालाबों का जीर्णोद्धार विषय पर देवेंद्र मोहन तिवारी की वार्ता।
1: हम अपने ग्रामों को देखें, हमें अपने ग्रामों के चारों तरफ तालाबों के स्थान दिखाई देंगे जो ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज वर्षा के जल के संग्रहण के लिए कितने सचेत थे। यही कारण है कि ग्राम की हर दिशा में तालाब मिलेंगे जिनमें वर्षा का जल एकत्रित होता था और भूमिगत जल स्तर अस्थायी रहता था। इन तालाबों के चारों तरफ कुएं बने होते थे जिसमें वर्षा का पानी वर्ष भर पीने का पानी मिलता रहता था। यही नहीं, इन तालाबों से फसलों की जीवन रक्षक सिंचाई भी की जाती थी और इन तालाबों की प्रतिवर्ष सफाई मकान की मरम्मत के लिए मिट्टी लेने के होती रहती थी। आज वर्तमान में गांव-गांव मकान पक्के बन गए हैं जिसका परिणाम यह हुआ कि तालाबों की सफाई बंद हो गई और तालाब धीरे धीरे भर गए। इनमें जो पानी रुकता था वह सिंधी नदियों में जाने लगा।

भूमिगत जलस्तर गिरता गया, कुएं समाप्त हो गए। सरकार ने हैंडपंप लगवाए हैं, उनकी भी यही स्थिति है कि भूमिगत जलस्तर गिरने से प्रतिवर्ष उनको रीबोर करना पड़ता है। हैंडपंप जो 40 फीट पर लगते थे, उनकी गहराई 120 से 130 फीट तक हो गई है और जलस्तर निरंतर गिरता ही जा रहा है। प्रतिवर्ष सूखे और कम वर्षा के कारण स्थिति और भी भयानक होती जा रही है। जनपद आगरा के दक्षिणी जनपद आगरा प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी कोने के बीच स्थित है। जनपद की जलवायु राजस्थान के मरुस्थल और कर्क रेखा के समीप होने के कारण शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक का शीतकाल में 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जनपद में औसत वार्षिक वर्षा 651 मिलीमीटर है। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4.62 लाख हेक्टेयर है, जो 940 ग्रामों में बटा हुआ है। जनपद में भूमि जल के कारण भूमि क्षरण ऊसरता जलमग्न क्षेत्र 2.24 लाख हेक्टेयर है। जनपद की बिहार क्षेत्र जो भूमि की क्षरण क्षमता से ग्रसित है, वह 1.4 लाख हेक्टेयर है। यह क्षेत्र यमुना उटंगन व चंबल नदियों के जल समेत क्षेत्र में फैला हुआ है और जनपद के भौगोलिक क्षेत्र का 34.62 प्रतिशत है। बताए गए कारणों से 24.62 प्रतिशत क्षेत्र का संपूर्ण जल बिना किसी रुकावट से अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को लिए हुए नदियों की ओर प्रतिवर्ष चला जाता है, जिससे भूमि की उत्पादकता के साथ साथ भूमिगत जलस्तर में निरंतर गिरावट आती जा रही है और प्रत्येक वर्ष भूमिगत जलस्तर 4 से 6 फीट तक चला जाता है। इसके अतिरिक्त जनपद के बरौली अहीर खंदौली बीजपुरी फतेहपुर सीकरी अकोला अतमादपुर अछेना विकासखंड सैलाइन टेली और खारे पानी एवं फ्लोराइड जल की समस्या से ग्रसित हैं और यह पानी पीने के साथ साथ खेती के लिए भी अयोग्य है। इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि भूमि जल स्तर में वृद्धि की जाए। यह समस्या मुगल काल से लेकर आज तक यथावत बनी हुई है, जिस पर अविलंब ध्यान देने की आवश्यकता है। 940 ग्रामों में से 904 ग्राम में ही इस समय आबादी है। 36 गांवों से मानव जनसंख्या का पलायन भी हो चुका है। भूमिगत जल स्तर के निरंतर गिरते रहने के कारण जनपद में के 15 में से 9 विकास खंड डार्क श्रेणी में तथा 6 विकास खंड ग्रे श्रेणी में घोषित हैं। 43.2 प्रतिशत बिहार क्षेत्र का जल तो सीधे नदी में चला ही जाता है, वह अपने साथ साथ ऊपर की भूमि के 7% क्षेत्र के जल को भी साथ ले जाता है। यह आकलन किया गया है कि प्रत्येक वर्ष वर्षा के कारण 16.55 टन प्रति हेक्टर प्रति वर्ष भूमि कट जाती है, जिससे 61% मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाती है तथा 29% नदी की तलहटी में जमा हो जाती है और 10% बड़े बड़े तालाबों या समुद्र में एकत्रित होती है। इस प्रकार का भूमि क्षरण अत्यंत ही विनाशकारी है। यह किसी भी दशा में 4.5 से 6 मैट्रिक टन प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आदर्श स्थिति यह होगी कि यह क्षरण शून्य हो। बिहार क्षेत्र 43.2 प्रतिशत है और यह प्रतिशत प्रदेश में के 12.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के विरुद्ध 14% है। जनपद की अधिकतम वर्षा 15 जुलाई से 15 सितंबर के मध्य होती है। भूमि का ढालू एवं बौखड़ होने के कारण वर्षा का अधिकतर जल वानस्पतिक या अभियंत्रित अवरोधों के न होने के कारण सीधे नदी में चला जाता है। परिणाम भूमिगत जलस्तर में निरंतर कमी। इन्फिल्ट्रेशन कम होने के कारण भूमि के ऊपरी सतह में नमी का अभाव
नमी

0: के आधार से वनस्पति का नग्ना और इस उग भी जाए तो उसका नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। जनपद के 1985 से लेकर 1994 के बीच 14 विकास खंडों में भूगर्भ जल स्तर मानसून से पूर्व 2.5 मीटर से लेकर 8 मीटर तक गिर चुका है। मानसून के पश्चात भी भूगर्भ जल स्तर में 2 से लेकर 8 मीटर तक है। यह अत्यंत आवश्यक है कि वर्षा के जल को संचित कर भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जल संरक्षण के कार्य कराए जाने पर बल दिया जा रहा है। यह योजनाएं मैक्रो मड योजना, जल निधि योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय जलागम विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, भूमि जल संरक्षण की योजनाएं एवं स्वजाधारा योजना है। इन सभी योजनाओं में आप सभी किसान भाइयों की सक्रिय भागीदारी एवं सहभागिता निर्धारित है, जिसमें जल निधि योजना में किसी भी पुराने जल स्रोत के सुधार के लिए आपका अंशदान कुल लागत का न्यूनतम 10% निर्धारित है। मैक्रो मड योजना जो कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही है, इसके अंतर्गत भी आपका सहयोग तालाबों के जीर्णोद्धार में आमंत्रित है।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण तालाबों का जीर्णोद्धार विषय पर देवेंद्र मोहन तिवारी की वार्ता। इसी के साथ ही कार्यक्रम खेती की बातें अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओ, सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: निर्बाध संचालनाय सर्वाः प्रशासकीय वित्तीय च सज्जता विहिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् पञ्चविंशत्युत्तरैकशत दिनानां वर्धिता अयं वृत्त्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति, चिरस्थायि सामुदायिक सम्पत्तीनां निर्माणं च विधास्यति। अनेन सहैव विकसित भारतस्य संकल्पं तीव्रगत्या प्रवर्तयिष्यते। जापान देशस्य प्रधानमंत्री साने तकाइची अद्य सायं त्रिदिवसीय भारत यात्रा प्रसंगे नवदेहलीं प्राप्स्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह षोडशे भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। इदं शिखर सम्मेलनम् उभयोर देशयोः कृते द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र क्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुमेकं प्रकृष्टम् अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखंड राज्यस्य मदरसा शिक्षा प्रणाल्याम् अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं संजातम्। अस्याः नूतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद् पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाः एकेन विनूत्नेन तंत्रेण संचालिताः भविष्यन्ति। अद्य जुलाई मासस्य एक दिनांकतः उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20-26 तथा उत्तराखंड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 20-19 इत्येतेः सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्य प्रशासनेन उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अन्तर्गतम् एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्र तंत्रस्य अन्तर्गतम् उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली

0: दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आवश्यक है। आज के दिन हम अपने बच्चों को ये भी प्रेरणा दे सकते हैं कि वे डॉक्टर बनने की ओर सोचें, क्योंकि ये न केवल करियर का।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 विल कम इनटू फोर्स अक्रॉस रूरल इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे। The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country. A report.
4: The VBG Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security and empower rural households. The Act places strong emphasis on timely, transparent and accountable wage payments. The new Act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The Viksit Bharat Ji Ram Ji Act is a comprehensive legislative framework designed to align rural employment generation with the national vision of Viksit Bharat by 2047. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
3: On the implementation, Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan said no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. The central government has notified Vikasit Bharat Ji Ramji Act 2025 effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. It said for the first time an interim base wage rate of 300

0: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर संजीव सिंह की वार्ता। विषय है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस।
1: आज की भागती दौड़ती व्यस्त और आधुनिक जीवन शैली ने हमें उपहार में अनेक प्रकार के रोग दे दिए हैं। सही तरह से ना खाने पीने और ना उठने बैठने के कारण हमें कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। गर्दन में या फिर गर्दन के आसपास होने वाला दर्द भी एक ऐसी ही आम समस्या बनता जा रहा है। कभी कभी उचित दिशा निर्देशन और उचित उपचार के अभाव में ये एक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेती है, जिसे हम सर्वाइकल के नाम से जानते हैं। पहले ये बीमारी 50 की उम्र के बाद ही देखने में आती थी, लेकिन अब ये युवाओं में एक आम समस्या के रूप में देखने को मिल रही है। इसके प्रमुख कारण हैं अधिक देर तक कंप्यूटर और मोबाइल पर लगातार और अधिक देर तक काम करते रहना, एक ही पोजीशन में लगातार बैठकर टीवी देखना, गर्दन झुकाकर लगातार पढ़ते रहना, अधिक वजन उठाने से, सोते समय अधिक ऊंचाई वाले तकिए का उपयोग और सही पोस्चर में ना बैठना, कभी कभी बॉडी बिल्डर के अधिक वजन उठाने के कारण भी सर्वाइकल की समस्या हो जाती है। इसलिए इसे लाइफस्टाइल डिजीज के नाम से भी जानने लगे हैं। सर्वाइकल की पहचान करना बहुत आसान है। इसके लक्षणों के आधार पर सर्वाइकल की पहचान कर सकते हैं, जैसे गर्दन के आसपास लगातार दर्द रहना, अकड़न रहना, नसों में खिंचाव रहना, चक्कर आना, उल्टियों का एहसास होना, हाथों में सुन्नपन, झंझनाहट, छाती और बाहों में दर्द होना भी सर्वाइकल के लक्षण हैं। सर्वाइकल पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक होता है। घर में महिलाएं झाड़ू, कपड़े धोना और खाना बनाने जैसे कार्य गर्दन झुकाकर करती हैं, जो कि सर्वाइकल के कारण हैं। सर्वाइकल शरीर में होने वाले कुछ परिवर्तनों के कारण होता है। पहला कारण, गर्दन की हड्डियों में C1 से C7 तक सर्वाइकल का एरिया होता है। इन सर्वाइकल हड्डियों के बढ़ जाने से नर्व पर दबाव आ जाता है, जिससे चक्कर, सिर दर्द, सुन्नपन, झंझनाहट और घबराहट की शिकायत होती है। दूसरा कारण है डीजनरेटिव चेंजेस। ओल्ड एज में डीजनरेटिव चेंजेस के कारण हड्डियों की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिससे गर्दन में अकड़न और जकड़न जैसे सिम्टम्स सामने आते हैं। तीसरा कारण है डिस्क हर्निएशन। दो हड्डियों के बीच में एक डिस्क होती है, जो एक शॉकर का काम करती है। हड्डियों के लगातार घिसने से डिस्क कंप्रेस होने लगती है। डिस्क के कंप्रेस होने से

0: नर्व पर दबाव आने लगता है। नर्व पर दबाव आने से ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित होता है और ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होने से हाथों में सुन्नपन आने लगता है। कभी-कभी नसों में सूजन भी आ जाती है। सर्वाइकल से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमेशा सही पोस्चर में बैठना है, सोते समय अधिक ऊंचा तकिया नहीं लगाना है, कंप्यूटर और मोबाइल चलाते समय और टीवी देखते समय लगातार एक पोजीशन में नहीं बैठना है, ज्यादा भारी सामान सिर और कंधों पर नहीं उठाना चाहिए। सर्वाइकल की पहचान के लिए गर्दन का एक्सरे कराना चाहिए। सर्वाइकल को बढ़ने से रोकने के लिए सर्वाइकल कॉलर का इस्तेमाल लगभग 3 माह तक करना चाहिए। इसके अलावा फिजियोथेरेपी का सहारा लेना चाहिए। वास्तव में फिजियोथेरेपी ही सर्वाइकल का सही ट्रीटमेंट है। फिजियोथेरेपी के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड, SWD, ट्रैक्शन, IFT, टेंस मशीनों के द्वारा सर्वाइकल का इलाज किया जाता है। इस बीमारी का मुख्य उपचार सर्वाइकल की विशेष एक्सरसाइजेज हैं, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा ही सही तरीके से कराई जाती हैं। दर्द निवारक औषधियों, तेल और क्रीम का प्रयोग भी सर्वाइकल में करते हैं। नियमित एक्सरसाइज गर्दन की मसल्स को शक्तिशाली तथा ब्रेन को स्वस्थ रखती हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस विषय पर डॉक्टर संजीव सिंह की वार्ता। इसी के साथ ही कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संवित स्वर में ये देश गान।

अभी आप सुन रहे थे संवित स्वर में ये देश गान। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 106.1 मीटर पर। श्रोताओं, सुबह के 7:18 हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का लिया निर्णय। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कल से लेकर 4 जुलाई तक आयोजित हो रहे यूपी टीईटी 2026 परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। इस बीच प्रदेश सरकार ने यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामपुर सहित प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा।
3: विरासत के संरक्षण का कार्य

0: रहे हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
1: रामपुर के बाद मुख्यमंत्री ने बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो रहा है। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रदेश के सभी जिलों में आज से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जनपद में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को पहले से जानकारी रहेगी कि उनके क्षेत्र का लेखपाल किस दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से तहसील अथवा अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल से ग्राम सचिवालय केवल विभिन्न योजनाओं के आवेदन केंद्र ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होंगे। इससे आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर ही सुलभ होंगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनेगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कल आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है।
3: वो लोग माता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी, लोगों के दुख पीड़ा को एहसास कर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वह आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ सके।
1: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग आज से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहन के धारक स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक 100% स्कूल वाहनों का फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। प्रदेश के सभी जिलों में आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत करीब एक दर्जन सरकारी विभाग आपसी समन्वय बनाकर पूरे माह संचारी रोगों की रोकथाम से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करेंगे। राज्य के लगभग सभी जिलों में मॉनसून की दस्तक हो गई है। मॉनसूनी वर्षा शुरू हो जाने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा,

0: कानपुर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर सहित कई जिलों में कल से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है।
1: 30 जून को वो मानसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया और अगले दो दिनों में के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले 3 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे हुए जो जिले हैं, वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रिवेलिंग टेम्परेचर की तुलना में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे।
0: प्रदेश में टाइगर रिजर्व के लिए 1 नवंबर 2025 से जारी पर्यटन सत्र कल संपन्न हो गया। 8 महीने तक चले इस सत्र के दौरान लखीमपुर खीरी के दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों ने वन्य जीवों का अवलोकन किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का लिया निर्णय। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम आसपास का। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं कुछ खोए हुए व्यक्तियों की सूचना। थाना खेरागढ़ आगरा से प्राप्त सूचना के अनुसार समीना पत्नी रईस विगत 20 मई 2026 से लापता हैं। ये मिर्जा मोहल्ला फकीर बस्ती कस्बा व थाना खेरागढ़ की रहने वाली हैं। समीना की आयु 35 वर्ष, ऊंचाई 4 फुट 2 इंच, रंग साफ और चेहरा गोल है। ये लाल रंग का सूट, हरे रंग की पजामी, आसमानी रंग का दुपट्टा और पैरों में हवाई चप्पलें पहने हुए हैं। समीना के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना खेरागढ़ जनपद आगरा के पते पर सूचित करें। थाना पिनाहट आगरा से प्राप्त सूचना।

के अनुसार मंजू देवी पत्नी स्वर्गीय मदन सिंह विगत 14 अप्रैल 2026 से लापता हैं। ये कस्बा भद्रौली पिनाहट आगरा की रहने वाली हैं। मंजू देवी की आयु 45 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 5 इंच, रंग सांवला और चेहरा गोल है। ये नारंगी कलर की साड़ी पहने हुए हैं। मंजू देवी के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना पिनाहट जनपद आगरा के पते पर सूचित करें। थाना इरादत नगर आगरा से प्राप्त सूचना के अनुसार राम प्यारी पत्नी श्री मदन गोपाल विगत 18 मई 2026 से लापता हैं। ये ग्राम पनौता इरादत नगर कमिश्नरेट आगरा की रहने वाली हैं। राम प्यारी की आयु 35 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 3 इंच, रंग गेहुआ और चेहरा सामान्य है। राम प्यारी के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना इरादत नगर जनपद आगरा के पते पर सूचित करें। थाना पिनाहट आगरा से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम सुरेश चंद्र पुत्र अंतराम है। ये ग्राम मोदीपुरा पिनाहट आगरा के रहने वाले हैं। सुरेश चंद्र की आयु 40 वर्ष, कद 5 फुट 8 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा है, दाढ़ी मूंछ हल्की सफ़ेद हैं और इनके सिर पर बाल नहीं हैं। ये क्रीम कलर की शर्ट सफ़ेद पाजामा पहने हुए हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। सुरेश चंद्र के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना पिनाहट जनपद आगरा के पते पर सूचित करें। थाना रकाबगंज आगरा से प्राप्त सूचना के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम दिलीप पुत्र कुंवर सिंह है। ये 30/201 कुम्हारपाड़ा छिपी टोला आगरा के रहने वाले हैं। दिलीप की आयु 49 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच, रंग गेहुआ और चेहरा सामान्य है। ये पैंट शर्ट पहने हुए हैं। दिलीप के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना रकाबगंज जनपद आगरा के पते पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों की सूचना समाप्त हुई।

आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। श्रोताओं, आइए अब एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सूचनाओं पर। जीएसटी अपीलीय अधिकरण में 31 जुलाई तक कर सकेंगे अपील। केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपनी अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। जीएसटी ट्रिब्यूनल के पोर्टल पर अपील दाखिल करने में तकनीकी समस्याओं के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। कर विशेषज्ञों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कर अधिवक्ताओं द्वारा अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग की जा रही थी। जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपीलों की अत्यधिक संख्या की वजह से पोर्टल पर दबाव बढ़ने से करदाताओं को तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा। पिछले 15 दिनों में 30,000 से अधिक अपीलें दाखिल हुई। तकनीकी समस्याओं एवं हितधारकों के अनुरोध पर समय सीमा बढ़ाई गई है। जीएसटी विशेषज्ञ ने बताया कि करदाता अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपील दाखिल कर दें, इससे पोर्टल पर अनावश्यक दबाव से बचा जा सकेगा और तकनीकी समस्याओं की संभावनाएं भी कम रहेंगी।

आज से शुरू होगा स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण। जिले में स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण बुधवार से यानी आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 15 जुलाई तक चलेगा। इसका उद्देश्य गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला में कोई भी बच्चा किसी कारण स्कूल से वंचित न रहे, ये है। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक मिशन एडमिशन में ध्यान लगाए हैं। अभियान के तहत शिक्षक अब न सिर्फ स्कूल छोड़ चुके बच्चों को खोजेंगे बल्कि उनके माता पिता को समझाकर बच्चों को वापस स्कूल आने के लिए कहेंगे। पहले चरण में अप्रैल महीने में घर घर जाकर सर्वे किया गया था, उसमें कई बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं। अब दूसरे चरण में काम और तेज होगा। शिक्षक अपने स्कूल के आसपास हर जगह जाएंगे, अनुपस्थित बच्चों को पहचानेंगे और तुरंत उनका नामांकन करवाएंगे। अगर बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड न हो तो भी माता पिता की ओर से दी गई डिटेल पर ही स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों से भी जोड़ा जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग का कहना, इस बार सिर्फ नामांकन पर जोर नहीं है, बच्चों को स्कूल से सही से जोड़ना और उनकी नियमित पढ़ाई तय करना है। परिषदीय स्कूलों में छात्रों की सुविधाओं के लिए खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था है, जिससे बच्चे स्कूल आएं और पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। बीएसए ने बताया, सभी खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक और शिक्षक पूरी तैयारी के साथ स्कूलों में छात्र संख्या में बढ़ाने के लिए जुट गए हैं। शहर और गांव दोनों जगहों पर अभियान चलेगा। भविष्य तभी बेहतर होगा जब हर बच्चा शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा।

यूपीटीईटी कल से 955 केंद्रों पर 20 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 गुरुवार से शुरू होगी। प्रदेश के 60 जिलों में बने 955 परीक्षा केंद्रों पर 5 पालियों में करीब 20 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा से पहले मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से कराई जाए। कहा कि प्रत्येक अभ्यर्थी को सुरक्षित, व्यवस्थित और तनावमुक्त परीक्षा वातावरण उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। परीक्षा ड्यूटी में केवल स्वच्छ छवि वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की ही तैनाती की जाए। मुख्यमंत्री ने सेवारत शिक्षकों को अधिक अवसर देने के लिए अलग से विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देश दिए। 2 जुलाई को दोनों पालियों में उच्च प्राथमिक, 3 जुलाई को पहली पाली में उच्च प्राथमिक और दूसरी पाली में प्राथमिक, जबकि 4 जुलाई को पहली पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। परीक्षा में कुल 19,94,661 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनमें 17,67,180 उत्तर प्रदेश और 2,27,481 अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं। श्रोताओं, सूचनाओं का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। जेईई की तरह नीट यूजी को बांटा जा सकता है दो चरणों में। पेपर लीक के बाद मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले से जुड़ी नीट यूजी की फुल प्रूफ बनाने को लेकर सरकार मुस्तैदी से जुटी है। इसी कड़ी में नीट यूजी की अगले साल से सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। इसके साथ ही परीक्षा को कोचिंग के जाल व नकल माफिया के नेटवर्क से बचाने के लिए जेईई की तर्ज पर दो चरणों में कराने जैसा विकल्पों पर मंथन तेज हुआ है। इनमें पहला चरण प्रारंभिक यानी स्क्रीनिंग का होगा, जबकि दूसरा चरण मुख्य होगा। मुख्य चरण में मेरिट के आधार पर ही छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। कुल मिलाकर अगले साल से मेडिकल प्रवेश में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

सीबीएसई ने 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए शुरू की एलओसी प्रक्रिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वर्ष 2026 की 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए नियमित छात्रों की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलओसी जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे 30 जून से शुरू हुई ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत पात्र छात्रों का विवरण समय पर परीक्षा संगम पोर्टल पर अपलोड करें। 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा अब 28 जुलाई को होगी, पहले यह 15 जुलाई को होनी थी। सीबीएसई ने के अनुसार इस बार मुख्य परीक्षा 2026 में कंपार्टमेंट प्राप्त करने वाले नियमित छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

नई दिल्ली कोसी कला एएमयू धौलपुर तक बढ़ी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 640737 640744 नई दिल्ली कोसी कला दैनिक ईएमयू का धौलपुर तक विस्तार किया है। पीआरओ ने बताया कि ये ट्रेन अब प्रतिदिन धौलपुर तक जाएगी और वहीं से लौटेगी।

10 जुलाई तक आवेदन। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत नीलिट मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से ओ लेवल और सीसीसी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

रीमॉडलिंग कार्य के चलते दो ट्रेनें निरस्त रहेंगी। रेलवे के झांसी मंडल में ललितपुर स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के चलते दो ट्रेनें निरस्त रहेंगी। आगरा रेल मंडल के पीआरओ ने बताया कि 17633 हुबली योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 13 जुलाई और 17364 योगनगरी ऋषिकेश हुबली एक्सप्रेस 16 जुलाई को नहीं चलेगी। श्रोताओं, ये थी आज की मुख्य सूचनाएं और आइए अब आनंद लेते हैं इस गीत का।

श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम आसपास अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश,

0: बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपये, गोवा में 406 रुपये और केरल में 401 रुपये प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
2: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
3: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा।

0: सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय

0: कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
1: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
0: सभी मदरसों को UDIS यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
3: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है PM की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर PM ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान

0: On war footing on India's wrist, Petroglyph Conservation Park at Sindhu Ghat in Leh, with the relocation of centuries-old rock carvings, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Vikasit Bharat G. Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Narega. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a three-day visit to India. France beats Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football. And India's men's cricket team to begin their five-match 2020 international series against hosts England today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day. आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। विकसित भारत जी रामजी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है, जो मौजूदा एमजी नरेगा की जगह लेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बातचीत की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त और तिजारत के तहफ्फुज़ की जरूरत पर जोर दिया। जापान की वजीर आजम सनाई ताइकीची भारत के तीन दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। फुटबॉल में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। अब खबरें तफसील से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो जाएगा। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि इस कानून से, जिसमें हर माली साल में 125 दिन के उजरत वाले रोजगार की गारंटी दी गई है, देही भारत बाइख्तियार बनेगा। हमारे नवनिगार ने बताया है कि मुल्क भर में नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए रवा माली साल में 95,692 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तफसील हमारे नवनिगार से।
2: वीबीजी रामजी कानून ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून एमजी नरेगा 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का मकसद गारंटी वाले रोजगार में इजाफा करना है। इस कानून के तहत माली साल में अब तक 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब से 125 दिन की गारंटी दी जाएगी। गारंटी वाले रोजगार में इस इजाफे का मकसद देही तरक्की की रफ्तार में तेजी लाना, मजीद आमदनी की यकीन दहानी करना और देही घरों को बाइख्तियार बनाना है। इस कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेही पर मबनी उजरत की अदायगी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। इस नए कानून के तहत ये सहूलत फराहम की गई है कि अगर किसी को मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर काम फराहम नहीं किया गया तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। विकसित भारत जी रामजी कानून एक जामे फ्रेमवर्क है, जिसे 2047 तक विकसित भारत के कौमी तस्वूर के मुताबिक देही रोजगार फराहम करने के लिए तश्कील दिया गया है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
3: देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस मिशन पर अमल दरामद के बारे में कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी बगैर कामकाज के न रहे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ करीबी ताम रखते हुए सभी इंतजामी, माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, ताकि नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि भरपूर माली वसाइल दस्तयाब कराए गए हैं, लिहाजा अमल दरामद का निजाम पूरी तरह तैयार है और जो काम जारी हैं वो बिला रुकावट जारी रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 125 दिन की उजरत वाले रोजगार की इस गारंटी से देही गुजर बसर को इस्तेहकाम हासिल होगा, लोगों को मुस्तकिल असासे फराहम होंगे और विकसित भारत के तसव्वुर पर अमल दरामद में तेजी आएगी। मरकजी हुकूमत ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी कानून 2025 के लिए गारंटी के तहत उजरतों में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया है, जो आज से लागू हो गया है। دیہی ترقی کی وزارت کی طرف سے جاری کیے گئے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق

0: उजरत की शरहों में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इजाफा किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा पहली बार है कि 300 रुपए रोजाना की उजरत आरजी बुनियाद पर शुरू की गई है, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इस प्रोग्राम के तहत नोटिफिकेशन में शामिल कोई भी उजरत इस सतह से कम न हो। एमजी नरेगा के तहत कौमी सतह पर औसत उजरत पहले 298 रुपए 80 पैसे थी, जिसे अब वीबीजी रामजी के तहत 327 रुपए 40 पैसे रोजाना कर दिया गया है, जो औसतन 10% से ज्यादा है। उत्तराखंड अकलती तालीमी इदारे अथॉरिटी आज से नाफिज हो गई है, जो रियासत में मदरसा बोर्ड की जगह लेगी। इस तरह उत्तराखंड में सभी 456 मदरसे रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत दोनों के जेरे निगरानी रहेंगे। रियासत के समाजी बहबूद और अकलियतों की बहबूद के वजीर खजान सिंह ने कहा कि रियासत में सभी मौजूदा तस्लीम शुदा मदरसे अब उत्तराखंड अकलियती तालीमी इदारे अथॉरिटी के तहत आएंगे। ये मदरसे उत्तराखंड के स्कूली तालीम के बोर्ड के साथ भी मुंसलिक होंगे, ताकि तलबा कौमी तालीमी मयारात के ऐन मुताबिक पढ़ाई कर सकें।
1: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया, उनको समय भी दिया गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा और इससे जुड़िएगा, सबकी एक शिक्षा होगी, एक सम्मान होगा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और अल्पसंख्यक में मुस्लिम ही नहीं है, सिख भी है, तो ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है।
0: सभी मदरसों को तालीम से मुतालिक मुत्तहिदा जिला इत्तिलाती निजाम के नंबर अलॉट किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरमू जिले में जंतुलूरू के मकाम पर आंध्र प्रदेश की मरकजी यूनिवर्सिटी के पहले तकसीम असनाद जलसे में शिरकत करेंगी। वो उन 1268 तलबा को डिग्रीज अता करेंगी जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में कामयाबी हासिल की है। वो 56 तलबा को उनकी गैर मामूली तालीमी कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल भी अता करेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियां से टेलीफोन पर बात की। इस गुफ्तगू के दौरान ईरान के सदर ने जनाब मोदी को मगरबी एशिया के हालात और वाकयात और आगे बढ़ने के लिए इकदामात से वाकिफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुफाहमत पर इत्तेफाक राय होने का खैर मकदम किया और भारत के इस मौकिफ को दोहराया कि सभी मामलात मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमद और रफ्त के तहफ्फुज़ नीज तिजारत के लिए कोशिशें जारी रखे जाने की जरूरत दोहराई। ईरान के सदर ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान अमन इस्तेहकाम और इलाकाई इश्तराक की हिमायत करने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जाती रोल की सदाइश भी की। इधर भारत में ईरान के सिफारतखाने के मुताबिक इस बातचीत में सदर पेजिशकियान ने भारत में ब्रिक्स के तवानाई महकमे के वजीरों की मीटिंग की मेजबानी और इसकी कामयाब मंसूबाबंदी के तहत इत्मीनान का इजहार भी किया। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा होगा। मोहतरमा तकाईची वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कल 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगी। इस सरबराह मुलाकात से तरफेन को इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने और उन्हें मुस्तहकम बनाने का मौका मिलेगा। हमारे नामनिगार ने बताया है कि भारत और जापान की दोस्ती तवील अरसे से कायम है और ये सदियों से सकाफती और तहजीबी तबादले, रूहानी रिश्ते, नीज आज़ादी, जमहूरियत और कानून की अमलदारी के तई एहतराम की मुश्तरका अकदार पर मबनी है। एक रिपोर्ट।
2: भारत जापान बाहमी ताल्लुकात को 2014 में खुसूसी कलीदी और आलमी साझेदारी की सतह पर पहुंचाया गया था। अब जबकि दोनों मुल्क अगले साल अपने सिफारती ताल्लुकात के कयाम को 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसमें तिजारत, सरमायाकारी, इक्तसादी सिक्योरिटी, दिफा, साइंस टेक्नोलॉजी, सकाफत और अवाम से अवाम के राबते भी शामिल हैं। भारत जापान जाम इक्तसादी साझेदारी समझौता यकुम अगस्त 2011 को नाफिज हुआ था। इधर साल 2025-26 के दौरान बाहमी तिजारत 27 अरब डॉलर से भी तजावुज कर गई। जापान भारत में सरमायाकारी करने वाला 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। जापान

0: अप्रैल 2000 और मार्च 2026 के दरमियान 48 अरब 17 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की। सकाफती इश्तराक भी काफी मजबूत है और जापान ने योग समेत भारतीय सकाफत में बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: मरकज ने आज से 15 दिन के लिए बरामद किए जाने वाले पेट्रोल डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर आयद महसूल की शरों में तब्दीली की है। वजारत खजाना की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक इन नई शरों के तहत बरामद किए जाने वाले पेट्रोल पर 4 रुपए फी लीटर मुकर्रर किए गए हैं। डीजल पर यह महसूल 8.5 रुपए होगा जबकि पहले यह महसूल 14 रुपए था। वजारत ने बताया कि हवाई जहाज के ईंधन की बरामदात पर आयद खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी को 12.5 रुपए से कम करके 7.5 रुपए कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जब यह बरामदाती ड्यूटी इब्तदाई तौर पर नाफिज की गई थी तो बरामद किए जाने वाले पेट्रोल डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर सरकारी शोबे की तेल कंपनियों ने नेपाल भूटान बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए छूट फराहम की थी। अब इस छूट में तौसी कर दी गई है और इसमें मॉरिशस और मालदीव भी शामिल कर लिए गए हैं। 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस आज जयपुर में शुरू हो रही है। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम इंतजामी इसलाहत और अवामी शिकायत के महकमे, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत नीज राजस्थान सरकार ने मुश्तरका तौर पर किया है। इस साल की कॉन्फ्रेंस का मौजू है विकसित भारत 2047, मसनूई जहानत और डेटा पर मबनी महफूज डिजिटल हुक्मरानी। राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान सरकार के डिजिटल गवर्नेंस के कई इकदामात और इख्तिरात का आगाज किया जाएगा। फिल्म थिएटर की मारूफ शख्सियत विजय मेहता का कल रात मुंबई में उनकी रिहायशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 92 साल की थी। उनका शुमार मराठी तजर्बाती थिएटर के कायदीन में होता था। फुटबॉल में न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में आज सुबह खेले गए मैच में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। फ्रांस की तरफ से किलियान एम्बापे ने 2 गोल किए। इस तरह वो वर्ल्ड कप में 18 गोल कर चुके हैं और अब वो लियोनेल मेसी से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। इससे पहले टेक्सास में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 1-2 गोल से हरा दिया और इस तरह नॉर्वे भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। अब इतवार की रात को प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला ब्राजील से होगा। मर्दों की क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज चेस्टरली स्ट्रीट में रिवर साइड ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। श्रेयस अय्यर के जेर कमान भारतीय टीम गुजश्ता सीरीज में आयरलैंड से 2-0 से हारने के बाद खेल में वापसी की भरपूर कोशिश करेगी। सबकी निगाहें उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज भी होगी। खवातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में लंदन के ओवल मैदान पर खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। ओवल मैदान पर ही कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीम ने आमने सामने होंगी। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक से टकराने के बाद स्लीपर बस में आग लगने के वाकये में 7 अफराद की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यह हादसा बंदीकुई के नजदीक रात देर गए 3 बजे के आसपास पेश आया। यह बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनू मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब में पहुंचने का इम्कान है। इधर मानसून मध्य प्रदेश के कुछ और इलाकों छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार के बकिया हिस्सों उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों नीज उत्तराखंड के बेशतर हिस्सों में मजीद आगे बढ़ गया है। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
2: शुक्रिया असलम। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों की सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग को नुमाया किया है जिसमें कारोबार और रहन सहन में आसानी और खुदकफील भारत जैसे अहम मौजूद पर तबादला ख्याल किया गया। अखबार की एक और अहम सुर्खी है जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ के ओहदे से सुबुकदोश, नए जनरल धीरज सेठ ने फौजी सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है दिल्ली समेत 5 रियासतों में SIR का अमल शुरू, महाराष्ट्र कर्नाटक मेघालय और झारखंड में होगा SIR। अखबार की बैनल अक्वामी सुर्खियां इस तरह हैं, खाने काबा को गुस्ल देने

0: की रूह परवर सालाना तकरीब मुनाकिद, यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला बर्रे आजम।
1: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। विकसित भारत जी राम जी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है, जो मौजूदा MG नरेगा की जगह लेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बात की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त और तिजारत के तहफ्फुज़ की जरूरत पर जोर दिया। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। फुटबॉल में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, इस समय सुबह के 8:45 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म अभिनेत्री का ये गीत। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अभिनेत्री का ये गीत। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म प्रिंस का ये गीत। गीतकार हैं फारूक कैसर, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्रिंस का ये गीत। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ही फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का ये गीत। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: श्रोताओं कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म अमीर गरीब का ये गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की शब्द रचना को। धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म का नाम था अमीर गरीब। श्रोताओं, कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में फिल्म अनजाना का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए फिल्म अनजाना के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीतांजलि अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, सुबह के 9:15 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: आज सुनिए हाथरस और भदोही जिलों की हलचल।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए भदोही और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं भदोही जिले की हलचल, आलेख है संजय कुमार का।
2: भदोही में अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों के विकास को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 30 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। प्रत्येक गांव में करीब 20-20 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क, नाली निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा चयनित गांवों का सर्वे पूरा कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। बजट स्वीकृत होते ही विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2019-20 से अब तक जिले के 128 गांव इस योजना में शामिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 50 से अधिक गांवों में कार्य चल रहा है, जबकि शेष गांवों में ग्राम विकास योजना और बजट की स्वीकृति मिलने के बाद कार्य प्रारंभ होंगे। शासन की इस योजना से अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुई भीषण अग्निकांड के घटना के बाद भदोही जिले में भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर DIOS भदोही, औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम लगातार होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही है। विशेष अभियान में कुल 145 प्रतिष्ठानों की जाँच की गयी। जाँच के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले 85 संचालकों को नोटिस जारी किया गया, जबकि गंभीर अनियमितता मिलने पर 6 कोचिंग सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि जिले के कई प्रतिष्ठानों ने अब तक अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तक नहीं लिया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। साइबर थाना पुलिस ने निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर देश भर में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज्ञानपुर के नंदापुर निवासी मन्नू सिंह और चख सिखारी निवासी ओम प्रकाश गौतम ने लोगों को कम समय में 3 गुना लाभ देने का झांसा देकर फर्जी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ठगी करते थे। जांच में सामने आया है कि इनके नेटवर्क से जुड़े 50 से अधिक खातों के माध्यम से 50 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी की गई है। इनके खिलाफ केरल, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में 50 से अधिक NCRP शिकायतें दर्ज हैं। 5 ATM कार्ड, 3 पासबुक, 3 चेकबुक, 47 फर्जी आधार और पैन कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन, स्टाम्प पैड तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस जांच में विभिन्न बैंकों के खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारी मिली है। गिरोह के सरगना सुमित सिंह समेत 4 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। औराई क्षेत्र के समधा गांव में 106 हेक्टेयर में फैले विशाल ताल को राज्यपाल द्वारा आधिकारिक रूप से वेटलैंड अर्थात आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के तहत चयनित इस ताल को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिला वेटलैंड समिति का गठन किया जाएगा, जो विकास की विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगी। यहाँ प्रवासी पक्षियों के अनुकूल प्राकृतिक वातावरण विकसित करने के साथ साथ पर्यटकों के लिए वन डे टूर, भ्रमण पथ, बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और जिले में पर्यटन की नई संभावनाएं भी विकसित होंगी। नगरपालिका प्रशासन ने लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे नए शहरवासियों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य कराए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि वर्षों से उपेक्षित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे नागरिकों को बेहतर शहरी जीवन मिल सके।

0: पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गोपीगंज में भदोही साइकिलिंग क्लब की ओर से साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। बड़ा चौराहा से शुरू हुई यह यात्रा क्लब अध्यक्ष अताउल मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में निकाली गई। जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी जर्जर विद्यालय भवनों को प्रत्येक प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर उन्हें पूरी तरह बंद कराया जाए ताकि कोई भी छात्र या अन्य व्यक्ति उनके अंदर प्रवेश न कर सके।
1: भदोही जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार का।
2: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कलेक्टर सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों का प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जनप्रतिनिधियों के साथ अवलोकन किया। प्रभारी मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों व संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी दी। इस उपलक्ष्य में सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 12 वर्ष विषयक समेकित जन कल्याण का एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत विकास खंड मुरसान ग्राम पंचायत रायक नगला लच्छी सैनपुर अर्जुनपुर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में केंद्र सरकार द्वारा विगत 12 वर्षों में संचालित जन कल्याणकारी योजना गरीब कल्याण कार्यक्रम एवं विकास कार्यों की जानकारी ग्रामीणों को प्रदान की गई। साथ ही आम जन को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रदेश की महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने यहां अवस्थापना विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में तहसील सदर हाथरस में के ग्राम अधीसा भगवंतपुर में अटल कन्वेंशन सेंटर व गेस्ट हाउस निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि लगभग 200 लोगों की क्षमता वाली इस कन्वेंशन सेंटर में सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक प्रशासनिक एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक लोगों को विभिन्न आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता था, लेकिन इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के बाद यह समस्या समाप्त हो जाएगी और जनपद को एक आधुनिक एवं सुव्यवस्थित आयोजन स्थल प्राप्त होगा। इस महत्वाकांक्षी योजना परियोजना पर लगभग 7 से 7.5 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने केलोरा चौरा स्थित ठाकुर मलकान सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही जनपद हाथरस में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से संबंधित विभिन्न परियोजना का अवलोकन पर एवं शिलान्यास किया तथा जनपद में धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण विकास हेतु जनपद वासियों के लिए सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी द्वारा 1,024.70 लाख रुपए लागत की 9 पर्यटन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण पर किया। इनके विकास भवन स्थित पर्यटन केंद्र निर्माण एवं विकास कार्य मुड़ा वाली माता मंदिर दावजी महाराज मंदिर प्राचीन हनुमान मंदिर उदय सिंह की कचहरी परिसर में लैंडस्केपिंग एवं जनसभा काल गंगागढ़ी स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर सिद्धपीठ पर्वशाला तीर्थ भूमि कर ढकपुरा मंदिर सड़क आश्रम तथा काली माई मंदिर के पर्यटन विकास कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 308.80 लाख रुपए लागत की 4 परियोजना का शिलान्यास भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम पर्यावरण चेतना अभियान की शुरुआत की गई। इस खास मौके पर वन विभाग के तत्वाधान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शासनीय स्थित नगर वन में संपन्न हुआ जिसमें पर्यावरण संरक्षण को भारी उत्साह देखने को मिला। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जनपद के बाल श्रम उन्मूलन एवं बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा कलेक्टर परिसर में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: अभी आप सुन रही थी जिले की हलचल। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।

0: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
1: तुमने दी आवाज, दिलों में आ गया।
0: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम। आप सुन सकते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 पर, और साथ ही न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा 10:10 का। आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म ब्लफ मास्टर से। गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में भी आप सुन रहे थे फिल्म ब्लफ मास्टर का ये गीत। पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में फिल्म वासना का ये गीत। गीतकार हैं प्रेम धवन, संगीतकार हैं रोशन।

मोहम्मद रफ़ी, अशोक भोसले और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म वासना का ये गीत। गीत को लिखा था प्रेम धवन ने, संगीतबद्ध किया था रोशन ने। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मंजूषा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का ये गीत। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया है चित्रगुप्त ने।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म काली टोपी लाल रुमाल फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:45 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं संवेद स्वर में कुछ लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। हम आपको सुनवा रहे हैं संवेद स्वर में कुछ लोकगीत।

श्रोताओं, संवेद स्वर में आप सुन रहे थे कुछ लोकगीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

0: अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और श्रद्धा पंडित की आवाजों में फिल्म जिस देश में गंगा रहता है का ये गीत।
1: जहाँ आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: कार्यक्रम सुरसरिता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में फिल्म मेजर साहब का ये गीत।

उदित नारायण और अनुराधा पौंडवाल की आवाज़ों में भी आप सुन रहे थे फिल्म मेजर साहब का ये गीत। गीत को लिखा था देव कोहली ने, संगीतबद्ध किया था आनंद राजानंद ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म जब प्यार किसी से होता है का ये गीत। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में फिल्म कृष का ये गीत। गीत को लिखा है फराज ने, संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल के गाए फिल्म कृष के इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता भी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओ, समय सुबह के 10:30 हो रहे हैं। अब समय है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित यशपाल का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग नट भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित यशपाल का राग नट भैरव में ख्याल गायन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है कार्यक्रम आज के कलाकार का, तो बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार।

कार्यक्रम आज के कलाकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी शशांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुरों के संगम से वे लोगों के दिल में जगह बनाना जानते हैं, तो दिग्गज स्लैप्स की मिमिक्री करना उनका शगल है। जी हां, आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से

जो ना केवल प्लेबैक सिंगर हैं बल्कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं गायक सुदेश भोसले की, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। सुदेश टैलेंट का वो खजाना है जिन्होंने न सिर्फ तमाम गानों को सुरों में पिरोया बल्कि अमिताभ से लेकर अनिल कपूर जैसे तमाम दिग्गजों को भी अपनी आवाज दी। आज उनके बर्थडे पर हम करेंगे आपके साथ में तमाम सारी बातें उनके सफर से जुड़ी, लेकिन फिलहाल सुनते हैं उनका गाया ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं गायक सुदेश भोसले की। 1 जुलाई 1960 के दिन महाराष्ट्र में जन्मे सुदेश अपने गानों और मिमिक्री के लिए मशहूर हैं। वे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की मिमिक्री काफ़ी अच्छे से करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने बिग बी के लिए कई गाने भी गाए हैं। फिल्म हम का गाना जुम्मा जुम्मा ने सुदेश ने अपनी आवाज़ से सजाया और यह गाना सुपरहिट रहा और आज भी लोगों की जुबां पर रहता है। लेकिन इसी गाने की वजह से सुदेश डिप्रेशन में चले गए थे। सोचने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कहानी कुछ इस तरह से है कि जब जुम्मा गाना हिट होने के बाद सुदेश के पास सिर्फ अमिताभ बच्चन की आवाज़ में ही काम करने के ऑफर्स आने लगे, तो कई स्लैब्स की आवाज़ निकालने वाले सुदेश इस बात से डिप्रेशन में थे कि अब मेरे को कोई और काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुदेश ने बाकी किसी और स्टार पर काम कराने में कोई भी दिलचस्पी नहीं ली। यही वजह रही कि सुदेश ने कई बार रिजेक्शन का सामना किया। इसके चलते वे डिप्रेशन में भी चले गए और हालत यह हो गई कि वे मिमिक्री करने की अपनी ही काबिलियत से नफरत करने लगे। हालांकि कुछ समय बाद वह इस मुश्किल से उभर गए। बता दें कि बागवान फिल्म का गाना मेरी मखना मेरी सोनिए भी सुदेश ने ही गाया था।

संगीत के माहौल में पले बड़े सुदेश को गाने के साथ साथ लोगों की आवाज निकालने का शौक था। उन्होंने मशहूर हस्तियों जैसे किशोर कुमार, एस डी वर्मन और मोहम्मद रफी की आवाजों पर महारत हासिल की। आर डी वर्मन से भी एक मुलाकात का दौर आया जब दिग्गज गायिका आशा भोसले ने उनकी मुलाकात संगीतकार आर डी वर्मन पंचम दास से करवाई, जिसके बाद उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला। गायन और डबिंग में सफलतापूर्वक ये उनका पहला ब्रेक था। बतौर प्लेबैक सिंगर अपने करियर की शुरुआत उन्होंने 1988 में फिल्म जलजला से की। अमिताभ बच्चन की आवाज फिल्म हम के सुपरहिट गाने जुम्मा जुम्मा ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद अमिताभ बच्चन के लिए कई आइकॉनिक गाने भी उन्होंने गाए। अगर हम डबिंग करियर की बात करें तो मिमिक्री के हुनर का इस्तेमाल भी उन्होंने कई फिल्मों में डबिंग आर्टिस्ट के रूप में किया। अभिनेता संजीव कुमार के निधन के बाद उनकी अधूरी फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन में सुदेश ने ही उनको अपनी आवाज में डब किया था। इसके अलावा फिल्म तेजाब में अनिल कपूर की आवाज भी सुदेश ने ही डब की थी। लोकप्रिय गीत उनके मशहूर गानों की अगर हम बात करें तो ओ लाल दुपट्टे वाली आंखें फिल्म, मखना बड़े मियाँ छोटे मियाँ इसमें शामिल है, और हम फिल्म का गाना जुम्मा तो सुपरहिट रहा ही है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं गायक सुदेश भोसले की। कई लोगों को गलतफहमी रहती है कि वे दिग्गज गायिका आशा भोसले के बेटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सिर्फ एक सरनेम का संयोग है। वे दोनों मूल रूप से गोवा से ताल्लुक रखते हैं। सुदेश की अगर बात की जाए तो बचपन से ही

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं गायक सुदेश भोसले की। सुदेश भोसले के जन्मदिन पे आज हम सब यही आशा करते हैं कि उनका जो बॉलीवुड करियर है, उनकी जो गायकी है, उनकी जो मिमिक्री है, वो उसमें दिन रात यूं ही चमकते रहें और बॉलीवुड की जो शान है उसे बरकरार रखें। आज के कार्यक्रम का आज के कलाकार में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको सुनवाते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत। इसके बाद हम मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में आज के कलाकार के किसी और शख्सियत के साथ।

आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 106.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का, तो सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी शशांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे वन महोत्सव जीवन उत्सव पर। जी हाँ, वन हमारी जिंदगी में कितने विशेष हैं, कभी आपने सोचा है? हमारे देश में पेड़ों की काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है, लेकिन कई जगह पर पेड़ों की कटाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी के चलते देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। इस वन महोत्सव के माध्यम से देश में पेड़ों के महत्व को और अधिक समझने और पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। जहन में ये सवाल आता है कि वन महोत्सव का मतलब क्या है। वन महोत्सव की शुरुआत सन 1950

में हुई। देश भर में वर्तमान समय में वन महोत्सव मनाने के मुख्य उद्देश्य जंगलों के संरक्षण और पेड़ पौधों को बचाव करना है। वन महोत्सव को शुरू करने के पश्चात पेड़ों के महत्व को लेकर जागरूकता देश भर में फैली है। वनों की कटाई लगातार होने से पृथ्वी पर कई प्रकार के बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं और इसी को बचाने के लिए वन महोत्सव की शुरुआत करके देश भर में और पूरी पृथ्वी पर जागरूकता फैलाने की एक अनूठी पहल की गई है। देश में वन महोत्सव के माध्यम से वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने के साथ साथ नए वृक्षों को लगाने में भी कई अभियान चलाए जा रहे हैं। वन महोत्सव के माध्यम से वृक्षों की कटाई कम करके जल की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और वर्षा के चक्र को अनियंत्रित होने से बचाया जा रहा है। वनों की कटाई की वजह से हर साल मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण दिया जा रहा है। इसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सरकार के द्वारा वन महोत्सव की एक अनूठी पहल की शुरुआत करके देश भर में नए वृक्ष लगाने के लिए और वृक्षों के महत्व को बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए यह मुहिम छेड़ी गई है। वन महोत्सव का महत्व समझने के लिए हमें वनों की कटाई में होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी जानना होगा। यदि वनों की कटाई ऐसे ही लगातार होती रही तो पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि हिमालय की सारी बर्फ पिघल जाएगी, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ जाएगा और बाढ़ जैसी विकट स्थिति पैदा हो जाएगी और जिसके प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे हम सब।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और आज हम बात कर रहे हैं वन महोत्सव जीवन उत्सव पर। बढ़ती जनसंख्या और आधुनिकीकरण का सीधा प्रभाव हमारे वनों पर पड़ रहा है, जिसके चलते वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। भारत में अब सिर्फ 20% से ही वन बाकी रह गए हैं। वनों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए वन महोत्सव देश में मनाया जाता है। वन महोत्सव को एक राष्ट्रीय त्योहार घोषित किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वन महोत्सव की शुरुआत साल 1950 में देश के कृषि मंत्री डॉ. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा की गई थी। वन महोत्सव हर साल जुलाई महीने में प्रथम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। उस दिन देश के सभी विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, सरकारी दफ्तरों, कई संगठनों और संस्थाओं द्वारा पूरे देश में पौधे लगाने के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। काफी मात्रा में लोग इस महोत्सव में भाग लेते हैं। वनों के साथ हमारे जीवन का गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। वन हमें हमारे शरीर के लिए मूल्यवान प्राणवायु, फल, फूल, दवाइयां और काफी कीमती जीवन जरूरी सामग्री प्रदान करते हैं। वनों की कटाई के कारण हमारा भविष्य भी जोखिम में पड़ सकता है। वन महोत्सव के दिन हमें हर साल अधिक से अधिक पौधे लगाने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। लोगों में वनों के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए, जिससे हमारे आने वाले कल बेहतर हो और सुनहरा बन सके, क्योंकि वृक्ष है तो जीवन है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और आज हम बात कर रहे हैं वन महोत्सव जीवन उत्सव पर। हमारी भारतीय संस्कृति का भी वनों के साथ काफी गहरा नाता है। हमारे ऋषि मुनि भी शांति और एकांत की तलाश में वन में रहते थे। हमारी प्राचीन परंपरा से हम वृक्षों की पूजा करना, व्रत रखना और जल चढ़ाना सीखे, और ये हमें हमारे पूर्वजों ने भी सिखाया। प्राचीन समय में गुरुकुल भी जंगल में ही हुआ करते थे, क्योंकि शिक्षा लेते समय मन को एकाग्रता और शुद्ध वातावरण प्राप्त हो। हिंदू संस्कृति में भी वृक्षों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। आपको तुलसी का एक पौधा हर घर में देखने को मिलेगा। अगर वनों से लाभ की बात की जाए तो वनों के अनगिनत लाभ हैं। सबसे अहम लाभ तो ये है कि हमारे जीवन के लिए ये प्राणवायु देते हैं, शुद्ध और स्वच्छ वातावरण देते हैं। उनकी हरियाली देखकर हमारी आंखों की जो थकान होती है वो दूर होती है और मन को शांति मिलती है। वन अनेक प्राणी और पक्षी का आशियाना भी है। वनों से हमें लकड़ियाँ मिल रही हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं, कागज मिल रहा है, चंदन की लकड़ियाँ जैसी कई मूल्यवान चीज़ें मिल रही हैं। जीवन जरूरी सामग्री प्राप्त होने के साथ ही गर्मी में ठंडक देना, वर्षा ऋतु में बारिश लाने का काम भी तो ये वन ही करते हैं। हमें इन वनों का आभारी होना चाहिए। वन धरती के कटाव को रोकना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो उपजाऊ मिट्टी है वो नष्ट हो जाएगी, और हमें इसे नष्ट नहीं होने देना है।

0: ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीधे में भर लूंगा।
1: ये नदियां

जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और आज हम बात कर रहे हैं वन महोत्सव जीवन उत्सव पर। ग्लोबल वार्मिंग विश्व के लिए एक चुनौती बन गई है। वनों के कटने के कारण बारिश कम हो रही है और धरती का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। वनों की कटाई के कारण पृथ्वी पर कई जीवों की जातियां नामशेष हो गई हैं, तो ऐसे में हमारा अस्तित्व वनों से ही जुड़ा है, इसलिए वनों की रक्षा करना हमारा अहम कर्तव्य है। वनों के महत्व को समझते हुए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वन महोत्सव दिवस को बढ़ावा दें। वनों से ही हमारी पृथ्वी की सुंदरता बढ़ती है और हमें अपनी भावी पीढ़ी को बेहतर वातावरण देने की ये कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम और हमारा भविष्य दोनों सुरक्षित रहें।

श्रोताओं, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज के लिए बस इतना ही। अपने रेडियो साथी शशांक शर्मा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।
1: पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का लिखते हैं। जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।

0: पुणे से सुयोग बटुए।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
1: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
0: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं, और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
1: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
1: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
1: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
1: जी।
0: तो विमलेश जी, आप जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
1: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
1: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
1: जी।
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
1: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
1: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं, और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था
0: जी। लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं, लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं, तो याद रखिए ये मूल रूप से पृथ्वी

0: की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है,
1: जी
0: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
1: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम अरावली की कहानी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: वाह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
5: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
5: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
5: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
7: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
8: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
5: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान।

0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
1: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
2: जी मैम,
3: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के

0: गई।
1: अपरदन, ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: हाँ, जी मैम।
4: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
3: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
4: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
3: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है

0: बांगुई।
1: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए है ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
2: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे भाई, ये भी कोई
2: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
2: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है बोलो।
3: मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत

0: खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
1: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
2: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो
1: बार। अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करें? मैं कहता हूँ भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से।
3: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
1: मुखिया जी, मुखिया जी!
4: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि
4: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
4: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
4: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
4: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
4: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
4: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
6: मुखिया जी,
4: अब क्या है?
6: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
4: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
2: मुखिया जी, मुखिया जी,
4: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
2: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
4: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो, सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
2: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है। हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
4: नालायक, डरपोक! अरे भाग रहे हो, इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
2: जैसी आपकी मर्जी।
4: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ, छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है, पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, अरे कहाँ जाऊँ मैं? ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है? अरे बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरे

आखिर पहुंच ही गया। यहां तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का। ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर।

सब कुछ खोने से बुरा होता है उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे आप सब कुछ पा सकते हैं, तो अपनी उम्मीद हमेशा कायम रखें। श्रोताओं, अब समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम नए तराने का, तो चलिए आनंद लेते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम नए तराने का।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण और साथी की आवाज में। फिल्म का नाम था इश्क। राहत इंदौरी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म यस बॉस से। गीत को गाया है अभिजीत ने। जावेद अख्तर की रचना को संगीत से संवारा है जतिन ललित ने।

कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिर भी दिल हिंदुस्तानी फिल्म में सोनू निगम मलका याग्निक को जावेद अख्तर की रचना को संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कल हो ना हो से। आवाजें हैं साधना सरगम, सुजाता भट्टाचार्य और उदित नारायण की। जावेद अख्तर की रचना को संगीत से संवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

जाता भट्टाचार्य उदित नारायण को। जावेद अख्तर की रचना को संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म बादशाह से। आवाजें हैं अभिजीत और साथी की, शब्द रचना समीर की है, संगीत रचना अनु मलिक की।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम नई तराने का आनंद अभी आप ले रहे थे आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का आखिरी गीत आपने सुना फिल्म बादशाह से। आवाजें थी अभिजीत और साथी की, शब्द रचना समीर की, संगीत रचना अनु मलिक की। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। बस अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, उसके उपरांत अंग्रेजी और उर्दू में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा की 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम

0: नियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said Digital India initiative has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. Marking the 11 years of the initiative, Mr. Modi said that Digital India has touched every aspect of life. He underscored that seamless digital payments and direct benefit transfers are reaching beneficiaries with transparency. Mr. Modi said that technology has become a powerful instrument for furthering ease of living. Home Minister Amit Shah has said that the government has transformed India into a digital nation by expanding digital connectivity, strengthening digital governance, and improving access to public services. Marking 11 years of the Digital India initiative, Mr. Shah said the country has witnessed significant progress in internet connectivity, digital infrastructure and technology-driven governance. In a social media post, he said that over 103 crore people are now connected to the internet, while more than 2,20,000 villages have been linked through BharatNet. Revised wage rates under the Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025 have become effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. The ministry said for the first time an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under MG Narega to 327.4 rupees per day under Viksit Bharat Ji Ramji.

0: के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। रियासती हुकूमत ने मुलाजिम असातिज़ा के लिए अलग से टीचर अहलियत टेस्ट TET कराने का फैसला किया है। UPTET 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल इस सिलसिले में अफसरान को वाज हिदायत दी। मीटिंग के दौरान वजीर आला ने कल से 4 जुलाई तक मुनक्किद हो रहे UPTET 2026 इम्तिहान की दयानतदारी और शफाफियत व उम्मीदवारों की सहूलियत को यकीनी बनाने पर खसूसी जोर दिया। इस दरमियान रियासती हुकूमत ने UPTET 2026 के इम्तिहान में शिरकत कर रहे बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूलों में मुलाजिम असातिज़ा को खसूसी छुट्टी देने का भी फैसला किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 102 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। उन्होंने बोर्ड के इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा और मुख्तलिफ स्कीमों के फायजीन को लैपटॉप और ग्रांट के चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि हुकूमत रामपुर समेत रियासत के रूहानी विरसे के मकामात को जिंदा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर इलाके में तरक्की को मजीद मजबूत करेगा।
1: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के

0: साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
1: रामपुर के बाद वजीर आला ने बरेली में तरक्याती काबों और अमन अमान का जायजा लिया। उन्होंने म्यूनिसिपल कारपोरेशन की वेस्ट मैनेजमेंट गाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकसित भारत रोजगार गारंटी और रोजी रोटी मिशन देही वीबीजी रामजी एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो गया है। इसके मुल्कगीर निफाज की माकबल शब पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने

0: 125 दिन की तनख्वाहदार मुलाजमत की बढ़ाई गई गारंटी देही माश को मजबूत करेगी। ये एक्ट हर एक अहल देही कुनबे के लिए कानूनी तनख्वाहदार रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करता है। मुतअद्दी बीमारियों पर काबू पाने की मुहिम आज रियासत के तमाम अज़ला में शुरू हो रही है। इस मुहिम के तहत तकरीबन एक दर्जन सरकारी महकमे पूरे महीने में मुतअद्दी बीमारियों की रोकथाम से मुतालिक सरगर्मियों को मरबूत और मुनज़्ज़म करेंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने देही इलाकों के शहरियों को राहत फराहम करते हुए एक अहम कदम उठाया है। अब रियासत भर के तमाम गाँव सेक्रेटरीटों में लेखपाल बाकायदगी से दस्तयाब होंगे। इस कदम का बुनियादी मकसद गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप के अहद को पूरा करते हुए रेवेन्यू सर्विसेज को आसान, तेज़तर और ज़्यादा शफाफ बनाना है। इस हुकूमती फैसले से देही इलाकों के शहरियों को अब गैर ज़रूरी तौर पर छोटी और बड़ी रेवेन्यू खिदमात के लिए तहसील हेडक्वार्टर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आज से 15 जुलाई तक मिशन सेफ फ्यूचर के नाम से रियासत गिर मुहिम शुरू कर रहा है। इस मुहिम में दफ्तर सतह से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल गाड़ियों के लिए मैनेजरों और प्रिंसिपलों को नोटिस या फोन के जरिए अलर्ट किया जाएगा कि वो जुलाई के पहले हफ्ते तक 100% स्कूली गाड़ियों का फिटनेस कराएं और दुरुस्त परमिट हासिल करें। मानसून रियासत के तकरीबन तमाम अज़ला में पहुंच चुका है। मानसून की बारिशों के आगाज से गर्मी की शिद्दत से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा, कानपुर, अम्बेडकर नगर और गोरखपुर समेत कई अज़ला में कल से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। महकमा मौसमियात के सीनियर साइंसदान अतुल कुमार सिंह ने रियासत के कई हिस्सों में भारी बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है कार्यक्रम घर संसार का, तो सुनते हैं कार्यक्रम घर संसार।

कार्यक्रम घर संसार सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी शशांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज के जो स्थितियां हैं मौसम की, उसे देखते हुए लगता है कि बीमारियों ने जैसे आपके घर में दस्तक दे रखी है। हर जगह कोई ना कोई बीमार है, और ऐसे में हमें क्या याद आता है? हमें याद आते हैं डॉक्टर, जो हमारे लिए संजीवनी का काम करते हैं। जब भी आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आप चिंताओं से, आप अपने शारीरिक विकारों से घिरे होते हैं, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं और हमें दवा देते हैं। उसके बाद हम अपने स्वस्थ शरीर को वापस पा लेते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि हमारे डॉक्टर जीवन के पहरे होते हैं, तो ये कहना यहाँ गलत नहीं होगा। मानव जीवन में डॉक्टर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और अतुलनीय है। उन्हें पृथ्वी पर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। वे न केवल बीमारियों का इलाज करते हैं, बल्कि हमें एक स्वस्थ, लंबा और खुशहाल जीवन जीने में मदद भी करते हैं। हमारे जीवन रक्षक के तौर पे आपातकालीन स्थितियों में, दुर्घटनाओं में या फिर गंभीर बीमारियों के समय डॉक्टर ही हमें मौत के मुंह से बाहर निकालते हैं। वे सटीक जांच करके बीमारियों के कारणों का पता लगाते हैं और सही दवाइयां और सर्जरी के माध्यम से उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर हमें केवल दवाइयां ही नहीं देते, बल्कि बेहतर जीवन शैली, खान पान, व्यायाम, तनाव प्रबंधन के बारे में शिक्षित भी करते हैं, ताकि बीमारियां जो हैं उनकी रोकथाम हो सके। हम जरा सा बीमार होने पर सबसे पहले मानसिक तौर पर परेशान हो जाते हैं। एक अच्छा डॉक्टर मरीज

के उस डर को और चिंता को समझता है, अपनी बातों से उन्हें मानसिक शांति और संबल प्रदान करता है। सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा आपके लिए किसी मेडिसिन से कम नहीं होती, और डॉक्टर इस बात को बखूबी जानते हैं और वो आपको सकारात्मक रखते हैं, सकारात्मक रह के आपका इलाज करते हैं, जिससे आप अपने बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण के जरिए वे बीमारियों को गंभीर रूप लेने से पहले ही खत्म कर देते हैं। तो फिर ऐसे में तो यही कहना पड़ेगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो किसी ईश्वर से कम नहीं हैं।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर संसार। अभी हमने बात की ईश्वर के रूप में डॉक्टर की, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे जीवन के लिए एक चीज और बेहद महत्वपूर्ण है, वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का जो स्तर है वो सबसे ज्यादा हमें कहाँ से मिलता है? वो मिलता है हमें पेड़ों से। तो चलिए अब थोड़ी सी बातें पेड़ों की कर लेते हैं। हर घर एक पेड़ एक अत्यंत प्रेरणादायक और पर्यावरण हितैषी संकल्प है। इसका सीधा सा अर्थ है कि परिवार में हर व्यक्ति अपने घर में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसका पालन पोषण करे। यह पहल ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। हर घर एक पेड़ का उद्देश्य भी यही है कि शहरीकरण और कंक्रीट के जंगलों के कारण हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। हर घर एक पेड़ अभियान का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारियों की भावना को जगाना है। ऑक्सीजन और शुद्ध हवा की अगर हम बात करें तो पेड़ हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। साथ ही यह तापमान को नियंत्रित करते हैं, पेड़ छाया प्रदान करते हैं और आसपास के तापमान को कम करने में मदद भी करते हैं। प्राकृतिक संतुलन की अगर बात की जाए तो पक्षियों अन्य छोटे जीवों को प्राकृतिक आश्रय मिलता है। भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से आने वाले कल को प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए यह सबसे बेहतरीन कदम है। अभियान और जन जागरूकता पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम जैसे जन आंदोलन ने लोगों को भावनात्मक रूप से पौधारोपण से जोड़ा है। ऐसे अभियानों का उद्देश्य घर घर में हरियाली का संदेश फैलाना है। अब बात आती है कि आप इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं। छोटे गमलों का आप उपयोग कर सकते हैं। यदि घर में बड़ा आंगन नहीं है तो बालकनी या छत पर छोटे गमलों में पौधे लगाएं। सदाबहार पौधे चुनें, ऐसे पौधे चुनें जो कम पानी और देखभाल में पनप सकते हैं। यह प्रण करें कि समारोह होने पर, जन्मदिन या वर्षगांठ होने पर, किसी भी शुभ अवसर पर उपहार में आप पौधे देने की परंपरा को शुरू करें। यदि आप अपने घर के आसपास पौधारोपण के बारे में ये मुहिम छेड़ेंगे तो आपको देखकर 10 लोग और भी पेड़ लगाएंगे और हमारा जो वातावरण है वो पूरा हरियाली से भर जाएगा और हमें ऑक्सीजन भी बेहतर तरीके से मिलना शुरू हो जाएगी।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: श्रोताओं, आप सुन लेते हैं कहानी बिखरता रिश्ता। कहानीकार हैं किरण शर्मा।
2: राधा कई महीनों से देख रही थी कि उसके पति के व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया था। जो अपनी जिम्मेदारी का पालन बहुत सलीके से करता था, वही विवेक गैर जिम्मेदार हो गया था। न बच्चों की परवाह, न पत्नी की और न घर की। अचानक आए परिवर्तन से वह विचलित हो रही थी। किससे अपने घर की व्यथा कहे, उसका मजाक ना बन जाए। कई दिनों से राधा बुखार से पीड़ित थी, लेकिन विवेक ने उसे अनदेखा कर रखा था। बच्चे भूख से व्याकुल थे। उसने किसी तरह उठकर दूध गर्म कर ब्रेड दूध बच्चों को देकर शांत किया। मीनू बिटिया जोर जोर से कह रही थी, माँ पापा गंदे हैं, हमें और भैया को प्यार नहीं करते, अब आप डांटना उनको। राधा निरी आंखों से बच्चों को देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू छलक रहे थे। वह धोती के पल्लू से

पोछ रही थी, मन को समझाने का प्रयत्न कर रही थी, ऐसे कैसे काम चलेगा। बच्चों की फीस कई माह से नहीं भरी गई। प्रतीक को अपने प्रोजेक्ट का सामान लाना है। पिता से जब किसी बात की कहते, वह अनसुनी कर बाहर चले जाते। प्रतीक और मीनू के जूते फट चुके थे, नए लाना चाहते थे। माँ से बार बार कहते, राधा बच्चों के सिर पर हाथ फेर बहला देती। बच्चे मान जाते। हालात काबू से बाहर हो रहे थे। अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो जीवन नरक बन जाएगा। आज राधा ने देखा, विवेक ऑफिस से आकर सीधे बेडरूम में चले गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सारे दिन मर खप कर ऑफिस से आया, न खाना न चाय। अब घर का कुछ भी सामान नहीं लाऊंगा, देखूं घर कैसे चलाऊंगी। कोई काम नहीं करती है, सारे दिन सोती रहती है। राधा का सब्र का बांध टूट गया था। वह बुखार में तप रही थी, फिर भी उठकर घर में जो कुछ था उससे भोजन तैयार किया और विवेक को खाने के लिए आवाज दी, खाना तैयार है। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल विवेक बाहर आए। थाली में परोसे भोजन को देख आग बबूला हो गए। ये खाना बनाया है? मुझे नहीं खाना, जानवरों को डाल दो। राधा के मुंह से निकला, जो कुछ थोड़ा सामान था उसी से मैंने रसोई तैयार की है। अब आप घर का सामान ले आएं, खाना अच्छा बन जाएगा। बहुत दिनों से घर में राशन सब्जी नहीं है, आपने खर्च करने के पैसे भी नहीं दिए। तगादा करने वालों की लाइन लगी रहती है, कैसे सामना करूं? बच्चों की फीस भी नहीं भरी है। यह सुनकर विवेक क्रोधित हो गए, राधा पर हाथ चलाने लगे। बच्चे एक कोने में सहमे से खड़े माँ को पिटता देख रहे थे, रो रहे थे। अपनी तथा घर की मर्यादा का ध्यान भी रखना पड़ता है। बाहर आवाज ना चली जाए वह चुपचाप सहन करती रही। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर बच्चों को तैयार कर स्कूल भेज दिया। घर का काम निपटाकर खुद भी तैयार होकर घर से बाहर आ गई। आज मन मजबूत कर लिया, हर स्थिति का सामना करेगी। गाली मार अब नहीं सहन करेगी। अगर नारी मन में ठान ले, पक्का निर्णय ले तो क्या नहीं हो सकता। विवेक की बढ़ती जाती मनमानी पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं था। पूरे माह की तनख्वाह कहाँ खर्च कर देता है। मायके या ससुराल में कुछ कहने से बदनामी तथा झगड़े की संभावना थी। सबसे पहले वह विवेक के ऑफिस गई, उसके चरित्र की जानकारी हासिल की, कहाँ आजकल उसका उठना बैठना हो रहा है। फिर राधा ने ऑफिसर से अपने काम के लिए आवेदन दिया। उसके प्रमाण पत्र तथा डिग्री देख ऑफिसर ने दूसरे दिन से ज्वाइन करने को कह दिया। शाम को घर वापस आने पर विवेक क्रोधित हो बोले, कहीं जाना था तो मुझे क्यों नहीं बताया। दूसरे दिन उठकर जल्दी से घर के सारे काम निपटा तैयार होकर बाहर जाने लगी। तभी विवेक की ऊंची आवाज सुनाई दी, मेरी बराबरी करती हो? आज घर से बाहर पैर निकाला तो घर में घुसने नहीं दूंगा। यह मेरा घर है, यहाँ मनमानी नहीं चलेगी। वह बिना कुछ कहे ऑफिस चली गई। बॉस उसकी योग्यता तथा व्यवहार से बहुत ही प्रभावित थे। नौकरी ने उसको मजबूत बना दिया। आत्मनिर्भर हो जाने से आत्मबल आ जाता है तथा कार्य करने की क्षमता और सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। एक दिन ऑफिस से घर आ रही थी, अचानक उसने विवेक को स्कूटर पर किसी महिला से हंस हंस कर बात करते देखा। वह महिला स्कूटर के पीछे बैठी खिलखिला रही थी। उसने अनदेखा किया और बोझिल कदमों से अपने घर आ गई। घर का सामान खरीदा, कुछ पैसे पास में थे। घर का वातावरण बहुत खराब था, आपस में बातचीत करना बंद था। गाली देना तथा गुस्सा करने का सिलसिला जारी था। बच्चों से बातचीत भी नहीं करता विवेक। जब रात को घर आता बच्चे सो जाते, सुबह बच्चे स्कूल चले जाते। काफी समय से बच्चों को घुमाने भी नहीं ले गया था। आखिर एक दिन मन पक्का करके हिम्मत जुटा, राधा ने विवेक से पूछा, ऐसे कब तक तुम्हारी मनमानी चलेगी? उनका जवाब था, यदि मेरा साथ अच्छा नहीं लगा

0: घर छोड़कर चली जाओ। राधा ने जोर से कहा, यह मेरा तथा बच्चों का घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिसे जहां रहना है चला जाए। विवेक उसी समय घर छोड़कर निकल गए। जिंदगी ने नया मोड़ लिया। ऑफिस की नौकरी तथा पड़ोस के बच्चों की ट्यूशन का काम करके बच्चों के भविष्य की तैयारी की। दोनों बच्चों को शिक्षा दिलाने में कोई कसर ना छोड़ी। बच्चे लायक हो गए। बेटी विवाह के योग्य थी। अच्छा घर देकर शादी कर दी। प्रतीक ने भी सीए कर लिया। उसकी भी नौकरी लग गई थी। उसके रिश्ते विवाह के लिए आने लगे। ठीक ठाक घर देख रिश्ता पक्का कर दिया। सभी रिश्तेदार आए थे। विवेक ही अनुपस्थित थे। जब बारात लड़की के द्वार पहुंची, देखा सामने वही महिला विवेक के साथ सजी संवरी स्वागत करने खड़ी थी बारातियों का। प्रतीक ने बारात वापस करने की जिद की। राधा ने कहा, बेटा इस लड़की की क्या गलती है? इस पर कलंक लग जाएगा यदि बारात वापस लौटी तो। विवाह हो जाने दो, घर चलकर इस मसले को सुलझा लेंगे। विवाह हो गया। बहू बहुत ही समझदार थी। मसले को भाप गई। उसने साफ कहा, मुझे अब आप लोगों से संबंध रखना है। यदि आप कहेंगे तो मैं मायके से वास्ता नहीं रखूंगी। वैसे वह महिला मेरे पिता की बहन तथा मेरी बुआ हैं। राधा ने कहा, तुम किसी से संबंध मत तोड़ो। इसके पिता को मर्यादा का मान नहीं तो तुम्हें क्या करना। कुछ समय बाद देखा, प्रतीक के पिता घर के दरवाजे पर खड़े क्षमा याचना कर रहे थे। साथ रहना चाहते थे। अब यही सबके साथ रहूंगा। राधा ने कहा, लेकिन मुझे आपके साथ नहीं रहना। कई वर्ष बीत गए थे। प्रतीक का बेटा बड़ा हो गया। घर द्वार परिवार सब ठीक चल रहा था। एक दिन पोता आकर बोला, दादी बाहर बाबा खड़े हैं, कुछ मांग रहे हैं, उन्हें कुछ दे दो। राधा कटोरी में आटा लेकर बाहर आए। देखा विवेक फटे हाल में बिखरे बाल लिए सामने भिक्षा का पात्र हाथ में लेकर खड़े थे। राधा को धक्का लगा। आटा पात्र में डाल अंदर आ गई। सोचा, इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन? इसे ईश्वर ने कैसी सजा दी?
1: अभी आप सुन रहे थे कहानी बिखरता रिश्ता। कहानीकार थी किरण शर्मा। हम अक्सर करके पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण कैसे हो सकता है, कभी आपने इस बात पे विचार किया है? असल में पर्यावरण की जो शुरुआत होती है ना, वो घर से ही होती है। एक बेहद शक्तिशाली और व्यवहारिक विचार है ये। इसका अर्थ है प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण सुधार के लिए बड़े कदम उठाने से पहले हमें अपने जो दैनिक जीवन की आदतें होती हैं, घरेलू स्तर पर छोटे छोटे बदलाव इसमें करने पड़ेंगे। घर से पर्यावरण की शुरुआत करने के लिए आपको कुछ आसान से कदम उठाने होंगे। जैसे कि पानी बचाने की अगर बात करें तो उपयोग में ना होने वाले नल हमेशा बंद रखें, लीक होने वाले नलों और पाइपों की तुरंत मरम्मत करवाएं, बर्तन धोते या ब्रश करते समय पानी को व्यर्थ बिल्कुल भी ना बहने दें, जब कमरे में कोई ना हो तो लाइटें और पंखे भी आप बंद कर सकते हैं जिससे बिजली की बचत हो सके। साथ ही पारंपरिक बल्बों की जगह ऊर्जा बचत वाले एलईडी बल्बों का उपयोग करें, प्राकृतिक रोशनी का अधिकतम इस्तेमाल करें, कचरे का सही प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है उसका आपको प्रबंधन सही तौर पर करना चाहिए। अपने घर के कचरे को गीले और सूखे कचरे में अलग अलग करें। गीले कचरे से घर पर ही खाद बनाएं और प्लास्टिक जैसे सूखे कचरे की रिसाइकलिंग के लिए दें। साथ ही प्लास्टिक का हो सके जितना उतना बहिष्कार कीजिए, क्योंकि सिंगल यूज जो प्लास्टिक होती है, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियां हो गई, स्ट्रॉ हो गए और कप हो गए, इनका उपयोग बिल्कुल बंद कर दें। खरीदारी के लिए जब आप जाते हैं तो हमेशा कपड़े या जूट के थैलों का इस्तेमाल करें। साथ ही सबसे अहम चीज़ जो हमने आपको कार्यक्रम में पहले भी अभी बताई थी, पेड़ पौधे लगाना। अपने घर के आंगन में, बालकनी में या छत पर छोटे छोटे पौधे गमलों में लगाएं। ये घर के जो तापमान को नियंत्रित करने का काम तो करते ही हैं, साथ ही आसपास की हवा को शुद्ध करने में भी मदद करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग

भी इसमें होता है। यदि संभव हो तो अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाएं। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि बिजली का बिल भी कम करने में आपके लिए काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो ये तो रही बात पर्यावरण की। कभी आपने सोचा है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम थक जाते हैं, उसके बाद भी जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती, या बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि उन्हें बहुत देर रात तक जगने की आदत होती है और सुबह देर तक सोने की आदत होती है, तो एक तरह से जो हमारा रूटीन है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। तो अच्छी नींद सेहत के लिए बेहद ज़रूरी होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपके लिए ये 50 तरह की समस्याएँ खड़ी कर सकती है। ये एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जो आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखती है। रोजाना 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेने से ऊर्जा बढ़ती है, मूड बेहतर होता है और बीमारियों का जो खतरा है वो भी काफी कम होता है। अब बात आती है कि अच्छी नींद क्यों जरूरी है। दिमाग की कार्य क्षमता के लिए पर्याप्त नींद से ध्यान लगाने की क्षमता, याददाश्त और उत्पादकता बढ़ती है। मजबूत इम्यून सिस्टम बनता है, सोते समय आपके शरीर में संक्रमण से लड़ने वाली कोशिकाओं का निर्माण करता है। साथ ही अच्छी नींद से भूख नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स भी सही रहते हैं, जिससे वजन बढ़ने का जो खतरा होता है वो कम होता है, तनाव में राहत मिलती है, नींद की कमी से चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें, सुबह उठते समय मोबाइल और फोन, टीवी से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि हम अक्सर करके आजकल देखते हैं कि ये लोग इसके एडिक्शन में आ चुके हैं। और शाम के समय चाय और कॉफी पीने से बचें। अगर आप एक बेहतर नींद लेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, बेहतर होगा। चलिए, बातें तो बहुत सारी हो गई, अब समय है आपके मनोरंजन का।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम घर संसार। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर मेधा सचदेवा के गाए कुछ गीत और भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मेधा सचदेवा को। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज़। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: City Stadium this morning to qualify for the round of 16. Raul Jimenez and Julian Q scored for Mexico. This marked Mexico's first World Cup knockout stage win in 40 years. Earlier, Kylian Mbappe further enhanced his World Cup legacy to lead France to a comfortable 3-0 win against Sweden in the round of 32. Mbappe struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Norway has also sailed to the round of 16, beating Ivory Coast 2-1 in Texas. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat G. Ramji Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dheeraj Seth stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष

0: वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेनदेन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया।

0: वे एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो चार दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
1: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: India's engagement. भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
3: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में

0: पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 106.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। समय है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर अनीता सेन की ठुमरी। मोरा बाला जो वन पा।

पॉप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनीता सेन का ठुमरे गायन। बोल थे मोरा बाला जो पनपा। इसके साथ ही उप शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है पुरानी फिल्मों से गीतों के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म पाकीज़ा से। गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है कमाल अमरोही ने, संगीतबद्ध किया है गुलाम मोहम्मद ने।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म पाकीजा से। गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, गीत लिखा था कमाल अमरोही ने, संगीत से सवार था गुलाम मोहम्मद ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म ताजमहल से। गीत को गाया है लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी ने, साहिर लुधियानवी की रचना को संगीतबद्ध किया है रोशन ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म मुगले आजम से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथी की। शकील बदायूनी की रचना को संगीतबद्ध किया है नौशाद ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत अभी आपने सुना फिल्म मुगले आजम से। लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथी की आवाज में इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीतबद्ध किया था नौशाद ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। फिल्म संगीत का कारवां भी रुकेगा नहीं, क्योंकि आगे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन बस कुछ ही पलों में।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, फिल्म दिल आशना है से। गीत को गाया था पंकज उदास ने, गीत लिखा था मशहूर सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म चोरी चोरी से। आवाजें हैं अलका याग्निक बाबुल सुप्रियो की, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना साजिद वाजिद की।

अलका याग्निक बाबुल सुप्रियो की आवाज में अभी आपने सुना चोरी चोरी फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था साजिद वाजिद ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल, बाबला मेहता ने। फैज अनवर की रचना को संगीतबद्ध किया है नदीम शिवण ने।

0: दिल है कि मानते नहीं फिल्म में अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल बाबला मेहता को, फैज़ अनवर की रचना को संगीतबद्ध किया था नदीम शिवण ने।
1: मैं एनी, मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

अभी आपने सुना खामोशी द म्यूजिकल फिल्म में अलका याग्निक हरिहरन को। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को संगीत से संवारा था जतिन ललित ने। श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत जो हमने लिया है फिल्म जब वी मेट से। गीत को गाया है उस्ताद राशिद खान ने, गीत लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत पति किया है संदेश शांडिले ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में अभी आपने सुना फिल्म जब वी मेट का गीत। गीत को गाया था उस्ताद राशिद खान ने, गीत लिखा था इरशाद कामिल ने, संगीत बद्ध किया।

था संदेश शांडिले ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हुए हैं। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। आरंभ होती है हमारी सायंकालीन सभा। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।

0: केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। उन्होंने बताया कि परियोजना से लगभग 75 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 98 लाख व्यक्ति दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे 4 से 6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल पूंजी लागत 7,145 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये परियोजना कानपुर और कबराई के बीच निर्बाध उच्च गति संपर्क प्रदान करेगी, साथ ही सागर, भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए आगे की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। इसके अलावा समिति केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श करेगी। समिति ने गृह मंत्री को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक अग्रिम जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। कल मैक्सिको, फ्रांस और नॉर्वे के अंतिम 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 106.1 मीटर पर। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे

अब से कुछ देर बाद शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता जिसका शीर्षक होगा जीएसटी के प्रति जागरूकता और महत्व। वार्ताकार होंगे विभूति तुली। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। शाम 6:00 सुनेगा कार्यक्रम ग्रामलोक। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर एल राजपूत की वार्ता भूमि की उर्वरकता में केंचुओं का योगदान विषय पर। शाम 6:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मजदूर मंडल जिसमें कवि डॉक्टर हरीश चंद्र शाह के प्रस्तुत करेंगे काव्य पाठ।

शाम 7:10 पर विविधता क्रम में सुनेगा वार्ता राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन व्यक्तित्व और कृतित्व। वार्ताकार होंगी डॉक्टर सुनीता सक्सेना। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक सुनेगा रात 8 बजे और चित्रपट संगीत का प्रसारण समय रहेगा रात 8:30। कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश सुनेगा शाम 7:31 पर। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद आप सुन सकते हैं रात 10 बजे और रात 10:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगे पंडित यशपाल।

श्रोताओं, कल प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:25 पर सुनेगा चिंतन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार। श्री रामचरित मानस गाना आप सुनेंगे सुबह 6:35 पर। 6:45 पर सुनेगा कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें वार्ता होगी कृषि लागत कम कैसे करें विषय पर। वार्ताकार होंगे ओपी राजपूत।

कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर, जिसमें डॉक्टर वाणी अग्रवाल जानकारी देंगी आंखों के लिए पोषण का महत्व विषय पर। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास आप सुनेंगे सुबह 7:31 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि होगा 8:45 पर। 9:25 पर आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम गीत मंजूषा। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 9:45 पर। कलाकार होंगे अशोक कुमार मथुरिया। श्रोताओं, सुबह 11:00 हमारे आज के कलाकार होंगे गायक मोहम्मद अजीज। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुनेंगे 11:30 पर। कार्यक्रम खर संसार का प्रसारण समय रहेगा दोपहर 1:15। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे वार्ता कामकाजी महिलाएं और परिवार का सहयोग विषय पर। वार्ताकार होंगे शशि शर्मा। श्रोताओं, कल 3:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में भेंट वार्ता, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और समाधान विषय पर। डॉक्टर पीयूष जैन से बातचीत करेंगे अनिंद्र सिंह।

श्रोताओं, कल रात 9:30 पर हमारे अनुप्रसारण होंगे दिल्ली से, जिसमें 10 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, और रात 10:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगे पंडित अभय नारायण मलिक। प्रसारण आगरा से किया जाएगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी सभा की शेष और कल की तीनों सभा में प्रसारित होने वाली मुख्य

कार्यक्रमों की हम आकाशवाणी के आगरा केंद्रों से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्तिपरक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या।

श्रोताओं, अभी जो भक्ति गीत आपने सुना उसे हमने लिया था फिल्म मरते दम तक से। महेंद्र कपूर, सुरेश वाडेकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में गाए इस गीत को लिखा था रविंद्र जैन।

श्रोताओं, अभी जो भक्ति गीत आपने सुना उसे हमने लिया था फिल्म मरते दम तक से। महेंद्र कपूर, सुरेश वाडेकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में गाए इस गीत को लिखा था रविंद्र जैन ने और संगीतबद्ध भी किया था रविंद्र जैन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाजों में ये भक्ति रचना, जिसे हमने लिया था फिल्म जय माँ वैष्णो देवी से। शब्द रचना भरत आचार्य की थी और संगीत रचना अमर उत्पल की। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति इस संदेश के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोताओं, ये थी अनुराधा पौडवाल फिल्म राधा का संगम में। हसरत जयपुरी की लिखी इस भक्ति रचना की धुन बनाई थी अन्नू मलिक ने। और कार्यक्रम की अंतिम भक्ति रचना ये सुनते हैं फिल्म लगान से लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों के स्वर में।

श्रोताओं, इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्रों से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

नमस्कार प्यारे व साथियों, मैं आपकी रेडियो दोस्त स्नेहा अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ हम करते हैं ढेर सारी बातें और खूब सारा मनोरंजन। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बड़े समय बाद आप सभी से बात हो रही है। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और भाई इस गर्मी के मौसम में अपना ख्याल रख रहे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो जब हम बाहर होते हैं सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? एक बड़ा सा पेड़, उसकी ठंडी छांव और साफ हवा। लेकिन आज शहरों में कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं और असली जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसी वजह से गर्मी बढ़ रही है, बारिश का समय बदल रहा है, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ आ रही है और प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, ये तो हम सभी ने सुना है, वन है तो हम हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर जंगल सुरक्षित होंगे तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। वन हमारी धरती के लंग्स यानी फेफड़े हैं। पेड़ हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यही पेड़ वातावरण का तापमान संतुलित रखने में भी मदद करते हैं। ये वर्षा के साइकिल को बनाए रखते हैं, भूजल स्तर को बढ़ाने में सहायक होते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और नदियों तथा जल स्रोतों की रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, जंगल लाखों पशु पक्षियों, कीड़ों और वन्य जीवों का प्राकृतिक घर भी है। अगर जंगल खत्म होंगे तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी भी खतरे में पड़ जाएगी। भारत में पेड़ पौधों को हमेशा सम्मान दिया गया है। पीपल, बरगद, नीम और तुलसी जैसे पेड़ सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे त्योहारों, धार्मिक मान्यताओं और लोक परंपराओं में प्रकृति का विशेष स्थान रहा है। हमारे पूर्वज प्रकृति को माँ का दर्जा देते थे क्योंकि वे जानते थे प्रकृति ही जीवन का आधार है। आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना कर रही है। बढ़ता तापमान, पिघलते ग्लेशियर्स, अनियमित बारिश और प्राकृतिक आपदाएं हमें लगातार चेतावनी दे रही हैं कि अब समय रहते कदम उठाना बहुत जरूरी है। ऐसे समय में भारत भी ग्रीन डेवलपमेंट की दिशा में लगातार काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के FAO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन देशों में शामिल है जहाँ पिछले कुछ वर्षों में वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है और ये हम सभी के लिए बड़ी गर्व की बात है। वन संरक्षण के लिए साथियों, सरकार भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। नगर वन योजना के तहत शहरों में छोटे छोटे जंगल विकसित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। मिष्टी योजना के माध्यम से तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों का संरक्षण किया जा रहा है जो समुद्री तूफानों और तटीय कटाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वहीं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लोगों, संस्थाओं और उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। दोस्तों, सरकार के प्रयास से ही काम नहीं चलने वाला। पर्यावरण की रक्षा तभी होगी जब हम सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। छोटी छोटी आदतें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं, जैसे बिजली और पानी की बचत करना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, कागज का सोच समझकर उपयोग करना और अपने आसपास सफाई बनाए रखना। युवा इसी बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है।

अगर युवा हर साल में एक पौधा लगाए, उसकी नियमित देखभाल करे, पानी बचाए और अपने परिवारों को भी जागरूक करे, तो आने वाले वर्षों में हमारा देश और भी हरा भरा बन सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो दोस्तों, हमें भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ पौधा लगाना ही काफ़ी नहीं है, उसे बड़ा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अक्सर लोग अभियान के दौरान पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन बाद में उनकी देखभाल ही नहीं करते। असली सफलता तब है जब वे छोटा पौधा एक मजबूत पेड़ बनकर आने वाली पीढ़ियों को छांव, साफ हवा, फल, वर्षा और बेहतर जीवन दे। तो दोस्तों, आज सिर्फ हमें एनवायरनमेंट डे मनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पर्यावरण को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब वन सुरक्षित होंगे तभी जल सुरक्षित होगा, जब जल सुरक्षित होगा तभी जीवन सुरक्षित होगा, और जब जीवन सुरक्षित होगा तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। तो आइए आज हम सभी मिलकर एक संकल्प लें कि अपने जीवन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं, उसकी देखभाल करें, उसे एक बड़ा वृक्ष बनाएं और दूसरों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करें। याद रखिए, प्रकृति की रक्षा करना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। तो साथियों, चर्चा के बाद वक्त हो चला है आपसे एक सवाल पूछने का, तो तैयार हो जाइए साथियों मेरे इस सवाल के जवाब देने के लिए। भारत में हर साल जुलाई के पहले हफ्ते यानी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का कौन सा उत्सव मनाया जाता है? आप सोचिए इस सवाल का जवाब और बने रहिए हमारे साथ इसका उत्तर जानने के लिए। और अब वक्त है आपको संगीत सुनवाने का, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों अभी आपने सुना एक मधुर गीत। अब दोस्तों बात करते हैं, आज 1 जुलाई है, ये दिन देश के आर्थिक इतिहास में बहुत विशेष महत्व रखता है। आज ही के दिन पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST व्यवस्था लागू की गई थी। इसी अवसर पर हर वर्ष GST दिवस भी मनाया जाता है। ये GST दिवस एक राष्ट्र, एक कर और एकीकृत कर व्यवस्था की दिशा में भारत के महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। तो आइए GST दिवस के इस विशेष अवसर पर जानते हैं क्या है GST, ये आम नागरिकों, व्यापारियों और देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। एक वार्ता के द्वारा वार्ताकार हैं विभूति तुल।
1: आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं GST के प्रति जागरूकता और उसके महत्व के विषय पर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि GST है क्या। GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को कहते हैं, जो भारत सहित कई देशों में लागू हो चुका है। GST भारत के सबसे बड़े टैक्स सुधारों में से एक है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे वो अब समाप्त हो गए हैं। GST को लागू करके VAT, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के कारण डबल टैक्स देने के बोझ से भारत के टैक्स पेयर्स को मुक्त किया गया है। कुछ लोगों ने इस सुधार का फेवर किया तो कुछ ने इसका विरोध भी किया। वैसे तो GST को लागू हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अधिकांश लोग GST के महत्व से अनजान हैं। जब तक हम इसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम इसका महत्व नहीं समझ पाएंगे। 28 फरवरी 2006 के एनुअल बजट भाषण में भारत में पहली बार GST के बारे में बताया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सरल बनाना था। बाद में जुलाई 2017 में भारतीय संसद ने देश भर में GST लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। GST वो डबल संरचना है जिसके अनुसार माल और सेवाओं की सप्लाई पर टैक्स लगाने की पावर केंद्र और राज्य को दी। केंद्र सेंट्रल GST और इंटीग्रेटेड GST लगा सकता है, जबकि राज्यों के पास स्टेट GST लगाने का अधिकार है। GST एक सिंगल ऑल इंक्लूसिव टैक्स है जो सभी गुड्स और सर्विसेज पर लागू होता है। भारतीय टैक्स पेयर के लिए प्रेजेंट GST स्लैब 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है, जिनमें से हर एक गुड्स और सर्विसेज की कई अलग अलग कैटेगरीज हैं। GST भारतीय कर प्रणाली यानी टैक्स सिस्टम में सिमिलैरिटी लाने के लिए सरकार का एक निष्ठापूर्ण प्रयास था। पहले

0: हमें गुड्स और सर्विसेज की डिलीवरी में शामिल होने वाले हर लेवल पर टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। जीएसटी ने एक ही प्रोडक्ट पर कई टैक्स लगाने के सिस्टम को हटा दिया और सिंगल टैक्स सिस्टम पेश किया। इससे भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना बहुत आसान हो गया तथा ज्यादा मात्रा में हो रहा है। जीएसटी के आने से कई आर्थिक लाभ हुए हैं। इसने पहले से निर्धारित करों को एडजस्ट करके बजट और बिजनेस को सरल बना दिया। साथियों, पहले हम लोगों को वैट, सर्विस टैक्स जैसे कई इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ लेना पड़ता था। जीएसटी ने एक सुव्यवस्थित फ्रेमवर्क को फॉरवर्ड किया जिसको फॉलो करना आसान था। इससे और भी लाभ हैं। जीएसटी ने एक सामान्य बाजार को भी इनकरेज किया है। टैक्स एवं मटेरियल एक्सचेंज में सुधार करके एक ही मिले जुले बाजार को बढ़ावा दिया। इसके अलावा जीएसटी ने टैक्स की चोरी को कम करने में भी मदद की, क्योंकि सभी लेन देन एक साथ होते हैं और व्यापारियों को भी पूर्णता से खाता रखने की सुविधा होती है। इसके अलावा जीएसटी राज्यों के बीच इक्विटी का भी समर्थन करता है। दोस्तों, जो कर राशि जीएसटी पर प्राप्त होते हैं उसे सभी भागीदार राज्यों में बांटा जाता है। जीएसटी से पहले टैक्स पेयर्स अलग अलग टैक्स का भुगतान करते थे और अलग अलग नियमों का पालन करते थे। जीएसटी एक ही व्यवस्था के साथ कई टैक्स बदलता है और करों के बोझ को भी कम करता है। जीएसटी के लिए 11 रिटर्न होते हैं, जिनमें से 4 बेसिक टैक्स शामिल करते हैं जो टैक्स पेयर्स पर लागू होते हैं। जीएसटी अपने ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए डिजिटल टैक्स मैनेजमेंट निश्चित करता है। टैक्स पेयर वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं तथा टैक्स का भुगतान कर सकते हैं और आसानी से रिटर्न को भी प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार जीएसटी ने व्यापार और उपभोक्ताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ा दिया है और हमारी इकोनॉमी में सुधार करने में भी मदद की है। जीएसटी ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सुधार किया है एवं एक सरल टैक्स सिस्टम लागू किया है, जिससे अब व्यापार और आम जनता को भी लाभ हो रहा है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगी कि देश एक मजबूत, आसान और हम सबके अनुकूल टैक्स फ्रेमवर्क मौजूद है। जीएसटी के साथ भारत सरकार ने एक मौजूद टैक्स क्लस्टर स्थापित किया और एक्सपेरिमेंट किया जो राष्ट्र और उसकी जनता के हित में काम करता है।
1: तो श्रोताओं, अब तो जीएसटी के प्रति जागरूकता और उसका महत्व आपको समझ आ ही गया होगा। उम्मीद है कि इससे आपको देश की कर व्यवस्था और उसके लाभों की उपयोगी जानकारी मिली होगी। ये तो हम जानते हैं, आज भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार लगातार ऐसी पहल कर रही है जो व्यापारियों, छोटे उद्यमियों और उपभोक्ताओं को समान अवसर प्रदान करें। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलों में से एक है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी ONDC। आखिर ONDC क्या है, ये कैसे छोटे दुकानदारों और ग्राहकों के लिए नए अवसर के द्वार खोल रहा है, आइए जानते हैं सेगमेंट आइए जाने में। साथियों, ये भारत सरकार की एक ऐसी इनिशिएटिव है जो देश में ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल कॉमर्स के तरीके को बदल रही है। इसका पूरा नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी ONDC। आज के समय में हम में से ज़्यादातर लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, कपड़े हों, किराने का सामान हो, खाना या रोज़मर्रा की दूसरी ज़रूरतें, सब कुछ हम मिनटों में मोबाइल से ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि छोटे दुकानदार, स्थानीय व्यापारी और कारीगर भी ऑनलाइन ग्राहकों तक आसानी से कैसे पहुँच सकते हैं? इसी सोच के साथ भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने ONDC की शुरुआत की। अब जानते हैं आखिर क्या है ONDC। ये कोई ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, ये एक ओपन डिजिटल नेटवर्क है जो अलग अलग ऑनलाइन खरीद बिक्री करने वाले प्लेटफॉर्म्स को आपस में जोड़ता है। इससे आप UPI की तरह समझ सकते हैं, जिस तरह UPI ने अलग अलग बैंक्स और पेमेंट ऐप्स को एक ही नेटवर्क से जोड़ दिया है, उसी तरह ONDC अलग अलग सेलर ऐप्स और बायर ऐप्स को एक साथ जोड़ता है। इससे ग्राहक और विक्रेता किसी एक कंपनी या प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रहते। इसका सबसे बड़ा फायदा छोटे दुकानदारों, किराना स्टोर, रेस्तरा, हस्तशिल्प कारीगरों और MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड

एंटरप्राइजेस को मिलता है। अब वे भी बिना किसी एक बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह डिपेंड हुए अपने उत्पाद देश भर के ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। इससे छोटे व्यापारियों को भी बड़े व्यवसायों की तरह आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। श्रोताओं, ONDC एक बड़ा लाभ है, मोर चॉइस एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन। जब एक ही नेटवर्क पर ज़्यादा विक्रेता जुड़ते हैं तो ग्राहकों को बेहतर कीमत, अधिक विकल्प और अच्छी कस्टमर सर्विस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही व्यापार में पारदर्शिता भी बढ़ती है और सभी को बराबर अवसर मिलते हैं। आज भारत तेजी से डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में ONDC, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों को और मजबूती दे रहा है। ये पहल स्थानीय व्यापारियों, स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमियों को डिजिटल दुनिया से जोड़कर उन्हें नए ग्राहक, नए बाजार और नए अवसर उपलब्ध करा रही है। अगर आप भी छोटा व्यवसाय करते हैं, दुकान चलाते हैं या अपने स्थानीय उत्पादों को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं तो ONDC आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये सिर्फ एक नेटवर्क नहीं है बल्कि छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दोस्तों, जरा काम और तकनीक की बातों को थोड़ा सा विराम देते हैं। और आज दोस्तों मौसम में भी थोड़ी राहत है, एक अलग सुकून है और ऐसे ही खुशनुमा एहसास को और भी खास बनाता है ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों अब गीत के बाद वक्त हो चला है आपसे पूछे गए सवाल का जवाब देने का। तो साथियों, जुलाई के पहले हफ्ते में हम सभी वन महोत्सव सप्ताह मनाते हैं। आइए इस अवसर को एक नई शुरुआत बनाएं और प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए एक पौधा अवश्य लगाएं। याद रखिए, हर दिन एक नया अवसर है, बस शुरुआत आज से कीजिए। और इसी संदेश के साथ साथियों, अपनी रेडियो दोस्त स्नेहा अग्रवाल को दीजिए इजाजत। ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम ग्राम्य लोक।

श्रोताओं, आज के ग्रामीण कार्यक्रम में मैं यशपाल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको हमारी राम राम। किसान साथियों, आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका है, यानी भीषण गर्मी का समय, या ये कहें उमस भरी गर्मी का समय। अब चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, वही खेती किसानी का काम तो हम किसानों को करना ही पड़ता है। और जैसे इन दिनों आषाढ़ माह का यह समय खरीफ फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना है। इस समय मानसून की

बारिश शुरू होते ही किसान धान की रोपाई, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल और अरहर की बुआई के मुख्य काम करते में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद मानसून आ जाएंगे तो भाई मूंगफली, सोयाबीन, तिल, उड़द और कपास जैसे बीजों की सीधी बुआई खेतों में की जाएगी, जिसके लिए खेतों में खाद जैसे यूरिया या डीएपी डाले जाएंगे। खेतों में खरपतवार हटाने के लिए निराई गुड़ाई का काम भी करना है भाई। इस दौरान लौकी, तोरई, भिंडी, करेला और मिर्च जैसी सब्जियों की बुआई और देखभाल भी की जाती है। किसान साथियों, यह समय धान की नर्सरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन दिनों किसान खेतों में पानी भरकर धान की रोपाई का काम शुरू करते हैं। अब धान की खेती तो भरपूर पानी मांगती है, तो इसके लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। हालांकि पृथ्वी का लगभग 70% भाग पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसका 1% ही ताजी पानी है, या ये कहें कि भाई उसका सिर्फ 1% पानी ही खेती, किसानी और हम मनुष्यों के उपयोग के लिए मिलता है, वो भी सब जगह नहीं मिल पाता। पृथ्वी पर जीवन के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण घटक है। बढ़ती जनसंख्या, घटते भूजल स्तर और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ताजी पानी की कमी एक संकट बनती जा रही है। इसीलिए साथियों, जल संचयन और जल संरक्षण आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जी हाँ किसान साथियों, जल संचयन, वर्षा के जल को इकट्ठा करके उसका संचयन या संरक्षण करने को जल संचयन कहा जाता है। इसकी आवश्यकता इसीलिए है कि भाई भूजल स्तर तेजी से घटता जा रहा है। अभी कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और जल संचयन प्रमुख रूप से बरसात के दिनों में ही किया जाता है। बरसात के पानी को तेजी से बहने देने से रोकना है और उसका ठीक ढंग से संचय करना है। जल संचय का कार्य हमेशा ऊंचे स्थान से शुरू करना है, जैसे भाई घर की छत से, अहाते से, ऊंची ढलान से गिरते हुए पानी की गति को धीमा करके पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं और उसे जमीन में नीचे सोखने के लिए छोड़ते हैं, या ऐसे इकट्ठा करते हैं कि वो जमीन में अंदर पहुंच जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यह कैसे होगा, तो इसके लिए बहते पानी को नाली, नालों के द्वारा पोखर या तालाब में भेजें। घरेलू स्तर पर बरसात के पानी को पक्के टैंक या सोखती गड्ढे में इकट्ठा करें। पक्के टैंक के पानी का इस्तेमाल तो हम भाई घर के कामकाज में भी कर सकते हैं, घर की साफ सफाई में, सब्जियों को धोने में या अन्य बहुत सारे घरेलू काम में हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उतना भूजल तो आप बचा ही सकते हैं जो हम भूजल स्तर से ये सारे काम करते। जल संचयन की सबसे बेहतरीन विधि है सोखती गड्ढे की। जी हाँ साथियों, जल इकट्ठा करना है तो भाई सोखती गड्ढे की जानकारी तो होनी चाहिए। इसके लिए जमीन में पक्की दीवारों वाला कच्ची सतह का एक बड़ा सा गड्ढा बनाएं। उसकी कच्ची सतह पर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े डालें, फिर उसके ऊपर बजरी या छोटी गिट्टी डालें, उसके ऊपर फिर एक परत हम रेती या चंबल सैंड की डालें। इससे बरसात का सारा पानी इकट्ठा कर लें। यह पानी धीरे धीरे छन कर नीचे जमीन में जमा हो जाएगा, या नीचे छन कर धीरे धीरे भूजल स्तर को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। इससे आसपास का भूजल स्तर बेहतर बनेगा। यह काम बहुत सारे घर मिलकर एक सार्वजनिक जगह पर सोखता गड्ढा बनाकर भी कर सकते हैं, और अगर आप सक्षम हैं तो अपने खुद के घर में भी यह काम कर सकते हैं। इससे आपके गांव या कस्बे का जल स्तर तो ठीक रहेगा ही, साथ में बहते पानी से होने वाले नुकसान से हम बच सकेंगे। भाई जब बरसात होती है तो तेज बहाव से हमारे आसपास बहुत सी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिनसे बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि बरसात खत्म होने पर मक्खी, मच्छर और अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं, जो बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं, साथ में कीचड़ होती है। अगर हम जल संचयन की या जल संरक्षण की सही विधि अपनाते हैं और जल की निकासी का सही व्यवस्था करते हैं तो फिर कीचड़ होने का खतरा कम रहता है और कीड़े मकोड़े और मक्खी मच्छर भी कम पनपते हैं। ऐसे ही अपने खेतों में बरसात के पानी को खेतों से बाहर बहने ना दें। इससे खेत की ऊपरी सतह की मिट्टी का कटाव होता है, जो फसल के लिए बहुत उपजाऊ होती है। यानी खेत का पानी खेत ही

0: सोख ले तो यह बहुत उपयोगी हो सकता है। एक तो इससे खेत में नमी ज्यादा समय तक बनी रहती है, दूसरा आपके खेत के आसपास भूजल स्तर अच्छा हो जाता है जो सिंचाई के लिए काम में आता है। किसान साथियों, इसके लिए बरसात से पहले खेत की मेड़ों की मरम्मत करें। जल कटाव की जगह पर हम खेत की ढलान पर छोटे छोटे बांध बनाएं। अगर आपके पास ज्यादा खेती है तो अपने खेतों में एक तालाब बनाएं, जिससे बरसात का पानी सीधे उस तालाब में संचय कर सकें, जो बाद में सिंचाई के काम भी आ सकता है। किसान साथियों, कृषि में सिंचाई के लिए जल की सबसे अधिक जरूरत होती है, इसीलिए हमें जल संचयन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से हमारा भूजल स्तर तो कम हो ही रहा है, साथ में नहरों में या तालाबों में पानी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है। ऐसे में खेत की सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता है, तो हमें अभी से संचयन और जल संरक्षण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। किसान साथियों, भारत में जल संचयन की एक महान और लंबी परंपरा है, जो हमें तालाबों, पोखरों और बावड़ियों के रूप में देखने को मिलती है। जल जीवन का आधार है। अगर हम आज पानी नहीं बचाएंगे तो हमारा कल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। भावी पीढ़ी के लिए जल की बचत एवं जल संचयन और जल संरक्षण की बहुत ज़रूरत है। जल संचयन के बहुत से लाभ हैं। एक तो इससे भूजल स्तर अच्छा रहता है, जिससे हमारे उपयोग हेतु जल हमेशा बना रहता है। दूसरा, जल संचयन से मिट्टी का कटाव रुकता है और बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। किसान साथियों, जल संचयन या जल संरक्षण मुख्य रूप से वर्षा जल का किया जाता है, और अच्छी वर्षा के लिए जमीन पर अधिक से अधिक हरियाली और पेड़ पौधे होने चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वन और जंगल होने चाहिए, तभी तो अच्छी बरसात होगी। जी हाँ साथियों, अधिक पेड़ पौधे तो हमारी पर्यावरण में जितनी हरियाली ज़्यादा रहेगी उससे हमारी बरसात भी अच्छी होती है। मिट्टी का कटाव रुकेगा, तापमान नियंत्रण में रहेगा। श्रोताओं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे यानी वनों की संख्या ज़्यादा होगी तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आम जन में वनों के प्रति और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए जागरूक करने के लिए हमारे भारत देश में हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, यानी आज से अगले 7 दिनों तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। साथियों, वन महोत्सव सप्ताह एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में पेड़ों और वनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक पौधे लगाना है। यह वन महोत्सव सबसे पहले 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा शुरू किया गया था। इस वन महोत्सव को जुलाई के पहले सप्ताह में मनाने का मुख्य कारण यह है कि भाई इस समय भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जो नए पौधों के लिए पनपने और जीवित रहने के लिए सबसे अनुकूल मौसम होता है। यह वन महोत्सव हम सबको एक पेड़ अपनी माँ के नाम या अपने परिवार के सदस्य के नाम पर लगाने के लिए प्रेरित करता है। तो साथियों, मैं तो इस मानसून में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाऊंगा। इस सप्ताह या इस मानसून में आप भी एक पेड़ जरूर लगाएं और आज इस वन महोत्सव सप्ताह में अपना योगदान दें, या ये कहें कि भाई पर्यावरण सुरक्षा में अपना योगदान जरूर दें, क्योंकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगे तो श्रोताओं, हम आने वाली पीढ़ी के लिए जल, वायु और अन्य चीजों को बेहतरीन बनाकर छोड़कर जाएंगे। श्रोताओं, आपके साथ अपने कार्यक्रम को हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक छोटा सा विराम ले लेते हैं और मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी

0: सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: किसान साथियों, आज से जुलाई माह की शुरुआत हो चुकी है और यह महीना खरीफ की फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में मानसून आते ही किसान धान की रोपाई करते हैं, ज्वार, मक्का और बाजरा जैसी प्रमुख फसलों की बुवाई करते हैं। किसी फसल की अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज की बुवाई से शुरुआत होती है। तो किसान भाइयों, आज हम खरीफ की मुख्य फसल बाजरे की नई और उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी लेते हैं। आने वाले कुछ दिनों में जिसकी आप बुवाई करेंगे, उस बाजरे के बारे में हमें जानकारी होगी तो हम अच्छे और उन्नत किस्म के बीज को इकट्ठा कर सकते हैं। बाजरे की नई उन्नत किस्म है HHB 311। इसमें आयरन और जिंक की मात्रा सामान्य किस्मों से कहीं अधिक होती है और इससे लगभग 18 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार मिल जाती है। इसके अलावा RHB 121 कम पानी वाले क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय और रोगों के प्रति सहनशील किस्म है। पायोनियर 86M94 और क्रिस्टल 949 बाजरे की ऐसी किस्म है जो सिंचित क्षेत्रों और भारी मिट्टी के लिए सबसे बेहतरीन है। तो किसान साथियों, बाजरे की इन नई किस्मों का अपनी ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करके लाभ लें और कृषि को बेहतर बनाएं। साथियों, आपके साथ हमारा कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले आइए इस गर्मी के मौसम में आनंद लेते हैं मिथिलेश द्वारा गाए इस मधुर लोकगीत का।

0: किसान साथियों, आने वाले कुछ दिनों में मानसून की शुरुआत हो जाएगी और बरसात के दिनों में हमें अपने खेतों में या खाली ज़मीन पर बहुत सारे केंचुए देखने को मिलते हैं। केंचुए को हम किसानों का दोस्त कहते हैं क्योंकि यह हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं। साथियों, इसी बात को समझाने के लिए आज की हमारी वार्ता में डॉक्टर KL राजपूत आपको भूमि की उर्वरता में केंचुओं के योगदान पर जानकारी दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं यह वार्ता।
1: किसान भाइयों, आजकल दिन प्रतिदिन खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है, अतः आवश्यकता है कि अधिक से अधिक फसलें उगाई जाएं तथा सभी कृषि कार्यों को समय से पूरा किया जाए।

0: साथियों, आने वाले कुछ दिनों में मानसून की शुरुआत हो जाएगी और बरसात के दिनों में हमें अपने खेतों में या खाली ज़मीन पर बहुत सारे केंचुए देखने को मिलते हैं। केंचुए को हम किसानों का दोस्त कहते हैं क्योंकि यह हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं। साथियों, इसी बात को समझाने के लिए आज की हमारी वार्ता में डॉक्टर KL राजपूत आपको भूमि की उर्वरता में केंचुओं के योगदान पर जानकारी दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं यह वार्ता।
1: किसान भाइयों, आजकल दिन प्रतिदिन खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है, अतः आवश्यकता है कि अधिक से अधिक फसलें उगाई जाएं तथा सभी कृषि कार्यों को समय से पूरा किया जाए। अधिक लाभ देने वाली फसलों, सब्जियों तथा फसलों का चुनाव बाजार व कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार करना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि लागत कम आए तथा शुद्ध लाभ ज्यादा मिले। आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती से अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार उन्नतशील बीजों का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर प्रदेश 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है। क्षेत्रीय विविधता के अनुरूप फसलों, सब्जियों, फलों एवं तदनुसार उपयुक्त उन्नतशील प्रजातियों के उपयोग से बगैर किसी अतिरिक्त लागत से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। कृषकों को अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बीज उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त करके स्वयं उन्नतशील बीज का उत्पादन भी करना चाहिए। बीज का शोधन करने के उपरांत समय से बुवाई करनी चाहिए। बीज शोधन में बुवाई से पूर्व मृदा जनित रोगों से बचाव हेतु कवकनाशी, जिसमें 2 से 3 ग्राम कैप्टान या थीरम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं फास्फोरस उपलब्धता बढ़ाने हेतु क्रमशः राइजोबियम तथा फास्फोरस विलेयी जीवाणु 20 से 25 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। जहाँ पर दीमक एवं कर्तन कीट का खतरा ज्यादा होता है, वहाँ पर क्लोरोपारिफॉसफेट बीज उपचार करने पर उत्पादन में वृद्धि होती है। समय से बुवाई करने से ही पूरा लाभ मिलता है। अधिक लाभ हेतु सह फसलीय अथवा इंटरक्रॉपिंग खेती को अपनाना चाहिए। शरदकालीन गन्ने के साथ आलू की खेती की जा सकती है। गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच आलू की 1 पंक्ति बोना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। आलू की कंद से कंद की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। गन्ना व मसूर की सफसली खेती से प्रति इकाई क्षेत्रफल से दोहरा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अलसी तथा राई की सफसली खेती में अलसी की 5 कतारों के बाद राई की 6ठी कतार बोनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बेड प्लांटिंग तकनीक द्वारा सफसली खेती करना अधिक लाभदायक है। जैसे अरहर बेड पर बोकर मक्का नाली में, अरहर बेड पर बोकर ज्वार नाली में आदि प्रमुख हैं। कम अवधि की नकदी फसलें जैसे आलू, लौकी, कद्दू आदि फसलों की खेती को प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। अधिक आमदनी प्राप्त करने हेतु इसके साथ साथ पशुपालन, बागवानी, सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि को भी करना चाहिए। पॉलीहाउस तकनीक द्वारा नियंत्रित वातावरण में बेमौसमी सब्जियों से अधिक उत्पादन करके अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। पॉलीहाउस में सब्जियों की खेती का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करके ही खेती करना चाहिए। इसके लिए मुख्य सब्जियां जैसे टमाटर, फूल गोभी, पात गोभी, ब्रोकली, शिमला मिर्च, करेला, चप्पन कद्दू आदि प्रमुख हैं। फसलों को अधिक उपज प्राप्त करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना आवश्यक है। उर्वरकों का कभी कभी आवश्यकता से अधिक प्रयोग होता है तथा कभी कभी आवश्यकता से कम प्रयोग होता है। उर्वरकों की अधिक मात्रा के प्रयोग से खर्चा अधिक आता है तथा कम मात्रा के प्रयोग से उत्पादन कम मिलता है। अतः फसलों को बोने से पहले ही मृदा परीक्षण करा लेना चाहिए तथा मृदा परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। कृषि कार्यों को समय से व उचित ढंग से करने के लिए उपयुक्त कृषि यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। वर्तमान में खेतों को समतल करने के लिए लेजर लेवलर नाम का कृषि यंत्र काफी प्रचलित है। इसके प्रयोग करने के उपरांत खेतों में पानी लगाने का खर्चा बहुत कम आता है तथा पैदावार अच्छी मिलती है। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रायः रासायनिक विधि का प्रयोग किया जाता है। खरपतवार नाशी रसायन मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला, बुवाई के पूर्व लगने वाले खरपतवार नाशी। दूसरा, बुवाई के 3 दिन पश्चात लगने वाले खरपतवार नाशी तथा तीसरा, उगने के बाद लगने वाले। बुवाई के पूर्व में फ्लूक्लोरेलिन आदि, बुवाई के पश्चात में पेंडीमेथालिन आदि तथा उगने के पश्चात लगने वाले खरपतवार नाशी में मेट्रीब्यूजन आदि प्रमुख हैं। खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग

0: पूर्वक किसी विशेषज्ञ की सलाह के उपरांत ही करना चाहिए। खेती में एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन को अपनाना चाहिए। इन विधियों से शस्य क्रियाएं यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण व रासायनिक नियंत्रण हैं। शस्य क्रियाओं में गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हर्चे, गहरी जुताई, फसल चक्र अपनाना, स्वस्थ एवं रोगरोधी प्रजातियों की बुवाई करना आदि प्रमुख हैं। यांत्रिक नियंत्रण में सूढ़ियों तथा अंडों को नष्ट करना, कीट और रोग ग्रसित पौधों के भागों को तोड़कर नष्ट करना, फेरोमोन ट्रैप, प्रकाश प्रपंच आदि प्रमुख हैं। जैविक नियंत्रण में परभक्षी व परजीवी कीटों को बाहर से लाकर खेत या फसल में छोड़ना, खेत में पहले से मौजूद परभक्षी एवं परजीवी कीटों को संरक्षण देना, शत्रु एवं मित्र कीटों का अनुपात बनाए रखना प्रमुख है। रासायनिक नियंत्रण को अंतिम उपचार के रूप में करना चाहिए। सुरक्षित एवं संशोधित रसायनों का उचित समय पर निर्धारित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। फसल अवशेषों का उचित प्रबंध करना चाहिए। जहां तक संभव हो नमी की उपस्थिति में रोटावेटर चलाकर मिट्टी में फसल अवशेषों को मिला देना चाहिए, जिससे नमी की उपस्थिति में शीघ्र सड़कर मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ा देते हैं। आवश्यकता अनुसार फसल अवशेषों से कंपोस्ट खाद भी बनाया जा सकता है। पलवार बिछाने के रूप में भी फसल अवशेषों का प्रयोग किया जा सकता है। मृदा की उर्वरकता एवं उत्पादकता बढ़ाने में हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। हरी खाद के लिए उगाई जाने वाली फसल का चुनाव भूमि जलवायु को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। हरी खाद के लिए फसलों का चयन करते समय सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। फसल शीघ्र वृद्धि करने वाली हो। हरी खाद के लिए ऐसी फसल होनी चाहिए जिसमें तना, शाखाएं और पत्तियां कोमल एवं अधिक हों, ताकि मिट्टी में शीघ्र सड़कर अधिक से अधिक जीवांश व नाइट्रोजन दे सकें। गहराई से पोषक तत्वों का अवशोषण करने के लिए मूसला जड़ वाली फसल व क्षारीय एवं लवणीय मृदाओं में गहरी जड़ वाली फसलों का चयन करना चाहिए। हरी खाद के लिए दलहनी फसलों में सनई, ढेंचा, उर्द, मूंग, चना, मसूर, लोबिया, खेसारी तथा कुलथी मुख्य हैं। हरी खाद वाली फसलों में सूखा अवरोधी के साथ साथ जलमग्नता को भी सहन करती हों। दलहनी फसलों की जड़ों में उपस्थित सहजीवी जीवाणु ग्रंथियों वातावरण में युक्त नाइट्रोजन को यौगिकीकरण द्वारा पौधों को उपलब्ध कराती हैं। उद्यान की फसलों में घुलनशील उर्वरकों को टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा पौधों में लगाना चाहिए। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा घुलनशील उर्वरकों को लगा सकते हैं, जिसमें अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, मोनो अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, यूरिया, एनपीके मिश्रण आदि प्रमुख है। इस विधि से उर्वरक उपयोग की दक्षता बढ़ती है, फलतः उर्वरक की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। यह विधि पोषक तत्वों के त्वरित प्रभाव को सुनिश्चित करता है, जिससे पौधों की वृद्धि होती है। इस विधि से फसलों पौधों को पूरे वृद्धि काल में आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे उर्वरक दिए जा सकते हैं। इससे समय व श्रम दोनों की बचत होती है। फसलों, सब्जियों तथा फलों की तुड़ाई के बाद भंडारण, पैकिंग व ढुलाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे देश में 1-2% फलों को प्रसंस्करण किया जाता है, जबकि दूसरे विकसित देशों में 30-40% फलों व सब्जियों को प्रसंस्करण किया जाता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि देश में फलों के प्रसंस्करण को बढ़ाना चाहिए। इससे जहां तक एक ओर रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों की आमदनी भी बढ़ती है। अतः कृषक भाई व्यवसाय खेती के उन्नत तकनीकों को अपनाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं तथा रहन सहन के स्तर में सुधार होगा।
1: श्रोताओ, अभी आपने हमारी वार्ता में डॉक्टर केएल राजपूत से भूमि की उर्वरा में केंचुओं के योगदान पर जानकारी ली। आइए अब हम आपको देते हैं आज और कल के मौसम के बारे में जानकारी। आज का अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस। आगामी 24 घंटों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रोताओ, अब हमारे कार्यक्रम में वक्त है आपके मनोरंजन का, तो आइए इस गर्मी में बरसात की आस लगाए महावीर सिंह चाहर की आवाज़ में सुनते हैं यह मधुर लोकगीत।

अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण लोक। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्रों से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोता, इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं मजदूर भाई बहनों का कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रमिक भाई और बहनों को आपकी रेडियो सखी छवि कर का स्नेह भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। दोस्तों, कैसे हैं आप? चलिए हम सबसे पहले आपसे आज का प्रश्न पूछ लेते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि जीएसटी कब लागू किया गया? दोस्तों, हमारे कार्यक्रम में बने रहें, हम इस प्रश्न का उत्तर आगे के कार्यक्रम में देंगे। अब देखिए ना, आप सभी को पता है कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपके सेहत की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जब कभी हमें उपचार की जरूरत होती है तो हम कहाँ जाते हैं? जी हाँ मित्रों, हम सभी हेल्थ क्लिनिक या हॉस्पिटल जाते हैं।

आज का हमारा कार्यक्रम उनके लिए है जिनके हाथों में उपचार है, जिनके शब्दों में भरोसा है और जिनकी मुस्कान में मरीजों के लिए उम्मीद छिपी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर की और आज है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। श्रोताओं, डॉक्टर केवल बीमारी का ही इलाज नहीं करते या वो सिर्फ दवाइयां ही नहीं लिखते, बल्कि वो मार्गदर्शक होते हैं जो मरीज को बीमारी के अंधेरे से निकालकर उम्मीद की रोशनी में लाते हैं। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने चिकित्सा और समाज सेवा दोनों क्षेत्रों में अद्भुत योगदान दिया। साथियों, डॉक्टर बनने का सफर आसान नहीं होता, ये तो हम सभी जानते हैं। वर्षों की कठिन पढ़ाई, लगातार ट्रेनिंग और दिन रात की मेहनत, और हाँ, सबसे बढ़कर मानव सेवा का जज्बा। कई बार तो डॉक्टरों को अपने परिवार से दूर रहकर भी मरीजों की सेवा करनी पड़ती है। मित्रों, आपको याद होगा कोरोना महामारी का समय, शायद हम कभी नहीं भूलेंगे, जब पूरी दुनिया ठहर सी गई थी, तब डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी पर डटे रहे। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई। सही कहा ना मैंने? और दोस्तों, कड़ी मेहनत करने वाले हमारे श्रमिक भाई अक्सर शारीरिक थकान, चोट, धूल मिट्टी और कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। ऐसे में समय पर स्वास्थ्य जांच और डॉक्टर की सलाह लेना समझदारी है। हमें किसी भी छोटी मोटी समस्या या बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करना है। जैसा कि हम लापरवाही से कह देते हैं, अरे ठीक हो जाएगा, लेकिन यही गलती आगे बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना और उसे मानना समझदारी है। याद रखिए, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर हम उन सभी डॉक्टरों को दिल से धन्यवाद कहते हैं जो हर दिन अनगिनत लोगों के जीवन में राहत और मुस्कान लाते हैं, जो दूसरों को नया जीवन देने का संकल्प रखते हैं। वे सचमुच धरती पर ईश्वर का स्वरूप हैं। सभी डॉक्टरों को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब लेते हैं एक संगीत में विराम और सुनते हैं ये गीत।

0: साथियों, हमने आपसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर है जीएसटी 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर, ये भारत की कर व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव माना जाता है। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल जीएसटी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, पहले हमारे देश में अलग अलग तरह के कई टैक्स लगते थे, जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंट्री टैक्स वगैरह। इससे व्यापारियों और आम लोग दोनों को ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था, क्योंकि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। जीएसटी ने इन कई टैक्सों को एक छत के नीचे लाने का काम किया है। आसान शब्दों में कहें तो एक देश एक टैक्स की सोच को मजबूत किया गया है, और इसके कारण टैक्स प्रणाली अधिक पारदर्शी और सरल बनी। साथियों, जब व्यापार आसान होता है, उद्योगों को सुविधा मिलती है और बाजार व्यवस्थित चलता है, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, जिससे श्रमिकों की आय और अवसरों पर भी अच्छा असर होता है। श्रोताओं, जीएसटी दिवस हमें ये याद दिलाता है कि कर यानी कि टैक्स केवल सरकार की आय का साधन ही नहीं, बल्कि देश के विकास का आधार भी है, क्योंकि सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण में टैक्स की अहम भूमिका होती है। दोस्तों, ज्ञान सागर में बस इतना ही। मिलते हैं थोड़ी ही देर के में, आप इंतजार कीजिए।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: साथियों, हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम बड़े पदों पर काम करने वाले अफसरों और बड़े बड़े व्यापारियों, पूंजीपतियों की बहुत इज्जत करते हैं, उन्हें सम्मान से देखते हैं, पर श्रमिक वर्ग जो अपनी मेहनत से देश के विकास में अपना योगदान देते हैं, उन्हें कमतर आंकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। रोज कमाते रोज खाते, फिक्र नहीं कल की, मजदूरों के हाथ में ही तकदीर है इस दुनिया की। पसीना बहाकर जो सींचते हैं जमीन को, वही असल में मालिक हैं जहान के। आइए इसी भाव के साथ सुनते हैं काव्य।

0: डॉक्टर हरीश चंद्र शाक्य से।
1: एक गीत प्रस्तुत है, मेरे श्रम की दे दो कीमत और न कोई चाह मुझे, मुझको भी दो थोड़ी इज्जत दिखलाओ शुभ राह मुझे, धन

पति भाई झुग्गी का अंधियार मिटा दो, छेड़न पाए आह मुझे, मेरे श्रम की दे दो कीमत और न कोई चाह मुझे। घाटी में उजियारा लाओ, केवल शिखर न चमक रहे, सब ही भोजन अच्छा पाए, ना बस रोटी नमक रहे। मुझको भी धन इतना तो दो, जो घेरे ना बस साह मुझे, मेरे श्रम की दे दो कीमत और न कोई चाह मुझे। मैं ईश्वर का रूप दूसरा,

त्याग मुझे। अब एक नवगीत प्रस्तुत है, आज रिश्ते नाते किस तरह के हो गए हैं इस संबंध में मैं कह रहा हूं। अंदर अंदर शीत युद्ध है,

अपने पन की परिभाषा ही बिल्कुल गई बदल। नागफनी सी चुभती तन में पीड़ा गई मचल। बिखर गए परिवार आजकल, बिखर गए परिवार आजकल, कष्टों में माँ बाप। अंदर अंदर शीत योद्ध है, बाहर मेल मिलाप। अपनी ढपली आज बजाकर कितने हुए मगन। अलग्योझा की तान सुनी जब रोए धरा गगन। रोज रोज अजगर बन निगले, रोज रोज अजगर बन निकले रिश्तों को अभिशाप। अंदर अंदर शीत योद्ध है, बाहर मेल मिलाप। पालक घर कट कट कर रोया। यहां श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। पालक पालने वाला और एक पालक सब्जी भी होती है, तो दोनों अर्थों में देखें आप। पालक घर कट कट कर रोया, क्या कर सके जतन। चूल्हे जितने बढ़े के उतना उसका हुआ पतन। किससे कहे व्यथा वह अपनी, किससे कहे व्यथा वह अपनी, बैठ गया चुपचाप। अंदर अंदर शीत योद्ध है, बाहर मेल मिलाप। अब एक और नवगीत प्रस्तुत है। देखिए गांव किस तरह के हो गए हैं, ये हमने दिखाने का प्रयास किया है। बोझिल बोझिल से तन मन है, शिथिल शिथिल से पांव। कहां खो गया गांव हमारा, कहां खो गया गांव। अगहाने सब लुप्त हो गए, खोई किस्सा गोई। बचपन के सब खेल तमाशे, लील गया है कोई।

अगहाने सब लुप्त हो गए, खोई किस्सा गोई, बचपन के सब खेल तमाशे लील गया है कोई। कजरी और मल्हारे खोई, कजरी और मल्हारे खोई, मिले न बरगद छाओ। कहाँ खो गया गाँव हमारा, कहाँ खो गया गाँव। फागुन की मस्ती है गायब, फीकी फीकी होली, रंगते अब भाभी की देवर, कहीं न चूनर चोली। फागुन की मस्ती है गायब, फीकी फीकी होली, रंगते अब

अब ठाऊं, कहाँ खो गया गाँव हमारा, कहाँ खो गया गाँव। कहीं खो गया अपनापन है, गायब भाई चारा। घर घर में अब फूट पड़ गई, किसका कौन सहारा। कहीं खो गया अपनापन है, गायब भाई चारा। घर घर में अब फूट पड़ गई, किसका कौन सहारा। एक दूजे को नीचा करने, एक दूजे को नीचा करने के चलते सब दाऊं।

आ गाँव। देखिए, मैं अपने कुछ माहिया छंद प्रस्तुत कर रहा हूं। यौवन में चूर रहे क्या थी मजबूरी, क्यों मुझसे दूर रहे, अब याद सताती है, बेचैनी देती, रह रह कर आती है। तुम रहना अपनों में पर आते रहना मेरे भी सपनों में। सागर तो खारा है, मीठी झील कहाँ, जो लक्ष्य हमारा है। मैं रोता हूं कितना, भूल नहीं सकता, तुम चाह गए इतना, तुम साथ नहीं रहते, मन कैसे बहले, हम पीर सदा सहते, जब जब भी

0: हम इनसे हारे हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ डॉक्टर हरीश चंद्र शाक्य से। आइए अब बात करते हैं सेहत की। दोस्तों, हमारा आज का विषय है तुलसी। जी हाँ, तुलसी का उपयोग मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुधार, सर्दी जुकाम के घरेलू उपचार, काढ़ा बनाने और त्वचा की देखभाल करने के लिए किया जाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और तनाव को कम करने में बहुत गुणकारी मानी जाती है। साथियों, अगर तुलसी के पत्तों को अदरक और शहद के साथ मिलाकर पिए तो कफ, गले की खराश और जुकाम में तुरंत आराम मिलता है। साथ ही अब ये जो बारिश

का मौसम आ रहा है ना, इसमें तुलसी सभी तरह की बारिश की मौसमी बीमारियों से बचाएगी। और हाँ, तुलसी के पत्तों की चाय पीने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और पेट की गैस या अपच से राहत मिलती है। तुलसी का एक गुण ये भी है कि इसके पत्तों को पीसकर नींबू के रस के साथ चेहरे पर लगाने से मुहासे और दाग धब्बे दूर होते हैं। इसके अलावा ज़रूरी बात यह है कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधों को बहुत पवित्र माना जाता है। पूजा पाठ में तो इसका इस्तेमाल होता ही है, साथ ही इसे घर के आंगन में लगाना बेहद शुभ होता है और घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो दोस्तों, अब समय हो चला है मनोरंजन का, आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी श्रमिक श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 96.1 मीटर पर। श्रोता इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को है। अगला अनुप्रसारण कुछ ही क्षणों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

0: संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यह यात्रा 3 जुलाई से नुनवान पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The government today approved the construction of 6-lane road tunnel for National Highway 148AE in Delhi, connecting Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg Vasant Kunj. Briefing media in the national capital today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has also approved the construction of the 117.7-kilometer Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh.
1: आज कैबिनेट में 2 बड़े फैसले लिए गए।
3: टुडे द कैबिनेट अप्रूव्ड 2 मेजर डिसीजंस बोथ रिलेटेड टू हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। द फर्स्ट एड्रेसेस अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इन दिल्ली फॉर इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी बिटवीन द नेशनल हाईवे कॉरिडोर एंड वसंत कुंज। सेवरल एफर्ट्स हैड बीन मेड ओवर द ईयर्स एंड टुडे दोज प्रपोजल्स हैव फाइनली बीन अप्रूव्ड। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6-lane द्वारका टनल एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 6,970 करोड़ रुपीज। द सेकेंड डिसीजन इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन of 4-lane access controlled highway between Kanpur and Kabrai, forming part of the corridor connecting Kanpur with Bhopal. Project has an estimated cost of 7,145 crore rupees. In addition,

अब यह छोटा स्कूल उन्नति करके इंटरमीडिएट कॉलेज हो गया है। इस शिक्षण संस्था की उन्नति में टंडन जी का प्रमुख हाथ था। गणेश गवर्नमेंट कॉलेज से सन 1897 ईस्वी में एंट्रेंस की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1899 ईस्वी में आपने इंटर की परीक्षा कायस्थ पाठशाला से उत्तीर्ण की। म्योर सेंट्रल कॉलेज से 1904 में बीए उत्तीर्ण किया। विद्यार्थी जीवन में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं की अच्छी योग्यता प्राप्त की। वर्षों पश्चात टंडन जी ने काशी विश्वविद्यालय के छात्रों को निम्न संदेश दिया, जो किसी भी विद्यार्थी समाज के लिए उपदिष्ट और अनुकरणीय है। विद्यार्थी जीवन की उपयोगिता और उसकी शोभा जीवन स्तर को ऊंचा करने में ही है। भारतीय संस्कृति के स्थायी आदर्श के अनुरूप हमारे छात्रों का जीवन हो, यह मेरे हृदय की पुकार है। सन 1906 में वकालत उत्तीर्ण करके जुलाई मास से प्रयाग की छोटी अदालत में वकालत की प्रैक्टिस आरंभ कर दी। वकालत के साथ साथ विद्या अनुराग को बनाए हुए उन्होंने इतिहास विषय में एमए किया। इन्हीं दिनों उनका संपर्क भारतीय संस्कृति के उद्धारक महामना मालवीय जी और हिंदी के सुविख्यात साहित्यकार पंडित बालकृष्ण भट्ट जी से हुआ। टंडन जी का विवाह 15 वर्ष की आयु में 1897 में नरोत्तम दास खन्ना की पुत्री चंद्रमुखी से हुआ था। ईश्वर की अनुकंपा से आपके 7 पुत्र और 2 कन्याएं हुईं। गृहस्थ धर्म की चर्चा करते हुए स्वयं उन्होंने लिखा, गृहस्थ जीवन को सफलता से चलाने की कुंजी सहनशीलता और दूसरे के भावों को उदारता से समझने का प्रयत्न है। इस कुंजी से बहुत सी कठिनाइयों के कपाट खुल जाते हैं। टंडन जी का जीवन क्रम विभिन्न गतिविधियों से चलता रहा। जिन दिनों आप वकालत कर रहे थे, उन्हीं दिनों महामना मालवीय जी के अनुरोध पर आप नाभा रियासत के कानून मंत्री होकर नाभा चले गए। फलतः 1914 में आप नाभा राज्य के कानून मंत्री हुए। अपनी कार्य क्षमता के परिणाम स्वरूप टंडन जी शीघ्र ही वहां के विदेश मंत्री हो गए। सन 1920 में असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर एवं गांधी जी के आह्वान पर टंडन जी वकालत छोड़कर आंदोलन में प्राणपण से कूद पड़े। यहीं से राज ऋषि के राजनीति जीवन का प्रारंभ हुआ। राजनीति के साथ साथ हिंदी के प्रति उनका नैसर्गिक आकर्षण तेजी से पल्लवित हो रहा था। हिंदी के पक्ष को सबल करने के उद्देश्य से ही मैंने कांग्रेस जैसी संस्था में प्रवेश किया, क्योंकि मेरे हृदय पर हिंदी का ही प्रभाव सबसे अधिक था और मैंने उसे ही अपने जीवन का सबसे महान व्रत बनाया। इनके ही शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि हिंदी के प्रति उनका कितना अनुराग था। उनकी हिंदी सेवा के विषय में पंडित राहुल सांकृत्यान ने कहा था, टंडन आज हिंदी के प्रतीक हैं। उनकी सेवाओं को हिंदी भाषी तथा भविष्य के सारे भारतीय, जो अवश्य हिंदी के ज्ञाता होंगे, कभी भूल नहीं सकते। टंडन जी किसानों से जबरदस्त प्रेम रखते थे। सन 1930 में उन्होंने केंद्रीय किसान संघ की स्थापना की और उसके द्वारा जमींदारी प्रथा मिटाने के आंदोलन को आगे बढ़ाया। जमींदारी प्रथा के अंत के लिए जमींदारों को मुआवजा देने का सुझाव सर्वप्रथम टंडन जी ने ही दिया। टंडन जी दिवंगत देशभक्त लाला जी के स्नेह भाजन सहयोगी रहे। लोक सेवा मंडल के अध्यक्ष होते ही टंडन जी ने पहला काम लाला लाजपत राय स्मारक निधि के लिए 5 लाख रुपयों के संग्रह का किया। उनके कार्य की राष्ट्रव्यापी प्रशस्ति हुई। टंडन जी ने नमक सत्याग्रह के निमित्त अपनी निजी भूमि, जिसे उन्होंने तपोभूमि नाम दिया था, समर्पित कर दी। वहीं आपने और स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू ने नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। अवज्ञा आंदोलन के सूत्रपात करने के अभियोग में आपको 1 वर्ष 6 माह की सजा हुई। 15 अप्रैल 1948 की पुण्यतिथि को योगीराज देव रहवा बाबा ने पंडितों एवं विद्वानों के समक्ष बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन को राज ऋषि की उपाधि से विभूषित किया। लोकमत की प्रतिष्ठा में आस्था रखने वाले टंडन जी ने यद्यपि राज ऋषि उपाधि को स्वीकार तो किया, किंतु उन्होंने स्वयं अपने लिए इस शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया। राजनीतिक विचारक के रूप में टंडन जी ने देश के विभाजन का सदैव विरोध किया। हिंदी के लिए तो उनका जीवन समर्पित ही रहा। संविधान सभा तथा संसद दोनों में ही उनके सामने केवल एक विषय रहा, वह हिंदी का। हिंदी विद्या

0: विद्यापीठ टंडन जी की अन्यतम कृतियों में एक है। टंडन जी की अनेकों रचनाएं हिंदी प्रदीप में मिलती हैं। किसी पारदर्शी यंत्र से टंडन जी के आंतरिक जीवन को झांका जाए तो उनकी राजनीति, उनकी समाज सेवा, उनकी सांस्कृतिक प्रवृत्तियां, साहित्य और हिंदी के प्रति उनकी गहरी निष्ठा तथा उनकी सतत धर्मप्रियता, इन सभी के मूल में हम उनका एक ही लक्ष्य पाते हैं, जो था सत्य और जिसकी सिद्धि के लिए साधना थी नैतिकता। नीति का हाथ पकड़कर टंडन जी ने सत्य तक पहुंचने का जीवन भर अनेक क्षेत्रों में प्रयास किया। उनके विविध जीवन कार्यों का दर्शन एवं विश्लेषण उनकी इसी साध्य और साधन के द्वारा हो सकता है।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे विविधा क्रम में वार्ता राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन व्यक्तित्व और कृतित्व विषय पर। वार्ताकार थी डॉक्टर सुनीता सक्सेना।

0: हम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BV जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपये है।
1: का प्रोजेक्ट है, बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा, तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। BOT टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिन विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ है वो

0: विकसित भारत की आधारशिला बनेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहां के विकास को और गति देगा।
1: दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाएं, जिससे भावी पीढ़ी समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।
1: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए एसआईटी ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने एसआईटी को आगामी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पहले 23 जून को एसआईटी के प्रमुख सदस्य लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बीवी जीराम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: राष्ट्रीय औसत परिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि की गई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सृजनशील योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनमोन्मुखी हुई है। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल भुगतान, डीबीटी, यूपीआई, डिजी लॉकर जैसी ऑनलाइन सेवाओं ने नागरिकों के जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और

0: सुगम बनाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: टीईटी परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ से 30 जुलाई तक चलने वाले प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जनपदों में मानसून सक्रिय रहा। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर, संभल समेत कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल प्रदेश भर में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का आगरा केंद्र। श्रोतो, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हो चुके हैं। श्रोताओं, आज के दिन हम राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मना रहे हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर विशेष भेंट वार्ता। डॉक्टर रणवीर सिंह से बातचीत कर रहे हैं अनिंद्र सिंह।
4: हर साल 1 जुलाई को हम उन चिकित्सकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो अपने ज्ञान, सेवा, समर्पण से लाखों लोगों के जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए निरंतर काम करते हैं। आज जहां नई नई तकनीकें, उपचार पद्धतियां विकसित हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जीवन शैली से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां, मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां, डिजिटल हेल्थ और पर्यावरण जनित जो रोग हैं वो चिंता बनके उभर रहे हैं। आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर रणवीर सिंह त्यागी, जो सिनर्जी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। और आपके बारे में मैं बता दूं श्रोताओं, आप इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार
5: अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रण के लिए। डॉक्टर स्टेप है एंड सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम और राधे राधे।
4: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर। सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं के लिए यही जानना चाहेंगे आपसे कि ये राष्ट्रीय दिवस जो है चिकित्सकों का, किस तरह से राष्ट्रीय दिवस उसको मनाने के पीछे की उद्देश्य और वर्तमान में उसकी एक प्रासंगिक

0: प्रासंगिकता को अगर हम देखें तो उसको किस तरह आप डिफाइन करेंगे?
1: देखो, राष्ट्रीय जो चिकित्सक दिवस है वो बेसिकली एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बीसी राय साहब,
0: जी
1: तो उनके जन्म और इवन फॉर्चुनेटली ये था कि उनका जन्म मरण सेम दिन था, तो उनके उसमें जाए जो फॉर्मली चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के,
0: जी जी
1: तो उन्होंने बहुत सारे काम करे चिकित्सा क्षेत्र में, तो उनके लाइफ और डेथ एनिवर्सरी के रूप में इसको हम मनाते हैं। और इस दिन हम सोसाइटी को क्या बाई बैक दे रहे हैं, जिसके लिए हम बने हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, और वक्त के हिसाब से अपना लेटेस्ट अपडेट डिजिटलाइजेशन में है कि नहीं है।
0: कहा जाता है डॉक्टर साहब, हेल्थ इज वेल्थ।
1: यस।
0: और अगर इंसान के लिए हेल्थ जैसी चीज को अगर आप डॉक्टर से एड्रेस कर रहे हैं, उससे बेहतर मानवता की सेवा मेरी नजरों में शायद और कुछ नहीं हो सकती। आज के डॉक्टर को केवल इलाज करने वाला चिकित्सक ही नहीं, बल्कि हम यूं कहें कि वो स्वास्थ्य शिक्षक भी है, मार्गदर्शक भी है, समाज के प्रति एक उत्तरदायी नागरिक की भूमिका भी वो अदा करता है। तो इस बदलती हुई भूमिका को आप किस तरह देखते हैं?
1: वक्त बड़ा फास्ट बदलता है।
0: जी,
1: जो टाइम पहले था अभी टाइम में जनरेशन गैप बदलता जाता है, अगर आप जनरेशन के हिसाब से नहीं चलते हैं। अभी आप हिंदुस्तान में जैसे चिकित्सक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि लाइफ स्टाइल चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं।
0: बिल्कुल सर,
1: जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, मेंटल स्टेटस, ये बहुत
0: सबसे बड़ा इशू आज
1: बहुत बड़ा इशू है। इतना स्ट्रेस लेवल है लोगों को, पेशेंस नहीं है। तो अब इन जीवन शैली के बदलाव से ही आपको सबसे पहले स्वस्थ रहना है। तो जीवन के जो सात सुख कहते हैं, तो उसमें पहला सुख निरोगी काया, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक चिकित्सक के नाते में सबसे पहले यही कहता हूं कि पहले तो जो चीज प्रिवेंटेबल हो सकती है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन
0: ऑलवेज बेटर।
1: हाँ,
0: और बार बार WHO की जो गाइडलाइंस आती हैं, हर बार वो इस पे जोर देते हैं कि आप उपचार से बेहतर बचाओ
1: बचाओ,
0: और इस पे ही उनका पूरा फोकस होता है। तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि अगर वो अपने दैनिक जीवन में अपनाई जाने वाली जो ऐसी पांच महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की आदतें क्या हो सकती हैं जो उनको स्वस्थ रखें, निरोगी काया उनकी हो।
1: देखो, सबसे पहले तो जो है मैं कहता हूँ टॉप में मेंटल हेल्थ है, क्योंकि अगर आपका मस्तिष्क स्वस्थ है तो बाकी सब चीज ठीक है। और वो आप जानते हैं कि मेरे को किस चीज से स्ट्रेस होता है।
0: ये बात आपने बड़ी अच्छी कही है, क्योंकि सबको पता होता है कि हम क्या किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, क्या हमारे सामने समस्याएं हैं, और टैकल भी आप नहीं करना।
1: तो उसको कैसे टैकल कर सकते हो, आपसे ज्यादा कोई नहीं अच्छा बता सकता। दूसरा है, अगर आपको उसमें कोई है तो आप सलाह ले सकते हो उसमें, जैसे कि कभी आप मेंटल जो साइकोलॉजिस्ट है उससे सलाह ले सकते हो, आप अपने मित्रों से सलाह ले सकते हो, लेकिन जितना जल्दी दूर कर लोगे उसको उतना ही आपके लिए वो है,
0: आपके दिमाग पे वो एक हावी नहीं होना चाहिए,
1: नहीं होना चाहिए,
0: जिसके कारण आपको एक चिंता जिसको बोलते हैं सताने लगे। वो स्थिति जो है, मानसिक स्थिति, वो गंभीर है।
1: तो आपका वर्क भी सेटिस्फाइड होता है और आपकी हेल्थ डिटोरिएट होती है, और आपका वर्क भी डिटोरिएट होता है। दूसरा है आपका लाइफ स्टाइल रहने के लिए कि भाई ये देखो, जब भी जो योग दिवस शुरू करा, योग का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप टाइम निकाल सकते हो अपनी बॉडी के, लोग इधर उधर पार्टी के लिए निकाल लेते हैं, घूम फिरने के लिए निकाल लेते हैं,
0: हर चीज के लिए समय है, सिर्फ
1: लेकिन
0: अपने लिए नहीं,
1: खुद के लिए, इवन खाने के लिए भी, जहां भी कर सकता है इंसान। तो जो लोग इस चीज को कर लेते हैं, मैंने देखा उन लोगों को हेल्थ के प्रति बहुत कम इशू होते हैं, और ये सबसे बड़ा इशू है। और जिसको जितना जल्दी आदमी पहचान ले उतना ही ठीक है, जितना डिले होगा उतना ही
0: समस्याएं बढ़ती
1: रहती है।
0: जी, तो अगर आप देखेंगे अभी 2026 चल रहा है और 5-6 साल पहले जो एक हमने महामारी का दौर देखा, कोविड का, उस महामारी ने डॉक्टर्स की भूमिका को भी एक नया दृष्टिकोण दिया है। तो उस अनुभव से चिकित्सा की जो व्यवस्थाएं हैं या हमारी जो सोसाइटी है, उसने आपको क्या लगता है कि क्या सीखा है?
1: देखो, जो कोरोना महामारी थी एक तरह से सुनामी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस लेवल पे सेकंड वेव में जो आया था, पहले में भय ज्यादा था, दूसरे ने ये सिखाया कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए।
0: उसमें आदमी के पास हताशा ज्यादा थी,
1: आदमी बिल्कुल कुछ भी डायरेक्शन
0: छोड़ चुका था।
1: हाँ, सब कुछ उम्मीदों, और सच में भी ये था कि हम मरीजों को देख रहे थे, कौन सा मरीज बचेगा हमें ही नहीं पता होती थी। मतलब हमें एक ये लगा कि कौन सा बच सकता है, कौन सा नहीं बच सकता। मेरा एक्सपीरियंस रहा तो अप्रैल का महीना 2021 का इतना मतलब वो रहेगा कि भगवान ऐसा दिन कभी नहीं रहा।

0: जिंदगी में, लेकिन उससे बहुत सारा सीखने को मिला कि आपको कैसे रहना है, आपको मदद करनी चाहिए लोगों की, वक्त पे जो काम आ रहा है, बहुत से लोगों के मतलब आपको उस त्रासदी का तो जितना बयां कर सकते, कभी कभी सोच के ही डर लगता है। मैं तो एज ए डॉक्टर अपने आईसीयू में रहता था जहां मेरे 20-30 मरीज रहते थे, और मतलब मैं सोच भी नहीं सकता सुबह से शाम तक काम करना, 400-400 कॉल आ रही है, उनको अटेंड करना, लोगों को गाइड करना, तब लगा कि लोग कितने कष्ट में। लेकिन उससे सीखने की यही बात थी, आपको लर्निंग लेसन ये था उससे कि आपको अपनी हेल्थ का, परिवार से, ये बहुत जरूरी चीजें जिससे आपका ध्यान रखना चाहिए।
1: आपने मानसिक स्वास्थ्य की बात की थी, आपने परिवार की अभी जो बात की है, इन दोनों को अगर कोरिलेट करें तो बहुत हद तक जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है हमारी शेयरिंग पे डिपेंड करता है कि कैसे हम अपने थॉट प्रोसेस को अपने नियर एंड डियर के साथ साझा करते हैं। तो वो उसके प्रति हमारे श्रोताओं को कैसे आप आगाह करना चाहेंगे, क्योंकि आज का जो जमाना है वो बड़ा वर्चुअल वर्ल्ड होता जा रहा है
0: बहुत ज्यादा। एक तो सबसे ज्यादा मानसिक जितना भी आपको डिजिटल मीडिया है, बच्चे मतलब पैदा होने के बाद में जितना जल्दी उसको अडेप्ट करते हैं, तो आप फैमिली में जितना एंगेजमेंट कर सकते हो आपस में एक दूसरे से बैठ के, और मैं समझता हूँ फैमिली में आप एक दूसरे से चीजों को शेयर करते हो उससे आधी समस्या आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है। तो ये तो आपको टाइम देना है, अपनी बॉडी को देना है, फैमिली को देना है, हेल्थ के बारे में सोचना है, और एक दूसरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है। जो शेयर करना अकेला चला वो नहीं है, अगर आप एक परिवार में टीम की तरह रहते हो तो आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे से, और वही आपका लर्निंग लेसन होता है कि कैसे आगे बढ़ना है। सीनियर आदमी है, बड़े परिवार में लोग हैं, एक्सपीरियंस हमेशा काउंट होता है।
1: ठीक बात है। आपने कहा कि जो कोरोना का दौर था उसके बाद चीज़ें जो है बदली हैं, परसेप्शन भी बदले हैं, क्योंकि तकनीकी का युग है आजकल, डिजिटल हेल्थ और ऑनलाइन कंसल्टेशन, आजकल तो बहुत सारे हेल्थ एप्स भी आ गए हैं, और अब तो एआई का दखल और उसमें बढ़ता जा रहा है तेजी से। तो क्या आपको लगता है कि ये इन सबसे डॉक्टर की भूमिका कल को बदलने वाली है, या ये सब चीजें मिलके और उसको प्रभावी बना देंगे?
0: एआई को डॉक्टर को यूज करना आना चाहिए, क्योंकि एआई एक टूल है। ऐसा नहीं है डॉक्टर की भूमिका कम हो जाएगी, लेकिन वो आपको हेल्प करेगा, और जो यूज नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। तो एआई कोई ऐसा नहीं है कि नौकरी चली जाएगी, वो है, लेकिन एआई आपको गाइड करेगा, आपको काम को स्मूथ करेगा, आपके डायग्नोसिस ट्रीटमेंट को प्रिसाइज करेगा, लेकिन लीड आपको ही लेनी पड़ेगी डॉक्टर को। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ कि एआई को अगर आप चैट जीपीटी पे किसी पे डालो कि आपको जो फीटस होता है उसको एंगेज रखना है, फिक्स करना है, क्या है, तो उस पर आ जाएगा भ्रूण की सगाई। तो अब वो चीज है, वो इतना कर सकता है, आपको उसके प्रति ध्यान रखना है
1: कि कहां, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो है हमें उसको यूज किस तरह करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीथिंग।
0: तो ये बहुत बड़ा रोल है।
1: आजकल जो है वर्तमान की अगर बात करें तो आपने जैसे कहा था कि लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रही हैं, हम सब देखते हैं कि हमारे चारों तरफ, चाहे वो मधुमेह हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ओबेसिटी हो, इवन हार्ट अटैक के बहुत सारे केसेस आपको अपने इर्द गिर्द मिल जाते हैं। बड़ी तेजी से ये सब चीजें बढ़ रही हैं। मैं आपसे इनके कारण जानना चाहता हूँ और इससे बचने के बहुत साधारण से उपाय, जो संदेश के तौर पे आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें।
0: देखो, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, और आपके खान पान, एक्सरसाइज टोटली इस पे और कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। मैक्सिमम आपकी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करती है। ओबेसिटी मेजर कारण है, आपको जंक फूड खाना, इनसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का बहुत नाता है। तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल और खान पीन सुधारना होगा, इससे आपको इनसे, और तीसरा अगर हो गई है तो उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल के तीन ही तरीके हैं, एक तो लाइफ स्टाइल, डाइट कंट्रोल, उससे नहीं हो रहा फिजिकल एक्सरसाइज, और उससे नहीं हो रहा तो दवाई। लेकिन वो ठीक नहीं होती है। लोग क्या करते हैं, अरे मेरी तो ठीक हो गई। डायबिटीज ब्लड प्रेशर होने के बाद जब तक जिंदगी है तब तक रहती है, वो ठीक नहीं होती है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज नॉट क्यूरेबल डिजीज, ये कंट्रोल है। और अगर आप कंट्रोल करके चलते हो तो लाइफ में 20-30-40 साल कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत बहुत
1: जरूरी। आत्मनियंत्रण जो है वो बड़ा जरूरी है। पहले तो अगर आप नियंत्रण में रहते हैं तो ये लाइफ स्टाइल सो कॉल्ड डिजीजेज जो आप कह रहे हैं वो होंगी ही नहीं, और अगर होती भी हैं देन ऑल्सो कंट्रोल इज द ओनली थिंग विच इज हेल्पफुल।
0: बिल्कुल।
1: अभी वर्तमान में बात करें, गर्मी का सीजन है, बरसात

0: आएगी। ये ऐसा एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जहाँ पर संक्रमण बहुत पड़ता है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, वायरल, और जो कंटामिनेशन होता है पानी का, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एक हाउस होल्ड में और एक सोसाइटी में किस तरह से आप उसको अवेयरनेस देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं
1: देखो,
0: को?
1: इंडिया में ये बीमारी सब ज्यादातर बीमारी गंदगी से रिलेटेड है। अगर आप साफ स्वस्थ रखोगे वहां कम होगी
0: हम चूंकि बहुत
1: आपको।
0: हैविली पॉपुलेटेड एक
1: बिल्कुल,
0: कंट्री हैं।
1: 2021 में कोरोना के बाद में अगस्त सितंबर में डेंगू आया था और वो कोरोना से भी भयानक था। मेरे को याद है, वो कोरोना से भी भयानक था। तो ये डिजीज आपको साफ सफाई रखनी है, अगर मॉस्किटो के लिए लगाना है, और दूसरा आपको इसके लिए जो चीज़ें, पानी नहीं भरा होना चाहिए, है ना, आप कपड़े पूरे पहने, जैसे आप ऑफिस में बैठे हो तो मोजे पहन के जरूर बैठे, क्योंकि टेबल के नीचे कब मॉस्किटो काट जाएगा पता नहीं है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे बचा जा सकता है। अगर फिर उसके बाद हो जाता है डेंगू, और इनमें घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन टाइम बहुत जरूरी
0: ठीक बात
1: है ना, टाइम से आपको इंटरवेंशन लेना बहुत जरूरी है। बहुत डेंगू और ये बीमारी ऐसे, इनमें बहुत दवाइयों की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइमली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। उसको आप एक डॉक्टर की सलाह से लोगे तो ठीक हो जाता।
0: आपने डॉक्टर की सलाह की बात की। चूंकि ज़माना डिजिटल है, सबके पास इंटरनेट एक्सेस है, और आजकल इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब आदमी देख के अपने खुद ही डॉक्टर बन जाता है, सेल्फ मेडिकेशन, तो वो कितना खतरनाक।
1: वो देखो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। सिंपल आपने ले ली, और लेकिन जब आप डिटोरिएशन हो रहा है तो उसके बाद आपने पहचाना, तब तक गाड़ी निकल जाती है। तो टाइम, डिसीजन और इंटरवेंशन, राइट टाइम, राइट डिसीजन, राइट इंटरवेंशन, सेव लाइफ और सेव मनी।
0: डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति को अचानक ही सीने में दर्द हो गया, या स्ट्रोक हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो गई, या कोई और इमरजेंसी हो गई, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल? अस्पताल पहुँचने से पहले क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, और क्या वो चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं करना है, डोंट्स जो होते हैं?
1: सबसे पहले जो नहीं करना है बता दूं, कि उसको मुंह में, अगर मरीज बेहोश हुआ है तो पानी नहीं पिलाना, पानी नहीं पिलाना। लोग बेहोश होते हैं उसको पानी पिलाते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। क्यों, बेहोश है, उसके फेफड़ों में पानी चला गया तो आपने उसको धक्का दे दिया, वो नहीं जा रहा था
0: धकेल दिया, नहीं जा रहा था,
1: तो
0: उसको भी
1: धक्का
0: धकेल
1: दे
0: दिया।
1: दिया। दूसरा, अगर आपके कहीं पे भी, ऑफिस में, घर में, साथ में, कभी अलग अलग तरह की इमरजेंसी जा सकती हैं। एक मरीज बेहोश होकर गिर जाता है, उसको हार्ट अटैक होता है, मान लो, तो हार्ट अटैक होता है तो आपको उसका सीधा लेटा देना है बिल्कुल जमीन पे, और उसकी नाड़ी देखनी है, जो आपको लुक, लिसन एंड फील, और कंधे पे ठोक के कहना है आप ठीक हो। अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो उसको उसकी सांस देखनी है। अगर उसकी सांस पेट के थ्रू मूवमेंट नहीं हो रहे हैं और कोई है, तो आपको उसको दोनों हाथों से छाती के मध्य में बिल्कुल इस बोन पे कंप्रेशन करना है, चेस्ट को 4 से 5 सेंटीमीटर, और करते हुए हॉस्पिटल ले जाना है,
0: सीपीआर देना है।
1: सीपीआर। दूसरा, अगर उसको एक साइड लकवा हो गया है तो करवट लेटा के तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है, क्लिनिक नहीं ले जाना, क्योंकि उसका अर्जेंट सीटी होना चाहिए, और उसको डिसाइड करेगा कि उसको एक इंजेक्शन लगता है अर्जेंटली रिकवरी के लिए, जरूरत है कि नहीं, वो गोल्डन आवर होता है। ऐसे ही किसी को अगर दौरा आता है तो लोग क्या करते हैं, दौरे में क्या करते हैं कि उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, दौरे के टाइम पे आप इतना पकड़ो कि ऊपर से डायरेक्ट फर्श पे गिरे नहीं, तो हेड इंजरी नहीं हो। दौरा आ गया तो अपनी साइकिल पूरी करेगा वो, तो उस साइकिल को आपको रोक नहीं सकते हो, आपको उसको धीरे से ऐसे रखना है कि गिरे नहीं, और उसको जमीन पर लेटा देना है,
0: आप उसको जो फिजिकल एक डैमेज हो सकता है
1: बस
0: उसको
1: वो
0: बचाएं।
1: बचाना है। और अगर मुंह में रख सकते हो तो चम्मच या कुछ भी चीज हार्ड रख सकते हो, कि टंग बाइट नहीं हो, कटे नहीं, और कुछ नहीं
0: दांतों
1: हो।
0: के बीच में आ जाती
1: बस
0: है अक्सर
1: बस,
0: कर।
1: अगर वो कर दिया अपने आप ठीक होगा, और दौरा खत्म हो जाए तो करवट से लेटाना है और हॉस्पिटल ले जाना है। सांप अगर काटने, गर्मियों, बरसात का
0: बरसात के
1: मौसम आ रहा
0: मौसम में
1: है,
0: चूंकि ये चीजें
1: कभी
0: होती
1: भी
0: हैं।
1: घबराना नहीं चाहिए, 100% ठीक हो जाता है मरीज। बाईगीर पे नहीं जाना चाहिए, बाईगीर पे जाते हैं लोगों की डेथ हो जाती है। ये मेरा सबसे एक निवेदन है, मैं इस हर साल 50-100 मरीज देखता हूं, लोग बाईगीर पे जाते हैं।

0: हैं, लेकिन नहीं जाना चाहिए। 95% स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं, तो भय से मरता है आदमी, उसको एश्योरेंस चाहिए। एक कुछ 5-7% अगर किसी मरीज की निगलने में दिक्कत हो रही है, आंखें बंद होने लग जाएं, आप समझ लेना ये सांप जहरीला है, मेरे पास 3-4 घंटे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। अगर मैं नियर बाई हॉस्पिटल ले गया और वहां वेंटिलेटर सांस का सपोर्ट मिल गया, वो 100% ठीक हो जाएगा।
1: माने 3-4 घंटे हैं उसके बाद भी।
0: बिल्कुल, अगर पलक झपक रही है, समझ लो आंख पूरी नहीं खोल पा रहा है, तो ये सांप जहरीला है, ये एक निशानी है। फिर आपके पास 3-4 घंटे मैक्सिमम है, आप जितना जल्दी हो जाए, नहीं करना चाहिए, बांधना नहीं चाहिए, कट नहीं लगाना चाहिए, ये सब इससे कुछ नहीं होता। कभी कभी ज्यादा टाइट बांध देते हैं तो मरीज का हाथ और काटना पड़ता है,
1: क्योंकि वो ब्लड फ्लो रुक जाता
0: रुक
1: है,
0: जाता है,
1: तो वो एक गंभीर स्थिति हो सकती है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में इस मोड़ पर अगर मैं कहूं कि हमारे श्रोताओं को एक कोई गीत अपनी पसंद का सुनवाएं, तो कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
0: मैं गीत बहुत ज्यादा नहीं वो करता हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो पसंद करता हूं, जो नाम पिक्चर का गाना है, चिट्ठी
1: चिट्ठी
0: आई
1: आई,
0: है। जब मैं
1: क्या बात
0: MBBS में घर से बाहर गया छोटा था, तब वो गाने को सुन के जब मेरे को लगता था यार घर चलो,
1: है। तो
0: तो वो गाना
1: चलिए
0: मेरे को
1: सुनवाते
0: सबसे
1: हैं
0: अच्छा लगता
1: श्रोताओं को आपकी पसंद का ये
0: है।
1: गीत।

0: एक चीज और सर, जो आजकल बहुत प्रोमिनेंट है, AMR एंटीबायोटिक्स का अनचाहा उपयोग, माने बहुत ज्यादा, चूंकि एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा तादाद में ली जाती हैं, तो वो कितनी गंभीर समस्या आप पाते हैं? और चूंकि इसके बारे में सामान्य जनता है उसमें अवेयरनेस उतनी होती नहीं है, तो एक सरल से शब्दों में AMR को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे और उनको इसके प्रति कैसे आगाह करेंगे?
1: ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मोदी जी ने भी अपनी मन की बात में ये सवाल कहा था। मैंने प्रेसिडेंट बनने के बाद ISECM का, मैंने एक जनरल पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम में मेरा एंटी माइक्रोबियल, जो पांच मेरे ड्रीम है जनरल पब्लिक के लिए, कोड लाइफ, कोड मतलब CPR, हर इंसान को आना चाहिए इमरजेंसी में, वो मतलब ऑर्गन डोनेशन, आपको अवेयर होना चाहिए कि अंग दान कितना महत्वपूर्ण है,
0: मानवता की सबसे बड़ी सेवा है,
1: लाइफ आफ्टर डेथ। तीसरा है डी एस्केलेशन, एंटीबायोटिक से रिलेटेड है, जिसमें एक बहुत बड़ा इशू है, नई दवाइयां आ नहीं रही हैं, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इससे इफेक्ट होना दवाइयों का कम हो गया है, तो फ्यूचर के लिए बहुत नुकसान है। डॉक्टर की बिना सलाह के दवाई नहीं लें, ये बहुत जरूरी है। और अगर आपको लग रहा है किसी गूगल से और से देख के ऐसे करने से, आप सोसाइटी में इंडिविजुअल हर आदमी ऐसे ले रहा है, तो क्रॉस रेजिस्टेंस इतना हो रहा है कि आने वाले टाइम में हमारे पास दवाई नहीं होगी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। एक मेरा अवेयरनेस है स्ट्रोक, जो लकवा और उसके लिए, उसमें आदमी को अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर मेरे को लकवा हुआ तो मेरे को 4 घंटे से पहले, जैसे हार्ट अटैक होता है ऐसे ही ब्रेन अटैक में 4 घंटे से पहले हॉस्पिटल पहुंचना है। और पांचवा मिशन है एडल्ट इम्यूनाइजेशन। लोग कहते हैं कि वैक्सीन तो बच्चों के होते हैं, नहीं, एडल्ट के भी लगते हैं कुछ वैक्सीन। जब ICU में मरीज आता है, मैंने इसलिए मिशन चलाया कि जब ICU मरीज आता है तो मैं देखता हूं अभी सर्वाइवल नहीं है, तब हिस्ट्री लेता हूं, तो उसको वैक्सीन अगर लगा होता उसका तो बच सकता था। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने यही शुरू करा है जो HPV वायरस के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए, कितनी डेथ इंडिया में सर्वाइकल कैंसर से होती, अभी बच्चों,
0: पुराने जमाने में वो
1: वैक्सीन था ही नहीं
0: वैक्सीन,
1: अभी सरकार ने मास लेवल पे चल रहा है। तो ये वे पांच प्रोग्राम है, तो एंटीबायोटिक वाला इशू हम कवर कर रहे हैं। आज हमारा एटलीस्ट इंडिया में जो हमारी 115 ब्रांचे हैं, हर जगह इस पे प्रोग्राम है।
0: बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इशू मैं आज समझता हूँ, खास तौर से अगर यूथ को एड्रेस करना चाहें हम, यूथ चूंकि फुल ऑफ एनर्जी है, नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं नशे की जो एक प्रवृत्ति है वो डेवलप होती है। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो वो लेते हैं, ई सिगरेट का चलन आजकल बढ़ता जा रहा है। चिकित्सकीय दृष्टि से अगर देखें तो इन सब के दुष्परिणामों को आप किस तरह से श्रोताओं के साथ साझा करेंगे?
1: ये देखो, कोई भी नशा बॉडी को कितना हार्म करता है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, दोनों ही हार्म करता है। और जो मेंटल स्टेटस की वजह से और संगत की वजह से ये जो हो रहा है, स्पेशली मेट्रो सिटी और उनमें बहुत ज्यादा हो रहा है, और लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लंग की बीमारियां, ई सिगरेट

0: ये सबसे इतना ज्यादा डिटोरिएशन होता है और जो यूथ है अपने एम से भटक रहा है, तो ये बहुत वो है। सरकार इसके लिए लगी हुई है। मेरे को लगता है परिवार में एक बहुत बड़ा इशू है ट्रेनिंग में कि भाई नशा तो बिल्कुल भी किसी चीज का इतना खराब है कि उसने जितना बचा जा सकता है उतना बचना चाहिए।
1: युवाओं को वो जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, अपना रोल समझना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम युवा देश हैं और हमारे यहाँ सबसे बड़ी युवा आबादी है, तो युवाओं को अपनी भूमिका है उसको बहुत बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एक और, चूंकि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है तो मैं डॉक्टरों के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। चूंकि हम बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनके जो कार्यभार है, जिसको हम कहें, वो भी बढ़ता है, तनाव है उनके ऊपर भी। और आजकल तो बहुत सारे हम ऐसे केसेस भी देखते हैं जहां पर लोग एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, और कई कई जगह पे तो हम हिंसा की घटनाएं भी देखते हैं। वाकई में ये सब चीज़ें चिंता की बात हैं। तो समाज को या जो मरीज हैं उसके तीमारदार हैं, उनकी जिम्मेदारियों को आप किस तरह से श्रोताओं के साथ साझा करेंगे?
0: देखो, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और आज के सिनेरियो में ये घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं। आप सोशल मीडिया पे देखते
1: जी
0: होंगे,
1: जी
0: बहुत ज्यादा घटना बढ़ी है। एक आदमी का रोड साइड जा रहा है, ड्रिंक करके जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया और वो उसके उसकी वो नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में आके अगर उसकी डेथ हो गई तो वो ब्लेम उधर होता है कि डॉक्टर ने। डॉक्टर भगवान नहीं है, अपना कर्म कर सकता है कि भाई ये मेरा काम है, उसको सबको नहीं बचा सकता। जैसे कोरोना में बहुत सारे डॉक्टर नहीं बचे, तो मेरा जो सब लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि आप पहचाने, पहले जाने कि भाई मैं इलाज कराने लाया हूं। कई बार जरूरी नहीं है कि सब ठीक हो जाए।
1: डॉक्टर्स की भी
0: हाँ,
1: सीमाएं हैं।
0: सीमा है। और ओवर रिगार्डिंग वर्क कह रहे हैं तो वर्क लोड तो ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है पब्लिक के हिसाब से, लेकिन सरकार उसके लिए कई काम कर रही है। मेडिकल कॉलेज बढ़ गए हैं, लेकिन भय मुक्त वातावरण बहुत जरूरी है। आज की डेट में कई बार मेरे को लगता है कि ये पेशेंट मेरे से ज्यादा वो करेगा तो डॉक्टर बचता है इलाज करने से। वो
1: ठीक
0: चाहता
1: है,
0: है मैं भर्ती नहीं करूं, मैं भेज दूं, ऐसा नहीं। विश्वास होना चाहिए। ये प्रोफेशन टोटल फेथ का है,
1: फेथ का है, बिल्कुल सही
0: टोटल
1: बात है।
0: 100% अगर प्रोफेशन फेथ का है तो वो डॉक्टर ही है। और फेथ नहीं है तो आपको उस डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। मैं यही करता हूं, जहां फेथ है वहीं इलाज कराना चाहिए। जीवन और मौत डॉक्टर के हाथ में नहीं है।
1: अब डॉक्टर्स जो आपके साथी डॉक्टर्स हैं, उनको, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरे डॉक्टर साथियों से सभी से यही है कि सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि सबसे पहले डूबने से पहले बचाने वाले को कहते हैं, पहले खुद को बचना चाहिए फिर डूबने वाले को।
1: आप अगर स्वस्थ हैं
0: हाँ,
1: तभी आप
0: तभी
1: दूसरे
0: आप
1: का
0: दूसरे को
1: स्वास्थ्य का
0: सहारे।
1: ख्याल
0: तो
1: रख सकते
0: सबसे
1: हैं।
0: पहले तो डॉक्टरों को अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपने परिवार का, अपनी फैमिली का, और फिर मरीज, क्योंकि मरीज भी उसकी फैमिली का पार्ट होता है। और टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहिए, और राय दूसरे से लेनी है तो ले लेनी चाहिए, और जो बेस्ट हो सकता है उसमें मरीज को हमेशा ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि वो उसके परिवार
1: परिवार
0: का
1: का
0: सदस्य
1: सदस्य
0: है।
1: है। एग्जैक्टली।
0: हाँ, और दिल से जो काम करने पे, तो मैं मानता हूं कि आप उससे करते हो
1: तो
0: तो
1: वो जो
0: 100%
1: एक
0: आप।
1: कोरिलेशन है, आपस
0: हाँ,
1: का जो बॉन्डिंग है, वो भी बहुत मजबूत होता
0: बहुत
1: है। तो डॉक्टर साहब, आपने आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियों को हमारे श्रोताओं के समक्ष साझा किया। हमें विश्वास है कि आपके जो सुझाव हैं अस्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए, बीमारियों की रोकथाम के लिए, और चिकित्सकों के प्रति विश्वास और सम्मान का भाव वो अवश्य मजबूत करेंगे। आप हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ हमारे स्टूडियो आकर जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर विशेष भेंट वार्ता। डॉक्टर रणवीर सिंह से बातचीत कर रहे थे अनिंद्र सिंह।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्रों से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक।

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सोनू निगम और उनके साथी कलाकारों के गाए कुछ गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म कल हो ना हो से। आवाज थी सोनू निगम की। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। धुन बनाई थी शंकर एहसान।

श्रोतो, ये थे सोनू निगम और श्रद्धा पंडित फिल्म संघर्ष में। बोल समीर के थे और संगीत जतिन ललित का। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फैज अनवर की रचना, निखिल विनय के संगीत निर्देशन में अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाजों में गाए इस गीत को हमने लिया है फिल्म तुम बिन से।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और उनके साथी कलाकारों के गाए कुछ गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाजों को फिल्म, माफ कीजिएगा, सोनू निगम और लता मंगेशकर की आवाजों को फिल्म वीर जारा में। शब्द रचना जावेद अख्तर की थी और संगीत रचना मदन मोहन की। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म मैं हूं ना से गीत, जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने, लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

मीडियम वेव 196.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर का गाया फिल्म जिद्दी का ये गीत, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीतबद्ध किया था एसडी बर्मन ने। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथियों को फिल्म मुगले आजम में। शब्द रचना शकील बदायूनी की और संगीत रचना नौशाद की।

और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म राजकुमार से गीत, जिसे लिखा है हजरत जयपुरी ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्रों से बोल रहे हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। अगला अनुप्रसारण कुछ ही क्षणों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी सूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची, कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग

0: 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
1: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ।

0: माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight. The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. The projects include a 6,969 crore rupee tunnel project in Delhi aimed at easing congestion and a 7,145 crore rupee greenfield highway corridor in Uttar Pradesh. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Cabinet has approved the construction of an 8.1-kilometer-long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE, connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. Mr. Vaishnav said the Cabinet also approved the construction of the 117.7-kilometer-long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor.
3: Today the cabinet approved 2 major decisions both related to highway infrastructure. The first addresses a long pending demand in Delhi for improved connectivity between the National Highway Corridor and Vasant Kunj. Several efforts had been made over the years and today those proposals have finally been approved. The project involves the construction of 6-lane Dwarka Tunnel at an estimated cost of 6,970 crore rupees. The second decision is related to Uttar Pradesh. The cabinet has approved the construction of 4-lane access-controlled highway between Kanpur and Kabrai, forming part of the corridor connecting Kanpur with Bhopal. Project has an estimated cost of 7,145 crore rupees. In addition, significant improvements have also been planned for the subsequent sections of the corridor.
4: Section ka bhi usme bahut

0: Director General of Akashwani and DD News, Rajiv Kumar Jain, were also present at the event. Addressing the gathering, Mr. Dwivedi said, Akashwani has played a pivotal role in preserving and promoting India's rich musical heritage. On to sports. In men's cricket, India will take on England in the first T20 international of the five-match series in Chesterlow Street tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The Shreyas Iyer-led Indian side will look to bounce back from their shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. In football, England will clash with Democratic Republic of Congo, DR Congo, in a round of 32 match of the FIFA World Cup at Atlanta in US tonight. In other round of 32 matches, Belgium will take on Senegal at Seattle, while hosts United States will face Bosnia-Herzegovina in California. So far, Mexico, France and Norway have qualified for the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves two major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat Ji Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, arrives in New Delhi on a three-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 International, a five-match series tonight, and in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। हुकूमत ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की मालियत के शहराओं के बुनियादी ढांचे से मुतालिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। विकसित भारत जी रामजी एक्ट आज से मुल्क भर में नाफिज हो गया है। मरकज ने इस स्कीम के तहत उजरत की नजरे सानी शुदा शहरों को नोटिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के दावों में यकसानियत लाने की गरज से गाड़ियों के हादसे के मुतासरीन की आमदनी का तायुन करने के सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी किए हैं। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वो कल 16वें भारत जापान सालाना समिट में हिस्सा लेंगी। मर्दों के क्रिकेट में आज रात 5 मैचों की सीरीज में भारत और मेजबान इंग्लैंड पहले T20 बैन अक्वामी मैच में आमने सामने होंगे। और फीफा आलमी कप में आज रात अमरीका के अटलांटा में इंग्लैंड और DR कांगो प्री क्वार्टर फाइनल में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज शाहराओं के बुनियादी ढांचे से मुतालिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिस पर मुश्तरक तौर पर 14,114.81 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन प्रोजेक्टों में 6,969 करोड़ रुपए का दिल्ली में सुरंग से मुतालिक एक प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद बहुत ज्यादा ट्रैफिक को कम करना है। दूसरा प्रोजेक्ट 7,145 करोड़ रुपए के ग्रीन फील्ड शहरा से मुतालिक है। ये शहरा उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। मरकजी काबीना के फैसलों के बारे में कौमी राजधानी में मीडिया से बात करते हुए इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इन प्रोजेक्टों का मकसद PM गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाना, सफर के वक्त को कम करना और इकतसादी सरगर्मियों को फरोग देना है। काबीना ने दिल्ली में कौमी शहरा 148 AE पर 6 लेन वाली 8.1 किलोमीटर तवील सुरंग की तामीर को मंजूरी दी है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। काबीना ने उत्तर प्रदेश में कौमी शाहरा नंबर 34 पर 117.7 किलोमीटर कानपुर कबरई सेक्शन की तामीर को भी मंजूरी दी है, जो 4 लेन वाली एक्सेस कंट्रोल राहदारी होगी, जिसका ढांचा इस तरह वजा किया जाएगा कि इसे आसानी से 6 लेन वाला बनाया जा सके।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।

0: विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के तहत बढ़ी हुई उजरतों का इतलाक आज से मुल्क भर में हो गया है। देही तरक्यात की वजारत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहें तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में बढ़ा दी गई हैं। वजारत ने कहा है कि पहली मरतबा 300 रुपये यौमिया की उजरत की एक अबूरी बुनियादी शरह मुतारिफ कराई गई है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस प्रोग्राम के तहत कोई भी नोटिफाइड उजरत इस सतह से कम ना हो। विकसित भारत जी राम जी के तहत कौमी औसत उजरत एमजी नरेगा के तहत 298 रुपये 80 पैसे योमिया से बढ़कर 327 रुपये 40 पैसे योमिया हो गई है, जो कि 10% का औसत इजाफा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज रहनुमा खतूत जारी किए हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की बुनियाद पर गाड़ी के हादसे में हलाक होने वाले मुतासरीन या दावा पेश करने वाले जख्मियों की सालाना आमदनी का तायुन अदालतें किस तरह करें। गाड़ियों के हादसे की सूरत में मुआवजों में यकसानियत लाने की गरज से एक अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तनख्वाह पाने वाले अफराद के लिए पिछले बरस की इनकम टैक्स रिटर्न ही सालाना इनकम का तायुन करने के लिए काफी होगी। अपना रोजगार आप चलाने वाले अफराद के सिलसिले में अदालत ने कहा है कि पिछले 3 बरस में दाखिल की गई आईटीआर में बताई गई औसत आमदनी को ही आमतौर पर रेफरेंस पॉइंट बनाया जाएगा। जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर ने आज रहनुमा खतूत जारी किए हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की बुनियाद पर गाड़ी के हादसे में हलाक होने वाले मुतासरीन या दावा पेश करने वाले जख्मियों की सालाना आमदनी का तायुन अदालतें किस तरह करें। गाड़ियों के हादसे की सूरत में मुआवजों में यकसानियत लाने की गरज से एक अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तनख्वाह पाने वाले अफराद के लिए पिछले बरस की इनकम टैक्स रिटर्न ही सालाना इनकम का तायुन करने के लिए काफी होगी। अपना रोजगार आप चलाने वाले अफराद के सिलसिले में अदालत ने कहा है कि पिछले 3 बरस में दाखिल की गई आईटीआर में बताई गई औसत आमदनी को ही आमतौर पर रेफरेंस पॉइंट बनाया जाएगा। जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि मोटर गाड़ियों के एक्ट के तहत सालाना आमदनी का हिसाब किताब लगाने के लिए कोई एक तयशुदा फार्मूला नहीं हो सकता, इसलिए उसने तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन और अपना रोजगार खुद चलाने वाले अफराद के दरमियान वाजह तफरीक कायम की है ताकि उनकी अपनी अपनी आईटीआर की बुनियाद पर मुआवजे का तायुन किया जा सके। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आबादी से मुतालिक तब्दीलियों के सिलसिले में आला सतह की कमेटी से कहा है कि वो जल्द अज जल्द अपनी सिफारिशात पेश करे। नई दिल्ली में कमेटी के साथ एक मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने यह हिदायत दी। कमेटी ने वजीर दाखिला को मुत्तला किया कि वो मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों का दौरा करेगी ताकि आबादी से मुतालिक तब्दीलियों के बारे में बर मौका इत्तलात हासिल कर सके और मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सके। कमेटी ने जनाब शाह को बताया कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से मुतालिका मालूमात हासिल करने की गरज से एक तफसीली सवालनामा पहले ही तैयार किया जा चुका है, जिससे उनके ये दौरे ज्यादा बामानी और ज्यादा तामुल पर मबनी हो सकेंगे। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरपर्सन पीपी चौधरी ने लोकसभा और रियासती कानून साज असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ मुनक्किद करने की जरूरत पर जोर दिया। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात का एक साथ इनेकाद करने से हुक्मरानी का निजाम मुस्तहकम होगा, बार बार होने वाले चुनाव से खलल अंदाजी में कमी आएगी और ये मुल्क की मईशत के लिए फायदेमंद रहेगा। जनाब चौधरी ने कहा कि इंतखाबात का एक साथ इनेकाद कराने का ख्याल नहीं है और इंतखाबी कमीशन, लॉ कमीशन और माहिरीन पर मुश्तमिल दीगर इदारे बरसों से इसकी तजवीज पेश करते रहे हैं। एक मुल्क एक इंतखाब के फवायद बयान करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि इससे मिसाली जाब्ता अखलाक के बार बार निफाज में कमी आएगी।
1: राष्ट्र प्रथम की नीति सोच करके आज देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है कि लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ हों। ये सोच जो है बहुत लंबे समय से चल रही, लेकिन उसको बिल के रूप में लाने का काम पहली बार हुआ।
0: मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने डेंगू से मुतालिक तैयारियों के बारे में दिल्ली सरकार के साथ एक जायजा मीटिंग के दौरान अवामी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि टीबी मुक्त भारत अभियान में तेजी आ सके। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि इस मुहिम से मुतालिक तमाम इत्तलात और मालूमात सादा और आसानी से समझ में आने वाली जबान में होनी चाहिए ताकि अवाम तक वसी तर रसाई को यकीनी बनाया जा सके। भारतीय बहरिया के बहरी जहाजों INS तरकश और INS इक्षक ने सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया पर लंगर अंदाज होने का अपना दौरानिया मुकम्मल किया। वजारत दिफा ने आज बताया कि इन बहरी जहाजों का यह दौरा बहरे हिंद खित्ते में दोस्ताना बहरी मुल्कों के साथ बहरी तआवुन को मुस्तहकम करने के भारतीय बहरिया के अज्म को दोहराता है। यह दौरा विजन महासागर से भी मुताबिकत रखता है। इस दौरान सेशल्स के कौमी दिन और गोल्डन जुबली तकरीबात के तहत मुख्तलिफ पेशे वराना इस्तकबालिया और कम्युनिटी की शिरकत पर मबनी सरगर्मियों को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। अपने दौरे के दौरान INS तरकश के बहरी बैंड और मार्चिंग दस्ते ने 28 जून को मुनक्किद सेशल्स के कौमी दिन की परेड में हिस्सा लिया, जो भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी और दीरीना बहरी साझेदारी की अक्कासी करता है। ये आकाशवाणी है। जापान की वजीर आजम सनाई ताकाइची अपने 3 रोजा भारत दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वजीर आजम ताकाइची का खैर मकदम किया। जापान की वजीर आजम सनाई ताकाइची का यह भारत का पहला सरकारी दौरा है। इस दौरान वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कल 16वें भारत जापान सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। ये चोटी कॉन्फ्रेंस फरीकैन को दो तरफा तआवुन के सभी पहलुओं का जायजा लेने, उन्हें मुस्तहकम करने और बाहमी मफादात के

भारत और इंग्लैंड के मामेन T20 पांच बैन अलावामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज रात चेस्टर ली स्ट्रीट में होगा। ये मुकाबला भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। फुटबॉल में फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में आज रात एटलांटा में इंग्लैंड का मुकाबला जमहूरिया रिपब्लिक कांगो से होगा। और आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की मालियत के शाहराओं के बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। विकसित भारत जी राम जी एक्ट आज से मुल्क भर में नाफिज हो गया है। मरकज ने इस स्कीम के तहत उजरत की नजरसानी शुदा शहरों को नोटिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के दावों में इकसानियत लाने की गरज से गाड़ियों के हादसे के मुतासरीन की आमदनी का तयन करने के सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी किए हैं। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक है प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट है। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है, ये 12 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: तो सुन जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं, तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूंगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटल, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
4: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना, और चौथा डिजिटल।

0: स्वास्थ्य ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक, तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा। हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी, जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़कर किस चीज को किया?
2: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती है, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 200,000 स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है, ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, CSC की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया?
2: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब AI इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें AI से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ दो ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में, पहला था US ओरिएंटेड जिसको हम GAFAM बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे, तीसरा चाइना सपोर्टेड था जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं, दूसरा, और तीसरा अब हमारा है भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम अडॉप्ट कर रहे हैं? आपने AI का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी AI को बड़ी तेजी से अडॉप्ट कर रहा है।
2: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं

0: अगर आप QR कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पर एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी AI है, वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी AI का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने AI बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से GPU प्रोवाइड कर रहा है जो सबसे सस्ता है
1: जी।
0: पूरे विश्व में वो MSMEs और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो AI कोष है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो LLMs या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनको भारत यहां ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
2: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस AI फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया, लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इससे ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी API कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स काम है, अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हो या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हो, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास UPI है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही AI का अभी आप सुनिए ने बात किया कि AI कोषा में जो सब्सिडाइज रेट में GPUs दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि MyGov जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
2: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है, सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है MyGov आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: सुन जी, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और PM गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
0: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और एनेबलमेंट चाहिए थी, हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं।

0: हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है। इवन जो आपको सर्टिफिकेशंस, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है। और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है। ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए हैं, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल, यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
2: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टैब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा आरबीआई का एंड हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं बहुत इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर से। और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे, जो कुछ भी करप्शन ये सब है, वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूँ उनसे।
1: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं, आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
3: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर है, तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है। तो आईटी, एआई, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
0: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, एआई, सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है, उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट, वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने, वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं।

0: इसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टैक्स सोवरेनिटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूजन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू, वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं, उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है
1: कर रहे हैं हम।
0: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी एमओयू साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए, तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है, इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
2: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है, उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए है, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ सेक्टर्स हो, तो इस सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है, उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये एआई के साथ कॉन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है, ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाय प्रोडक्ट है पॉलिसीज, आप जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
2: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी एआई के लिए भी हम लोगों को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो दो तीन कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है, उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को खुद का जीपीयू चाहिए, हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है वो सब, वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, तो सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी, प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पे जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती हैं कि और ऐड की जा सकती या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
0: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है, ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़

0: करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजैक्शंस या एसएमएस या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं। पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है। जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ओएनडीसी जैसी पहल हो या फिर जीईएम जिसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए, पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज है उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ओएनडीसी पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए, हमारी सरकार ने मल्टीपल एफटीए साइन कर रहे हैं, अब ओएनडीसी के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए, सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ एफटीए कर रही है, और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले जीएसटी हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि जीएसटी जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
0: जी, टैक्सेशन और खासकर एमएसएमईज को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम, एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इंप्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे अब पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हो, क्योंकि अगर हम हमारे एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं एफटीए के थ्रू बेचने हैं, तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार एंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्तल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को, और एग्रीस्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है, हम लोगों को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा, और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे, और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग देख रहे। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है, और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है, और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है।

0: सिस्टम से। ना कमिंग टू हेल्थ केयर जो आपने बात किया उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो कि एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद।
5: हेलो मेरी पसंद। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में। संगीत की दुनिया दोस्तों बहुत ही खास होती है। यहाँ हर गीत के पीछे कोई याद छुपी होती है, हर धुन में कोई एहसास बसा होता है और हर नगमा दिल से दिल तक पहुँचने का रास्ता बना ही लेता है। तो आइए आज की इस सुरीली मुलाकात में हम सजाते हैं गीतों की एक ऐसी महफिल जहाँ आपकी पसंद के नगमे भी होंगे, यादों की मीठी बातें भी होंगी, हमारी प्यारी सी गुफ्तगू भी होगी और सुरों का खूबसूरत साथ भी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सफर हेलो मेरी पसंद के साथ, जहां आपके साथ हूं मैं गरिमा शाक्य। तो आइए सुनते हैं अपने पहले कॉलर को।
6: हेलो,
5: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में आपका स्वागत है, कौन बात कर रहे हैं?
6: धन्यवाद, मैं सोनू वर्मा जौनपुर से बात कर रहा हूं। मैं
5: सोनू जी, नमस्कार। हाँ, तो आप क्या करते हैं?
6: जी मैं एक मजदूरी काम करता हूँ जिसे खुदाई वाला काम ज्यादातर होता है।
5: अच्छा, तो आपका काम कैसा चल रहा है अभी?
6: काम तो बहुत जोरों से, मार्च से मतलब छुट्टी नहीं रहती मैं।
5: अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको काम खूब मिल रहा है। तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज?
6: जी मैम, कसूर मूवी का सॉन्ग है कितना बेचैन होके।
5: अच्छा जी, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। आपको गीत संगीत का काफी शौक है?
6: जी मैम, मैं तो यही रेडियो जुड़ा हुआ हूँ, कई फार्म से मतलब जुड़ा हुआ हूँ।
5: तो आकाशवाणी आगरा के कार्यक्रम सुनते हैं आप?
6: जी जी, मैं कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहूँगा मैम।
5: हाँ जी बताइए, उनको भी यही गीत सुनना है?
6: जी जी।
5: हाँ जी बताइए।
6: जी आरजे सागर जी सर हैं
5: जी,
6: और ये ऋषिकेश पंडित जी हैं
5: जी,
6: और ये नरेश प्रजापति जी।
5: अच्छा,
6: को भी रहेगा मैम डेडिकेट।
5: थैंक यू। और आपको गीत सुनवाते हैं और आप अपने साथियों के साथ ये गीत जरूर सुनिएगा, आगे भी कॉल करते रहेगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
6: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी
0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैं भानु भास्कर बोल रहा हूँ मैडम। नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बिलनगंज से
0: अच्छा, आप क्या करते हैं?
1: जी। कंप्यूटर असेंबलिंग का काम है मेरा
0: जी
1: जी।
0: ओके। और इसके अलावा कुछ और करते हैं या कोई आपका
1: हाँ
0: शौक हो?
1: बिल्कुल, शेयर मार्केट का काम है मेरा
0: जी
1: खुद का।
0: जी
1: इसके अलावा टैक्सेशन है और गोल्ड सिल्वर का काम।
0: जी और आप कोई शौक रखते हैं?
1: सबसे ज्यादा शौक है मुझे रेडियो सुनने का। रेडियो सुनकर ही मेरी आंखें खुलती हैं
0: जी, तो आप आकाशवाणी आगरा के कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी। हाँ, आकाशवाणी आगरा के ही कार्यक्रम सुनता हूँ क्योंकि आगरा में ही रहता हूँ और मुझे आकाशवाणी आगरा बहुत पसंद है, ये भी एक कारण है सुनने का
0: जी, तो कौन कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: जी। सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा पसंद है, जो आपके यहाँ से दिल्ली से रिले होती है न्यूज, वो
0: जी
1: मुझे बहुत पसंद है। हाँ,
0: अच्छा।
1: क्योंकि न्यूज से एक तो आपके यहाँ का जो है बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन, और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
0: जी
1: इतना प्रोनाउंसिएशन किसी भी और चैनल का अच्छा नहीं है जितना कि आकाशवाणी का अच्छा है
0: जी जी जी और न्यूज़ के अलावा कोई कार्यक्रम पसंद करते हैं?
1: आपके यहाँ से। जितने फिल्म संगीत के कार्यक्रम जाते हैं और जितने संगीत के और भी कार्यक्रम है, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत, वो मुझे बहुत पसंद है
0: अच्छा, तो
1: जी।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैं सुनना चाहता हूँ, आप मुझे सुनवाइएगा, मेरी फरमाइश है, धुरंधर टू में जाइए सजना।
0: जी ठीक है, आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं और आप बने रहिएगा आकाशवाणी आगरा के साथ। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: जी मैम, धन्यवाद, शुक्रिया।

0: हेलो,
1: मेरी पसंद कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
0: जी मैं भोजपुरी से रवि बात कर रहा था मैम।
1: जी रवि, क्या करते हैं?
0: मैम हमारा यहाँ पर एक गिफ्ट शॉप है।
1: अच्छा, तो अपार्ट फ्रॉम गिफ्ट शॉप और आप क्या क्या करते हैं? कोई शौक है आपका?
0: मेरा म्यूजिक लिसनिंग मेन है, इसके अलावा बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है।
1: ओके, तो किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं?
0: रिलीजियस भी होती है, फिक्शंस भी होते हैं।
1: जी, और म्यूजिक लिसनिंग में किस तरह के गीत पसंद है आपको?
0: मुझे गजलों का बेहद शौक है, खासकर जगजीत साहब को सुनना बेहद पसंद करता हूँ।
1: अच्छा, तो आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: जगजीत साहब का आप अर्थ फिल्म का संवाद दीजिएगा। और इससे पहले एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा।
1: हाँ जी
0: कि रेडियो के हमारे प्रशंसक जो है हमारी फैमिली में बहुत पुराने चले आ रहे हैं। मेरे
1: जी
0: बाबा भी सुनते थे और मेरे पापा ने बिना का गीत माला आता था अमीन सयानी
1: जी
0: साहब
1: जी
0: का,
1: जी
0: तो वो उन्हें बहुत सुनते थे और शुरुआत से ही रेडियो प्रेमी रहे हैं सारे लोग, और हम लोग तो हैं ही अभी भी।
1: रेडियो सुनकर तो मेरे ख्याल से हम सभी बड़े हुए हैं, तो ये तो हमारे डेली रूटीन में था, है
0: जी
1: ना?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी
0: आज भी हम आकाशवाणी सुनते हैं, आज भी हम आकाशवाणी को सुबह से ट्यून कर लेते हैं। सुबह 6 बजे जब वंदना कार्यक्रम जाता है तो मेरे पापा जो भी लोग घर में फ्री हैं तो सबसे पहले वही ट्यून कर लेते हैं।
1: जी तो अभी अर्थ फिल्म का आप कौन सी गजल सुनना पसंद करेंगे?
0: अर्थ फिल्म में जगजीत साहब का है झुकी झुकी सी नजर है।
1: जी, बेहद ही प्यारी गजल है।
0: जी तो आप प्लीज अगर आप उसे सुनवा सकें तो बस।
1: हाँ हाँ जरूर सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद की गजल। ठीक है, तो आप सुनिएगा और आगे भी हमें कॉल करते रहिएगा
0: जी मैम, थैंक
1: और
0: यू सो
1: जुड़े
0: मच,
1: रहिएगा आकाशवाणी आगरा के साथ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो
1: मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात
0: थैंक
1: कर
0: यू
1: रही
0: मैम।
1: हैं?
0: मैं दीप्ति बात कर रही हूँ।
1: जी दीप्ति, कहाँ से बात कर रही हैं?
0: मैं आगरा से हूँ।
1: अच्छा, और आप क्या करती हैं?
0: मैं पढ़ाई कर रही हूँ अभी। मैं
1: अच्छा
0: स्टूडेंट हूँ
1: जी, क्या पढ़ाई कर रही हैं?
0: मैम। मैंने बीए किया हुआ है
1: ओके, तो आगे आपने क्या सोचा है बीए के बाद?
0: मैम। बीए के बाद तो अभी मैंने कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी करूंगी।
1: अच्छा, तैयारी अच्छे से कीजिए, इसकी वेल
0: जी
1: विशेस।
0: मैम।
1: तो आज आपने जो कॉल किया है, तो कौन से गीत की फरमाइश है आपकी?
0: मैम जो जब भी मेट मूवी का सॉन्ग है ना नगाड़ा वो
1: जी
0: वाला
1: जी
0: मैम।
1: ठीक है, हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं, और आप आगे भी कॉल करते रहिएगा, बने रहिएगा आकाशवाणी आगरा के साथ।
0: ओके मैम। थैंक यू मैम।
1: थैंक यू।

0: हेलो
1: कार्यक्रम
0: हेलो।
1: हेलो मेरी पसंद में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
0: हाँ नमस्कार, मैं सुनील बात कर रहा हूँ आगरा से।
1: नमस्कार सुनील, और कैसे हैं?
0: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हैं?
1: बढ़िया
0: जी
1: जी। तो सुनील, आप क्या करते हैं?
0: मैडम, मैं इंटास फार्मास्यूटिकल्स में एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ।
1: जी, तो आप आगरा को ही रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कोई और सिटी को भी करते हैं?
0: मैं एक्चुअली दिल्ली में सुप्रीमा डिवीजन है उसमें हूँ इंटास के।
1: ओके ठीक है। तो इसके अलावा और क्या करते हैं, क्या शौक है?

0: मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ।
1: जी, तो आप आगरा को ही रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कोई और सिटी को भी करते हैं?
0: मैं एक्चुअली दिल्ली में सुप्रीमा डिवीजन है उसमें हूँ इंचार्ज के।
1: ओके, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या करते हैं, क्या शौक है?
0: मैं इसके अलावा मैम मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है और मैं म्यूजिक सुनने के लिए प्राइवेट FM चैनल जो रहते हैं वो भी सुनता हूँ और आकाशवाणी आगरा भी सुनता हूँ और क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद है।
1: तो क्रिकेट के लिए टाइम निकाल लेते हैं आप?
0: हाँ, क्रिकेट के लिए टाइम निकाल लेते हैं या टाइम नहीं मिल पाता है तो संडे वगैरह में खेल लेते हैं जब जब टाइम मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली।
1: जी, तो आकाशवाणी आगरा के कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं आप?
0: एक तो मुझे गीत संगीत के सारे कार्यक्रम पसंद है ना। 3 बजे आता है एक, एक सुबह सुर सरिता आता है मैं वो सुनता हूँ है ना,
1: जी।
0: और एक सुर संध्या करके भी शाम को जिसमें भजन गीत वगैरह आते हैं वो भी सुनता हूँ।
1: जी।
0: और एक स्टोरी बता दूं मैडम आकाशवाणी से रिलेटेड, मेरा बचपन जो है मथुरा में रहा है, मेरा जन्म मथुरा में हुआ था। तो जब मैं छोटा था तो लोग वहां पर जब आकाशवाणी आगरा सुनते थे रेडियो सेट पर तो
1: जी
0: वो दौर 90 के दशक का था है ना,
1: जी
0: तो लोग जब सुनते थे 90 के दशक के उस दौर में तो कुमार सानू और अलका याग्निक जी और ये इन सब के गाने उदित नारायण जी के गाने चलते थे। तो
1: जी
0: मेरी जो बचपन की जो छवि थी उस समय वो ये मानसिक छवि जो जैसे बोलते हैं उस समय मुझे लगता था क्या ये बुजुर्ग लोगों के गाने सुनते रहते हैं सब लोग, उदित नारायण अलका याग्निक। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने समझा कि असली म्यूजिक का रस इन लोगों की आवाज
1: जी,
0: में है,
1: ये
0: यही लोग
1: समझ
0: जादूगर
1: आ
0: हैं।
1: गया कि हमें भी यही गीत पसंद आते हैं।
0: तो मैं बस वही बता रहा था कि तो वहां से जो म्यूजिक की जो छवि थी जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे समझ आया कि म्यूजिक की दुनिया के जो आवाज के जादूगर हैं वो यही सब हैं, सिंगर्स हैं
1: जी
0: जितने
1: जी
0: जो मैंने नाम बताया तो यही था।
1: जी तो आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: मैं गीत सुनना पसंद करूंगा कृष्णा कॉटेज से बेपनाह प्यार है आजा, ये मुझे बेहद पसंद है ये गीत।
1: जी, ये बहुत ही
0: और
1: प्यारा गीत है। तो ठीक है, आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं हम,
0: जी
1: और आप आगे भी कॉल करते रहिएगा,
0: जी जी थैंक यू
1: बने
0: मैम,
1: रहिएगा आकाशवाणी आगरा के साथ।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू।
1: थैंक यू।

0: हेलो कार्यक्रम
1: हाँ
0: हेलो मेरी पसंद में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं सुनीता बात कर रही हूँ।
0: सुनीता जी आप कहाँ से बात कर रही हैं? राजा
1: मैं राजा मंडी से,
0: मंडी से। और आप क्या करती हैं?
1: मैं घर में ही रहती हूँ, घर के ही काम करती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने यहाँ पे कॉल किया है, तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: हाँ छू लेने दो।
0: जी, बहुत अच्छा गीत है। तो हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं। आप बने रहिएगा आकाशवाणी आगरा के साथ। धन्यवाद।

दोस्तों, सुरों और यादों से सजी आज की ये महफिल अब यहीं पूरी होती है। उम्मीद है आज के गीतों ने आपके दिल को सुकून दिया होगा, आपकी यादों को आवाज दी होगी और आपके पलों को थोड़ा और खूबसूरत बनाया होगा। आपका प्यार और आपकी फरमाइशें ही इस कार्यक्रम की असली पहचान है, इसलिए अपनी पसंद हमें भेजते रहिए और इसी तरह

0: हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं गरिमा शाह के आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलेंगे हेलो मेरी पसंद के अगले अंक में कुछ और प्यारे गीतों और खूबसूरत एहसासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और संगीत से जुड़े रहिए।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं पंडित यशपाल। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग श्याम कल्याण में ख्याल गायन।

अभी श्रोता सुन रहे थे पंडित यशपाल का राग श्याम कल्याण में ख्याल गायन। श्रोताओं, इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्रों से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अगला अनुप्रसारण कुछ ही देर में।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सुबह 5:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।